0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix. जिस दिल

0: एक बात बताऊं दोस्त?
1: बता बता जल्दी बता।
0: एक बार वो मुझे मिलने आई।
1: अच्छा?
0: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: तभी उसका टेलीफोन आया। हाँ, कहने लगी
1: हेलो हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ,
0: फिर क्या बोली?
1: बोली मेरे घर में पार्टी है, आओ।
0: जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवाय कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था, वो थी,
1: मतलब
0: मैं था,
1: तन्हाई थी।

0: Radio Musty.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musty.

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: आपके होते हुए नीतू अकेली कैसे हो सकती है? Let me wish you all a very good morning, my dear listeners. Monday morning, 8 June की सुबह हो चुकी है और 5 भी बज चुके हैं. So हमारा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. सब ठीक? I really hope so. वीकेंड आपने अच्छे से बिताए होंगे. तो बस नए दिन की शुरुआत, नए हफ्ते की शुरुआत, नई उम्मीद, नए जोश के साथ बिना होश खोए हुए वेटिंग फॉर यू. आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294. चलिए जी, सवेरे वाली गाड़ी में हम भी आ चुके हैं, आप भी हम सफर पर चले आपके मैसेजेस के जरिए ऑन 5499-1294 सैकत नफ नफ दूस नफ काट पर.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: मंजिल की शुरुआत तो हो चुकी है. अपने अपने सफर पर तो आपको चलना ही पड़ेगा. आपको तो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक तो सकते हैं. 5:11. Wishing you all once again a very good morning. अभी अभी चून किए हैं. Then नीतू आपका स्वागत करती है on Radio Musti. It's your rise and shine till 7 बजे. 5:49, 9:12, 9:04 पर let me wish you all a very good morning. रिविया जुगान बॉसे हैं. खुबलाल परिवार खास मनीष अमर राजा बानी एंड जिसिक. हेलो ज्योति, कैसी है माय डियर? नमस्ते फ्रॉम शातु बिनागस. गन आपके पूरे परिवार, माधव परिवार खास आशनी के नाम, रेखा एंड सुरेखा एंड जितने भी प्यारे प्यारे लोग अभी अभी नींद से जागे हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. बस ये मॉर्निंग आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करते हैं. सो विद अ स्माइल लेट्स स्टार्ट दिस मॉर्निंग एंड शुभ सोमवार आपको भी. शीला जी फ्रॉम लेस्पेरेंस ट्रेबुशे, शम्मी कपूर के फैन, देखा आपके लिए गाना भी हमने चला दिया, बस आप मुस्कुराते रहिएगा. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको मिस्टर टोनी. कैसे आज आप कहते हैं कि लाइफ इज टू आयरोनिक. इट टेक्स सैडनेस टू नो व्हाट हैप्पीनेस इज, नॉइज टू अप्रिशिएट साइलेंस एंड एब्सेंस टू वैल्यू प्रेजेंस. दैट्स ट्रू. कभी कभी गम के साए से गुजरना पड़ता है, तभी तो आपको खुशी मिलती है. जब तक कांटे आप को चुभेंगे नहीं, तब तक उस फूल, उस रोज को आप कैसे पकड़ पाएंगे. दैट्स एन एग्जाम्पल. लेकिन जिंदगी के फलसफे ऐसे ही होते हैं. तो आप हमेशा मुस्कुराते रहिए. गम आइए, आप माने कि डर कर भागिएगा मत. फेस इट, चैलेंज इट एंड आगे बढ़ते चले. गुड मॉर्निंग अब्दुल एंड सारा बानू, कैसे? ठीक ठाक. ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू धीरज, आयुष, विदिशा, साथ में अश्विन, ज्योति एंड हरक परिवार, मोदाल ब्यासी. और हमारे साथ जुड़ी रहती है अरुणा. ए वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार आपको.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: This one specially goes out to all those जो रास्ते पर हैं और अपनी मंजिल की ओर अपने सफर को तय कर रहे हैं. 5499 1294 पर वेरी गुड मॉर्निंग. अकेले आए हैं, अकेले ही चले जाएंगे, पर बीच रास्ते पर ऐसे हम सफर भी मिलेंगे जैसे कि रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ. योर मैसेजेस, आपके अपनों के नाम, पैगाम, किसी का आज बर्थडे हैं या फिर स्पेशल हाय हेलो कहना चाहते हैं, नीतू आपके इंतजार में हम सैकत नफ नफ दोज नफ कात.

0: हमारी तो यही कोशिश रहती है कि आपके हर सफर को खूबसूरत, यादगार और खुशगवार बनाया जाए। थैंक यू सो मच, आप आदु फैमिली खुशनुमा से एंड पति रंजीत के नाम आपके लिए प्रेमिला जी। एंड आज पति का बर्थडे है, सो फ्रॉम प्लंदी पपाय सब परिवार की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे। लगे हाथ आपकी जो फेवरेट एक्ट्रेस थी, अभी भी है लेकिन कम नजर आती है मूवीज में, डिंपल कपाटिया। 8 जून 1957 में उनका जन्म हुआ था, आज उनको विश करने का मौका मिला है, तो चले उनके गाने के जरिए और उनको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

0: उम्र में राज कपूर द ग्रेट राज कपूर फिल्म मेकर उनको डिस्कवर नहीं करते तो शायद डिंपल कबाड़िया आज एक बड़ी एक्ट्रेस बनती नहीं है. और उनकी पहली मूवी जो टीन रोमांस 1973 की रही बॉबी, उसने तो धमाका ही कर दिया था. यस ऑफ कोर्स उन्होंने शादी की थी राजेश खन्ना से और प्यारी सी बेटियां ट्विंकल एंड रिंकी एंड सागर जैसी फिल्मों के लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स मिला. एंड लेकिन रिश्ते काश रुदाली ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम किया कि बस उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है. वंस अगेन डिंपल कबाड़िया हैप्पी बर्थडे आपको.
1: Avec MBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV, qui peut disponible au MBC Play à partir des 16, hein, pour 10-300 roupies. Et coupé pour sa package là, 6 cents c'est le fort. Ou pourquoi pas suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play, avec ou partout.
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musty.

0: दिन।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
3: बिल्कुल पते की बात सही बात है।

दो प्यार पल जो हम बिता सकते हैं आपके साथ, जिसमें खुशी हो, अपनापन हो, कोई गिला शिकवा ना हो, जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाती है ना। थैंक यू सो मच, प्रणाम निधो, गाना गुजार टू यू वेदिता। आप हो सुगिनाम, सुगिनाम में बहुत ठंड है, ठंड तो अभी बहुत है, कहीं शायद बारिश भी हो रही होगी। प्लीज बी वेरी केयरफुल। शुभ सोमवार आपको अंजनी जी, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्वेटर वगैरह आप पहन लीजिएगा, एक शॉल ओढ़ लीजिएगा, एंड एक कैप, एक हैट वगैरह, जो भी मफलर आप पहन सकती हो अपने आप को वार्म रखने के लिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको कुमार एंड देवी चंद फैमिली, साथ में है कौन यहाँ पर, मैं देख रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू हम आपको कहेंगे शीला जी, बस गाने आप एंजॉय कीजिए, मूड को एकदम खुशगवार बनाते चलिए। वीकेंड अच्छे से बिताया आपने, एंड थैंक यू सो मच। नए शुरुआत के लिए आपका स्वागत, सरोज, राजन, मोनिका, पूनम, शिया, उमेश और श्यामबाल, आशिता, एंड थैंक यू सो मच। और आपको उमंग वाला गाना पसंद आया, मुकेश और शारदा वाला, थैंक यू। हर हर महादेव, नेहा मंगरू, एंड आप नितिश जोफा को बहुत मिस कर रही है जो रहती है घोंबुआ, ओहो, तो जोफा अच्छे बच्चे बन जाओ, और बस नेहा से आप बात कीजिएगा, एक कॉल की दूरी है, एक गाना आप दोनों के नाम, क्या पता जो दूरियां हैं वो मिट जाएं। गुड मॉर्निंग आपको सरिता जी, गुड लेंथ से हैं आप, थैंक यू सो मच। और भूल गए अपना नाम लिखना, अरे बाप रे बाप, कोई बात नहीं, आप तो हैं मिस्टर भाई महेंद्र पालमा कैथ्रोबोन से। और बस आप भी ठीक ठाक, हम भी ठीक ठाक, सब कोई कुशल मंगल है। थैंक यू सो मच, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू कविता। थोड़ी देर में आपका होरोस्कोप।

0: सपने तो तभी सच हो सकते हैं ना जब आप सपने देखेंगे.
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
0: तो चलिए जी शुरुआत आज विजुअल आपके साथ.
2: एरीज मेष राशि.
0: वल आज का दिन संतुलित और सुखद रहेगा. धार्मिक माहौल में समय बिताने का मौका मिलेगा. नौकरी में मेहनत का फल प्रमोशन या प्रशंसा के रूप में मिल सकता है. कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से मन बेहद खुश रहेगा. बड़ों का साथ उनका आशीर्वाद आपको बढ़ने आगे बढ़ने की ताकत देगा.
2: टॉरस वृषभ राशि.
0: आज का दिन लाभ देने वाला रहेगा. सच्चे परिवार में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी. किसी जरूरी बात को हर किसी से शेयर बिल्कुल ना करें. हाँ, वाहन सावधानी से चलाएं, चोट लगने की आशंका है. संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. क्रिएटिव कामों में रुचि बढ़ेगी और मन कुछ नया करने का भी सोचेगा.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
0: वलाज आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. मुश्किलें आएंगी लेकिन आप उनका डटकर सामना करेंगे. नया बिजनेस शुरू करने का विचार मन में आ सकता है. संतान की खुशी के लिए या फिर नई वाहन खरीद आप सकते हैं. पुराने कर्ज से छुटकारा पाने की दिशा में आपने कदम बढ़ा दिया है. योग और व्यायाम आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे.
2: कैंसर कर्क राशि.
0: खर्च अचानक बढ़ सकते हैं जिससे थोड़ी परेशानी बनी रहेगी. नौकरी बदलने की आप सोच रहे हैं तो फिलहाल रुकना ही समझदारी होगी. वैसे काम की कोई पूरी ईमानदारी जी हाँ काम को पूरी ईमानदारी से करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सेहत में उतार चढ़ाव बना रह सकता है. जीवन साथी के साथ मिलकर संतान के भविष्य को लेकर कोई नया बड़ा आप फैसला ले सकते हैं.
2: लियो सिंह राशि.
0: नया काम शुरू करने के लिए दिन बेहद अच्छा है. रिश्तों में प्यार अपनापन बढ़ेगा जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा. बिजनेस में बदलाव करने की बचे आप उनसे बचे. पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा. लाइफ पार्टनर के साथ शॉपिंग या अच्छा समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा. एंड स्टूडेंट्स पढ़ाई में पूरी मेहनत करेंगे.
2: वर्गो कन्या राशि.
0: ऑलराइट आज कामकाज में नई ऊंचाइयां छूने का

0: मौका मिलेगा, परिवार में तालमेल और प्यार बना रहेगा। किसी दूर रहने वाले अपने की याद भावुक कर सकती हैं। नौकरी पेशा लोग प्रमोशन के लिए बॉस से बातचीत कर सकती हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को नया पद मिलने की भी संभावना है। बस अपनी सेहत, खास शुगर या फिर बीपी जैसी समस्याओं को हल्के में बिल्कुल ना ले। हाँ,
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज चुनौतियां थोड़ी ज्यादा रहेंगी। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। पैसों के मामले में किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। परिवार के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों की गलतफहमियां दूर होंगी। बिजनेस में पार्टनरशिप करने से बचें एंड यात्रा की योजना बन सकती है।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: ऑलराइट, आज धैर्य और शांति बनाए रखना आपके लिए सबसे जरूरी होगा। थकान और मानसिक बोझ से राहत मिलेगी। काम के साथ आराम के लिए भी समय बिल्कुल निकालें। जीवन साथी से उनके साथ चल रही अनबन को प्यार से सुलझाने की कोशिश करें। यात्रा के दौरान कोई खास जानकारी मिल सकती है। परिवार में शादी विवाह की खुशखबरी माहौल को आनंदमय बना सकती है।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: करियर के लिहाज से आज का दिन शानदार रहेगा। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे स्टूडेंट्स को अच्छा अवसर मिल सकता है। ऑफिस में राजनीति से दूरी बनाकर रखें। आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यापार में धन लाभ के अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज का दिन मिला जुला रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताकर मन हल्का होगा। छिपे हुए विरोधियों से थोड़ा सतर्क बनाए रखें। दिखावे में ज्यादा पैसा खर्च करना नुकसान दे सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिल सकता है। वैसे जमीन जायदाद से जुड़ी चर्चा परिवार में हो सकती है और घर में नए मेहमान के आने से खुशी का माहौल बना रहेगा।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज तो व्यापार में कुछ रुकावटें आ ही सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी सब संभालेगी। दाम्पत्य जीवन में प्यार और अपनापन बना रहेगा। किसी रिश्तेदार से खुशखबरी मिलने की संभावना है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत खराब होने से भागदौड़ बढ़ सकती है एंड किसी अजनबी की बातों में आने से बचें।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातें पर नोकझोंक हो सकती है। काम में कोई बड़ा रिस्क लेने से बचे। परिवार की समस्याओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। मन की बात अपने बड़ों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ही शेयर करें। स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते नए खुल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल एंड अ लवली डे अहेड।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती

लवली गाने ओनली ऑन रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच. 5:55 मिनट हुए हैं. लेट मी विश हैप्पी 25th बर्थडे टू यू विशनी फ्रॉम मामा प्रीति पापा क्रेश उर्वशी जीजू हविनेश आपके नेफ्यू केहान और भाई सभी मनसुख परिवार बॉम्बू की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड ऑफकोर्स आकाश भी हैं आपके पूरे परिवार हमारी ओर से भी ढेर सारी बधाइयां. दोतिका कैसी है माय डियर गिव्या दिखे और से रघुजना परिवार के नाम अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड बदवक विदेशी जी अनुषा के नाम आपको भी गुड मॉर्निंग नमस्ते. ललिता एंड जीत इन फैमिली 6 बजे के समाचारों के बाद वापस मिलते हैं विद सम मोर बेस्ट म्यूजिक आपके नाम.

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: 6 बजे हैं। सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे अदिति नमस्कार आपको।
7: नमस्कार नीतूषा श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई है। एडीबी की 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पारित किए गए वित्त पोषण में मॉरिशस को मात्र 12 मिलियन रुपए से थोड़ा ज़्यादा ही प्राप्त हुआ है। ये पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत कम है जब ये राशि कई बिलियन रुपए तक पहुंची थी। लेकिन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार इस कदम का अर्थ ये नहीं है कि ये संस्था मॉरिशस को छोड़ रही है, बल्कि बैंक का कहना है कि कई बड़ी परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। एडीबी इस कदम के लिए कुछ परियोजनाओं में देरी और उच्च सार्वजनिक ऋण का भी कारण बताता है। गन्ने की कटनी की शुरुआत के संदर्भ में कल पंजाब के अमातुके कोविल में आयोजित वार्षिक प्रार्थनाओं में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भावी राष्ट्रीय बजट की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो उनके अनुसार मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच जिम्मेदारी, सॉलिडारिटी और आर्थिक दक्षता पर आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि ये दूसरा बजट एक कठिन आर्थिक दौर के बीच तैयार किया गया है और देश को यथार्थवाद तथा दृढ़ संकल्प के साथ सही राह पर वापस लाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा चुनौतियों के मद्देनज़र सभी से एकजुट होकर और जिम्मेदार तरीके से राष्ट्रीय हित में काम करने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज तड़के सुबह दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 अंकों और गहराई 35 किलोमीटर की मापी गई। सुनामी की चेतावनियां जारी की गई हैं और वहां के राष्ट्रपति फेडिनान मार्कोस ने लोगों के लिए जल्द से जल्द ऊंचाई वाले इलाकों में पनाह लेने के आदेश जारी किए हैं। मिंदानाओ द्वीप में स्कूल बंद किए गए हैं और आपातकालीन कदम उठाए जा रहे हैं। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मास्करेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा, 2.50 मीटर तक की लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है, जबकि दोपहर बाद दक्षिणी लगूनों में स्थिति बेहतर हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:40 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
8: Avec NBC.

मैं ना जानू बस दिल जाने प्यार में होता है क्या, प्यार करने वालों से पूछिए ना आपको सही जवाब मिल जाएगा। 9 minutes past 6 in the morning, wishing you all once again a very lovely lovely morning. प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें नीतू का वंस अगेन। ये लवली मंडे मॉर्निंग आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। रास्ते पर ऑलरेडी हैं, देन प्लीज ड्राइव केयरफुली। डू लेट मी नो आपके यहाँ वैसे मौसम कैसा है, इज इट विंडी, इज इट सनी। विंडी तो है क्योंकि सर्दी का मौसम जो है। अभी कुछ बर्थडे विशेज भी बाकी हैं, तो चलिए यहाँ पर आपका साथ मिल रहा है। थैंक यू, शुभ दिन आपको भी। हेमलता भजन, पूरे परिवार से अगला गाना आपके नाम भी संगीता, आपके पूरे परिवार फ्रॉम मोता ब्लॉश।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Shivashkar, 14 minute time for some birthday wishes. Happy 80th birthday to lovely Grandpa Narayan Nagadu. और आप रहते हैं रोड्रिग बोंजोर रोड्रिग राज देवी रवीश प्रीशा लव शादिया वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार यहाँ पर मैं देख रही हूँ शालिनी को भी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मम राधा साथ में है पापा देवा पति है निवन क्रिश शालन आपके बेटा है आपके बेटे हैं सिस्टर रजनी और नेफ्यू विलन एंड सभी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार वंस अगेन पति रंजीत को हैप्पी बर्थडे आपकी तरफ से प्रेमिला जी फ्रॉम लंदी पपाई एंड बेस्ट विशेज आपको मिस्टर संतोष फ्रॉम वाइफ जानिता बेटा शान बेटिया हैं शानवी श्रुति कीर्ति साथ में विकास एंड सब परिवार बिजलोल गणपत परिवार दागुचिया से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रही है जिन जिन का आज बर्थडे है हमारी तरफ से आप लोगों को भी यहाँ पर बेस्ट विशेज

0: हम साथ ही साथ हैं, साथ रहेंगे. क्यों शमीम, आपको वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल. करण, गुड मॉर्निंग आपको. मिस्टर प्रीतम बीतू, आप है फ्रॉम पीतू 90s के गाने आपके मूड को एकदम टकाटक बना देते हैं. हाँ, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. सोनम भोला पे चित्रिविया से, एंड वेदर इज सो कूल आप कहती हैं. ओके, आप एंजॉय कीजिएगा. यही अगला गाना आपके नाम श्वेता हुकुम फ्रॉम बोनाकाई, आपके बिलवड हबी दुदू रोशन फ्रॉम आपकी तरफ से आपके पूरे परिवार के नाम. अ वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम आपको भी भाई सूरज शर्मा सजादा एंड फैमिलीज, खास बेटा निशार के लिए एंड आप हो फ्रॉम थ्रियोले.
1: जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं.
0: ऑफ कोर्स.

हम साथ हैं साथ रहेंगे जैनी हैप्पी बर्थडे टू यू वर्षादु की अब ब्रिटानिया एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम प्रीतम पपानंद टीना रणधीर मिथुन अनुष्का अनिशा कतेशा आरोही हर्षा सब परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार और हमेशा आपका पूरा परिवार आपके साथ रहेंगे।

रास्ता चाहे कोई भी पकड़ ले, लेकिन रेडियो मस्ती का रास्ता मत भूलिएगा। 6:27 6:30 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। उसके बाद बिरिता आएंगे 7:00 के बाद इन मॉर्निंग बीट। हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। एकता ही मौजूदा चुनौतियां पार करने और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करने का एकमात्र साधन है, ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल गन्ने की कटनी के सीजन की शुरुआत के संदर्भ में लगी प्रार्थनाओं के दौरान कही। हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। वे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई, इसके पीछे कई परियोजनाओं में देरी और उच्च सार्वजनिक ऋण का कारण बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज तड़के सुबह दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। गन्ने की कटनी की शुरुआत के संदर्भ में कल कौंजाब के अम्मातू के कोवल में आयोजित वार्षिक प्रार्थनाओं में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भावी राष्ट्रीय बजट की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो उनके अनुसार मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच जिम्मेदारी, सॉलिडारिटी और आर्थिक दक्षता पर आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि ये दूसरा बजट एक कठिन आर्थिक दौर के बीच तैयार किया गया है और देश को यथार्थवाद तथा दृढ़ संकल्प के साथ सही राह पर वापस लाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा चुनौतियों के मद्देनज़र सभी से एकजुट होकर और जिम्मेदार तरीके से राष्ट्रीय हित में काम करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि मकसद अर्थव्यवस्था पर दबाव डाले बिना और ज़रूरतमंदों की रक्षा करते हुए देश में आर्थिक वृद्धि मजबूत करना है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर बल दिया कि एकता ही मौजूदा चुनौतियां पार करने और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करने का एकमात्र साधन है। माधवी जागोनाथ, रजनी भीकर।
1: हर साल जून महीने के पहले सप्ताह के दौरान गन्ने की कटनी के आरंभ होने से पूर्व कौंजाबली स्थित अम्मा तुके कोविल में एक विशेष पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी भी वहाँ उपस्थित अच्छी फसल के लिए अम्मा का आशीष प्राप्त करने गए। इस तरह अम्मा तुके के प्रति भक्ति और साथ में उन्हें आभार प्रकट करने के लिए एक का पहला गन्ना अर्पित किया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने नौजवानों को कृषि में संलग्न होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के वास्ते खेतिहरों को दी जा रही सुविधाएं की याद दिलाई। इसके अलावा उन्होंने बांका से रिन्यूएबल एनर्जी विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
2: Ce qui fait l'initiative, et me saluer, c'est l'initiative Bolches Biomasse, qui bien encourage nous à produire l'électricité à partir de ce que nous appelons wood chips, et aussi des autres sources d'énergie renouvelable qui peuvent développer l'énergie solaire. Là aussi, je me donne beaucoup d'incentives qui me gagnent la pression, je ne peux pas connaître. Et prenez en cours, là, vous trouvez.

0: solidarité, efficacité économique, mais avec justice sociale. Justice sociale veut dire même des gens qui sont en difficulté, ils ont continué de tout parti socialiste faire ça. L'objectif, c'est renforcer l'économie mondiale. Retournons quand nous étions renforcés. Assurer qu'ils nous continuent à gagner croissance et pour que nous réussissions seulement. Et dans des conditions, nous devons rester unis et nous devons solidaires.
1: हर साल सावन तमिल बेनेवोलेंट सोसाइटी और ओमनिकेम की ओर से इस तरह की प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। इस तरह इस समारोह से गन्ने की कटनी के सीजन का शुभारंभ हुआ।
2: इस साल के लिए गन्ने की कटनी का सीजन आने वाले कुछ दिनों में शुरू होगा। 22 जून से अल्टियो और टेरा कंपनियों से पेराई का काम शुरू होगा। विशेषज्ञों के अनुसार भले ही इस कटनी का सीजन एक सामान्य से ज्यादा सूखे मौसम के बाद आया है, फिर भी गन्ना पैदावार की कुल वृद्धि संतोषजनक है। कृषि सदन की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सर्दियों के आगमन के साथ वृद्धि में धीरे धीरे कमी आने के कारण कटनी मध्य दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। आशी बाचू, टीना बुदना।
3: मॉरीशस में 2026 की गन्ना कटाई और चीनी उत्पादन अभियान 22 जून से शुरू होगा। इस दिन अल्टियो की यूनियन फ्लैक और टेरा की उत्तर क्षेत्र की फैक्ट्रियां काम शुरू करेंगी। दक्षिण में स्थित ओमनिकेन की फैक्ट्री 14 जुलाई से सक्रिय होगी। फसल कटाई और चीनी उत्पादन का काम मध्य दिसंबर तक चलने की संभावना है। अक्टूबर 2025 से मई 2026 तक गन्ना की वृद्धि का दौर सामान्य से अधिक सूखा रहा। इस अवधि में हुई वर्षा सामान्य स्तर का केवल 63% रही। तापमान भी औसत से थोड़ा अधिक रहा, जबकि धूप का स्तर लगभग सामान्य बना रहा। इन परिस्थितियों के बावजूद गन्ना की वृद्धि संतोषजनक रही और मई के अंत तक उसकी लंबाई लगभग सामान्य स्तर के करीब पहुंच गई। हालांकि गन्ना में चीनी जमा होने की प्रक्रिया की शुरुआत कुछ धीमी रही। अब सर्दियों के आने के साथ गन्ना की वृद्धि की गति कम होगी, जिससे उसमें चीनी की मात्रा बढ़ने में मदद मिलेगी। किसानों की बात करें तो 29 मई 2026 तक 6149 छोटे गन्ना उत्पादकों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया था, जो कुल 7920 हेक्टेयर बीमाकृत भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं बड़े उत्पादकों ने 24,415 हेक्टेयर भूमि की घोषणा की है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 2025 में छोटे उत्पादकों के लिए 8,569 हेक्टेयर और बड़े उत्पादकों के लिए 24,746 हेक्टेयर भूमि बीमाकृत थी। पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी जारी है। हालांकि 2 जून से देर से पंजीकरण करने वालों पर विलंब शुल्क लागू कर दिया गया है।
2: ही रहमान जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के नए चीफ ऑपरेटिंग अफसर नियुक्त किए गए हैं। वे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। एफएससी के अनुसार उनका वित्तीय रेगुलेशंस क्षेत्र में 20 सालों से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर अनुभव रहा है। उन्होंने मॉरिशस सहित अमेरिका, यूके, भारत और कैमन द्वीपों में काम किया है। पिछले 29 मई को डिजिरे वेंकटाचलम के इस्तीफे के बाद एफएससी में किसी महानिदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई वित्त फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई है। एडीबी की 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पारित किए गए नए वित्त पोषण में मॉरिशस को मात्र 12 मिलियन रुपए से थोड़ा ज़्यादा ही प्राप्त हुआ है। ये पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत ही कम है, जब ये राशि कई बिलियन रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार इस कदम का अर्थ ये नहीं है कि ये संस्था मॉरिशस को छोड़ रही है, बल्कि बैंक का कहना है कि कई बड़ी परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। एडीबी का कहना है कि इस कदम के लिए कुछ परियोजनाओं में देरी और उच्च सार्वजनिक ऋण का कारण बताया जाता है। अदयन वाले की रिपोर्ट। अफ्रीकी विकास बैंक ने अपनी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। पूरे महाद्वीप में एडीबी ने विभिन्न परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए 8 बिलियन से ज्यादा खाता इकाइयों को मंजूरी दी है।

0: हालांकि मॉरिशस के लिए 2025 में ये राशि बहुत कम है, केवल 12 मिलियन रुपए से थोड़ा ज्यादा नया वित्त पोषण स्वीकृत किया गया है। तुलनात्मक रूप से मॉरिशस को 2023 और 2024 में कई बिलियन रुपए प्राप्त हुए थे, इसलिए ये कमी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका ये अर्थ नहीं कि अफ्रीकी विकास बैंक मॉरिशस से पीछे हट रहा है, बल्कि वास्तव में पिछले सालों में कई बड़ी वित्त पोषण परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि एडीबी कुछ समस्याओं को भी नोट करता है, परियोजनाओं का निर्धारित समय से पीछे होना, प्रशासनिक देरी, बदलती प्राथमिकताएं और सबसे बढ़कर उच्च सार्वजनिक ऋण। ये ऋण देश की नए ऋण लेने की क्षमता को सीमित करता है। अफ्रीकी विकास बैंक ने अपनी 2026 की आर्थिक रिपोर्ट में मॉरिशस के सार्वजनिक ऋण का अनुमान जून 2025 में सकल घरेलू उत्पाद GDP के 88.6% पर लगाया है। साथ ही इसने 2026 में 3% और 2027 में 3.8% की वृद्धि का पूर्वानुमान भी लगाया है। इस गिरावट के बावजूद मॉरिशस ADB की रणनीति के अनुरूप बना हुआ है। प्राथमिकताएं अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, परिवहन, बंदरगाह, सतत अवसंरचना और ब्लू इकोनॉमी बनी हुई हैं। संक्षेप में ADB मॉरिशस को अपना समर्थन जारी रखे हुए है। हालांकि 2025 में देश के लिए स्वीकृत नई फाइनेंसिंग में काफी कमी आई है। इस साल की शुरुआत में 201 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड पार करने के बाद अप्रैल 2026 तक हाउसहोल्ड ऋण बढ़कर 207.46 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। बैंक ऑफ मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें वार्षिक 12.2% की वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस बढ़ोतरी के कारण के कई कारण हैं। परंपरागत रूप से मॉरिशन लोग घर खरीदने या बनवाने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन हाल ही में अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट की कीमतों में लगभग 30% की वृद्धि ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। एक और कारण है आम जीवन चलाने और खरीदारियों के लिए क्रेडिट सुविधाओं का सहारा लेना। इसके परिणामों में से एक है परिवारों की खरीद शक्ति और बचत में कमी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कर्ज चुकाने में अब मॉरिशन परिवारों की आय का लगभग 18% खर्च होता है। मॉरिशस में सभी के लिए सामान्य नागरिक विवाह यानी सिविल मैरिज की मांग वाली पेटिशन को एक हफ्ते से भी कम समय में 13,000 से ज्यादा हस्ताक्षर मिल चुके हैं। आउट मोरिस की निदेशिका सौंद्रीन जुलियन के अनुसार अधिकांश लोग इस मांग का समर्थन करते हैं। इस अभियान का उद्देश्य है देश में ज्यादा समावेशी समाज को बढ़ावा देना और समान अधिकारों की रक्षा करना। ये याचिका 1 जून को प्राइड मंथ के संदर्भ में शुरू की गई थी। ये पेटिशन आउट मोइस के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं और जून के आखिर तक जनता के लिए खुला है। प्राप्त परिणामों को एक नागरिक घोषणा पत्र में संकलित किया जाएगा और सार्वजनिक किए जाने के बाद इसे अधिकारियों के सुपुर्द किया जाएगा। राजमीला सीतामणि, टीना बुदना।
1: Nous pouvons laisser sa pétition là ouverte pendant tout le mois de juin, pendant le mois des fiertés, et tout bon résultat pour compiler dans un manifeste citoyen.
2: ये अर्जी पूरे जून महीने भर खुली रहेगी, खासकर इस गौरव और पहचान के महीने के दौरान। इस दौरान मिलने वाले सभी सुझाव, अनुभव और गवाहियों को जोड़कर एक नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, जिसे हम सार्वजनिक रूप से जारी भी करेंगे। इसके साथ ही इसे सरकारी अधिकारियों, राजनैतिक निर्णय लेने वालों और संबंधित संस्थाओं तक भी पहुँचाया जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी तरह का टकराव पैदा करना नहीं है। हम सिर्फ तथ्य, अनुभव और नागरिकों की आवाज को एक महत्वपूर्ण सामाजिक चर्चा तक पहुंचाना चाहते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर खुले और रचनात्मक संवाद की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में इसी तरह की नागरिक पहल से महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड में सबके ये विवाह का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में जो कानूनी सुधार हुआ था, उसे जन समर्थन के बल पर संसद के सामने रखा गया था और उस अभियान को लगभग 8,000 लोगों का समर्थन मिला था।

0: 8000 सिग्नेचर।
1: पिछले कुछ समय से देश में फुट एंड माउथ डिजीज के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके संकेतों में हाथों, पैरों और मुंह में छाले और फोड़े शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये वायरल इन्फेक्शन ज्यादा सर्दियों के दौरान होता है और इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। भले ही पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इसके काफी मामले सामने आए हैं, फिर भी अभी के लिए स्थिति चिंताजनक नहीं बताई जाती। बच्चों में इसके प्रथम संकेत दिखने पर ही डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी जाती है। शैलिनी अबर ने डॉक्टर फाजिल कुदाबकस के साथ बात की। यशना मिश्रा
2: फुट हैंड्स और माउथ बीमारी कोक्साकी वायरस के कारण होता है। स्वच्छता का पालन किया जाना चाहिए, पानी और साबुन से हाथ धोना चाहिए। बच्चा यदि नर्सरी या स्कूल जाता हो तो माता पिता को उसे सबसे पहले पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना चाहिए। 2-3 दिनों तक उसे स्कूल न भेजें क्योंकि संक्रमण का खतरा है। कई बच्चों को ये सर्दी के मौसम में होता है। ये खतरनाक नहीं लेकिन सावधानी जरूरी है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जो उचित इलाज बताएंगे।
1: बर्तन तराश खबरों की ओर। आज तड़के सुबह दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 अंकों और गहराई 35 किलोमीटर की मापी गई। सुनामी की चेतावनियां जारी की गई हैं और वहां के राष्ट्रपति फेजिना मकोस ने लोगों के लिए जल्द से जल्द ऊंचाई वाले इलाकों में पनाह लेने के आदेश जारी किए हैं। मिंदानाओ द्वीप में स्कूल बंद किए गए हैं और आपातकालीन कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले अप्रैल महीने से पहली बार के लिए ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले किए हैं, जिसका इसराइल ने भयानक जवाब देने की चेतावनी दी है। अधिकांश मिसाइलों को मार गिराया गया है और इसराइली सरकार ने लोगों को शेल्टर से निकलने की अनुमति दी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से जवाबी हमले न करने और ईरान से ऐसी भड़काने वाली हरकतें न करने की मांग की। आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मस्कारिंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और दक्षिणी तथा पूर्वी लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है, जबकि दिन के दौरान दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में स्थिति बेहतर हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:40 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।

समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर एकता की ही मौजूदा चुनौतियां पार करने और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करने का एक मात्र साधन है। ये बात प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कल गन्ने की कटनी के सीजन की शुरुआत के संदर्भ में आयोजित प्रार्थनाओं के दौरान कही। हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के नए चीफ ऑपरेटिंग अफसर नियुक्त किए गए हैं। वे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई। इसके पीछे कुछ परियोजनाओं में देरी और उच्च सार्वजनिक ऋण का कारण बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज तड़के सुबह दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, सुनामी की चेतावनी जारी की गई। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में कादे हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।

0: Play, lmcradio.tv. शोक समाचार सुनिए। ऋषि दयानंद लेन मौला शो में, ऋषि दयानंद लेन मौला शो में 72 साल के 72 years old श्री सुभाष चंद चौधरी, श्री सुभाष चंद चौधरी जो धर्म नाम से ज़्यादा जानी जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे के मकान ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। सोल्फियाहिनो नंबर तीन वाकवा में 85 साल की 85 years old की कुमारी श्रद्धावती तपसी, श्रीमती श्रद्धावती तपसी पिताशी नाम बंधन जो श्रद्धावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके बेटे श्री देवेंद्र तपसी के मकान। सोल्फियाहिनो नंबर तीन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सोल्फियाहिनो नंबर पाँच की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू दिया 2 PM। जिबेर रोड रोजवेल में 68 साल की 68 years old श्रीमती बेदवेती सिंह सीबजन पिताशी नाम तोताराम जो राजनी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के एक बजे इनके पति श्री बलराम सिंह सीबजन के मकान जिबेर रोड रोजवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागीशानी रोजवेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM। नंबर 91 सीते गाइबू वाले देपात में, 69 साल के 69 years old श्री परदुमन सुखुआ जो तो राम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान नंबर 91 सीते गाइबू वाले देपात से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। न्यू रोड कच्चे मिलिटिया में 81 साल के 81 years old श्री चंद्रशेखर भीम सिंह जो प्रेम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे के मकान न्यू रोड कच्चे मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टांस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डे 11 AM। मामजेल जान गुडलैंड्स में 69 साल के 69 years old श्री धर्मराज हरिराम जो सूरज पेशया नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी पत्नी श्रीमती अमृता हरिराम के मकान मामजल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1 PM। भरत सिंह स्ट्रीट लाफ्लोरा में 53 साल के 53 years old श्री मनोज सिंह भरत जो रणधीर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह दस बजे की माँ श्रीमती बिंदु भरत के मकान भरत सिंह स्ट्रीट लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बाकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM। जिबेर रोड रोजवेल में 65 साल की 65 years old श्रीमती माला वीरापेन पिताशी नाम कनाई जो माला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह दस बजे इनके बेटे श्री प्रीतम वीरापेन के मकान जिबेर रोड रोजवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागी जानी रोजवेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: कहो।
1: मैं कहूंगी ना वो भी कल सुबह सेम टाइम 5 से 7 बजे के बीच। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड एंड वेदिता के साथ जुड़े रहिए इन मॉर्निंग बीट। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं वेदिता और आपकी प्यारी सी मुस्कान के लिए यहां पर हम लेकर आए हैं आपका अपना प्रोग्राम मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती। कैसे हैं आप भाई? आज सुबह ना मैंने सोचा कि आज मैं आपसे एक सवाल कर ही लूं। पता है अभी गाना चल रहा था तलाश के बारे में, तो मैंने सोचा कि आखिर आप क्या तलाश कर रहे हैं। देखो, हर रोज़ हम भागते रहते हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सक्सेस चाहिए, किसी को प्यार और किसी को सुकून, लेकिन कभी रुक कर सोचा है कि जिस चीज़ की तलाश हम बाहर कर रहे हैं शायद उसका एक हिस्सा हमारे अंदर ही छुपा हो? नहीं, सोचने वाली बात है ना। कभी हम खुशियों की तलाश में रहते हैं और खुशी किसी दोस्त की हंसी में मिल जाती है, कभी हम प्यार ढूंढते हैं और माँ के एक फ़ोन कॉल में मिल जाता है कि बेटा खाना खाया, कभी कभी हम सुकून तलाश करते हैं और वो सुबह की चाय जो होती है ना, उसकी जो पहली सिप होती है, वाह वाह वाह वाह वाह, हमें उसमें मिल जाती है। तो सुकून पाने का, प्यार पाने का, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर तलाश करते हैं, जो कि हमें मिल जाता है। ज़िंदगी का सच शायद यही है कि जो हम ढूंढ रहे होते हैं वो अक्सर हमारे आसपास ही होता है, बस नज़रिया बदलने की देर होती है। तो चलो आज कई दिन हम भी शुरू करते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं कि आखिर हमें तलाश क्या है, हमारे आसपास क्या है कि वो सुकून वो प्यार हमें नहीं मिल सकता है ना। तो चलिए, आपके सारे सवालों का जवाब आपके पास ही है और बाकी गाने हमारे पास हैं जो शायद आपके दिल को सुकून दे। तो वेदिता का साथ देते रहिएगा, ये है आपका मॉर्निंग बीट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: C'est le moment que tout le monde attendait. La fièvre du foot débarque chez Winners avec des offres à ne pas manquer. Jouez, marquez et gagnez. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos produits préférés et retrouvez tous vos indispensables pour vivre le match à petit prix chez Winners. Snacks, boissons, ambiance, entre amis ou en famille, vivez toute l'émotion du match et repartez gagnant. Le coup d'envoi est lancé. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin Winners pour profiter des offres et animations du moment.
4: On est tous Winners.
0: RM2
1: Radio Musty.
5: In it, Sri Charso Bisa.

0: जी मुड़कर देखने से क्या मिलेगा, बस हम तो यादें बना रहे हैं, खूबसूरत पल बना रहे हैं, यहाँ पर यादगार बना रहे हैं उसको, ताकि जब आप मुड़कर देखें तो आप कहें कि वाह ये दिन भी क्या दिन थे।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: And yes, Monday 8th of June, if you're celebrating your birthday today, don't forget कि हम आपका birthday celebrate करते हैं यहाँ पर on Radio Masti. कैसे भाई, अगर किसी का birthday है और उनको आप अगर surprise करना चाहते हैं तो all you have to do, आपको मुझे उनका नाम और उनका phone number भेजना होता है. अपना phone number भूल जाते हो, phone number भी भेजना होता है, तभी तो हम उनको ट्रिंग ट्रिंग फोन करेंगे, वो उठाएंगे और हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू. या हाँ चलो ऐसा करो, आप जल्दी करो, नंबर भेज दो, नाम भेज दो और यहाँ पर हम देखते हैं. काफ़ी सारे लोगों ने भेजना शुरू कर दिया. हाँ, आई कैन सी सो मेनी पीपल. चलो लकी ड्रॉ करेंगे, फिर देखते हैं कि आज घंटी फोन की बजेगी कहाँ.
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2
2: Radio.

0: हेलो हेलो हेलो, यस मिस्टर विकास।
1: यस मैम।
0: यस गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन।
0: ओके मिस्टर विकास, यू हैव टैक्सी राइट?
1: यस।
0: ओके वेयर यू लिव मिस्टर विकास?
1: ऑन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द आइलैंड।
0: Okay, so Mr. Vikash, I need you to help me reach somewhere in Mukka. There is a big building.
1: But you are where?
0: I don't know. I came at my friend's place and I don't know. I get lost. I don't know how to take bus. I need to reach this big building in Mukka. Hello? हेलो मिस्टर विकास। हेलो मिस्टर विकास, देयर इज अ बिग बिल्डिंग इन मोका। इट्स आई थिंक इट्स एमबीसी। डू यू नो एमबीसी?
1: ओके ओके आई अंडरस्टैंड मैम, नो प्रॉब्लम।
2: Happy birthday, happy birthday,
3: happy birthday to you from Radio Musti.
0: विकास जी क्या हो गया? डर गए बेचारा।
1: क्या हो, डरेंगे बर्थडे के दिन डरेंगे।
0: अब इस विकास सोच रही है कौन है भाई मेरा बर्थडे आज का दिन खराब कर रहा है, अब मैं उसको इतने बड़े मौका में इतना बड़ा बिल्डिंग में कहाँ ढूंढने जाऊं। वैसे हैप्पी बर्थडे
1: ढूंढ देते हैं।
0: अच्छा ठीक है, तो आप टैक्सी चलाते हैं, आप तो दुनिया आप तो यहाँ पूरे मॉरिशस में घूमते रहते हैं, आपको पता है एमबीसी कहाँ पे है? तो ऐसा करो गाड़ी में बैठना, अभी 9 बजे के बाद आप आ जाना अपने आईडी कार्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पर लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से आपको बर्थडे सरप्राइज किया गया है और आपको मिल रहा है एक वाउचर, आपको आज नहीं तो कल, आपका बर्थडे है मुझे नहीं पता, आप आज अगर आ जाते हैं आज तो बहुत अच्छी बात है। सो आप आइएगा, आपके लिए एक वाउचर है और वाउचर के साथ आप लोलो हाइपर मार्केट जाइएगा, वहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज है। एंड थैंक यू सो मच एंड आई विश यू। हाँ जी,
1: किसने ये सरप्राइज किया बोल सकते हैं?
0: ये सरप्राइज किसने किया? वैसे तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपका नाम लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। ओके तो यहाँ पर शायद ब्रदर इन लॉ लिखा है, पूजा ने किया है आपके लिए सरप्राइज। ओके एक्चुअली आपके लिए दो मैसेज आए हैं, दिनेश जी की तरफ से और पूजा जी की तरफ से, दो लोगों ने आपको यहाँ पर बर्थडे विश भेजे हैं और लकी हैं आप, आज आपका लकी ड्रॉ के बाद आपका नाम आया। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर बर्थडे एंड डोंट फॉरगेट टू कम विद योर आईडी कार्ड ताकि आप यहाँ पर आकर अपना जो वाउचर है वो ले जाए। ठीक है, थैंक यू। ओके बाय।
1: ओके बाय।
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स। रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती इन द मिक्स।
0: वैसे आज जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें उन सबको हमारी ओर से बहुत सारा प्यार है। विशिंग यू अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वन। थोड़े दिन में डेडिकेशंस ऑन 549 and 1294। गेट रेडी, हम बढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स की ओर भी, बस थोड़ी ही देर में।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports news, latest updates.
2: Sports news.
3: Radio Musti in the mix.
4: And yes, my dear friends, time to welcome Arvind. चलिए उनसे जानते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है. Good morning.
5: Good morning आपको. Good morning, RM2 listeners. Let's check out the latest from the sports world. FIFA World Cup 2026 शुरू होने में अब केवल 3 दिन बाकी हैं. इसके लिए टीमों की तैयारियां जारी हैं. फ्रेंडलीज में आज सुबह कोलंबिया ने 2-0 से जॉर्डन को हराया. कल के मैचों में कल सुबह अर्जेंटीना की जीत हुई थी ऑन्जुरास पर 2-0 से. केन्या 4-0, डेनमार्क 2, यूक्रेन 1. इसमें डोगु का 1 गोल रहा. इस मैच में एरिक्सन कोलैप्स हो गया पर अब ठीक है, होश आ गया है. क्रोएशिया 2 स्लोवेनिया 1. वेटरन खिलाड़ी मोड्रिच 1 गोल स्कोर कर पाया. दूसरा गोल पासालिच का था. ग्रीस 0 इटली 1. एस्पोजिटो का गोल इटली के लिए. मोरक्को और नॉर्वे के बीच मैच ड्रॉ गया 1-1. जियाज ने मोरक्को का गोल स्कोर किया. नॉर्वे का गोल ओडेगार्ड का रहा. फिर इक्वाडोर 3 ग्वाटेमाला 0. काइसेडो, एंगुलो और एस्टुपिनियन का गोल इक्वाडोर के लिए. UEFA Under 17 Championship की चैंपियन टीम बनी इटली. फाइनल में इटली के लड़कों ने पेनाल्टी पर बेल्जियम को हराया. स्कोर 1-1 रहा. फिर पेनाल्टी पर 4-3. आज के फ्रेंडलीज में फ्रांस का मुकाबला नॉर्दर्न आयरलैंड से होगा नेदरलैंड्स उज़्बेकिस्तान. फ्रांस का ये आखिरी फ्रेंडली मैच है, इसके बाद सीधे USA की ओर. वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का वाइस कैप्टन डेक्लन राइस होगा. राइस के साथ बुकायो साका, नोनी माडवेके और एबेरिची एजे इंग्लैंड के US ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे. परसों एक आखिरी मैच होगा कोस्टारिका के खिलाफ. एथलेटिक्स स्टॉकहोल्म डायमंड लीग के 800 मीटर में ओड्रे वेरो की जीत. इस रेस में मॉरिशस की राशेल क्लोफेंस्टाइन ने भी भाग लिया. रेस का क्रोनो वुमेन 800 मीटर में थर्ड बेस्ट रहा. इन दिनों कोद्दू में साउथर्न अफ्रीकन चैंपियनशिप अंडर 18 अंडर 20 चल रहे हैं. कल दूसरे दिन मॉरिशस के नाम और 3 गोल्ड मेडल. अंडर 18 जावलिन में नेहमी क्लेयर, 400 मीटर हर्डल्स में हाजेल सिडू और अंडर 18 मेडले रेस में भी गोल्ड मेडल. टोटल 8 गोल्ड मेडल हमारे एथलीटों के नाम. बोत्सवाना पहले आया 10 गोल्ड मेडल के साथ. फॉर्मूला 1 रेसिंग में मोनाको ग्रांड प्री में किमी अंतोनेली की जीत हुई. 19 साल का अंतोनेली ने अपनी 5वीं रेस जीती, 5th इन ए रो, लगातार 5वीं जीत. चैंपियनशिप में अंतोनेली अब हैमिल्टन से 66 पॉइंट्स आगे हैं. हैमिल्टन कल दूसरा स्थान ले पाया. टेनिस फ्रेंच ओपन का चैंपियन बना अलेक्जेंडर बेरेव. ये उसकी पहली लॉन्ग अवेटेड ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है. फाइनल में बेरेव को जमीन आसमान एक करना पड़ा फ्लावियो कोबोली को हराने में. 5 सेट थ्रिलर 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. लड़कियों में अंद्रीवा चैंपियन बनी थी. क्रिकेट भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल टीम इंडिया ने 564 रन बनाकर डिक्लेयर किया. KL राहुल और शुभमन गिल के सेंचुरी रहे. साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, वाश

0: चिंतन सुंदर ये लोग हाफ सेंचुरी पूरा कर पाए। अभी अफगानिस्तान की टीम की इनिंग्स चल रही है, 5 विकेट डाउन 113 रन। मानव सुतर 3 विकेट ले पाया, प्रसिद्ध कृष्णा 2। आज तीसरे दिन का खेल होगा। याद दिला दें आज है 8 जून यानी जी मैं क्वा, और 3 दिनों में थर्सडे 11 फुटबॉल का महामेला शुरू होगा मेक्सिको यूएसए और कनाडा में। रोड टू वर्ल्ड कप 2026 जरूर सुनिएगा, ये 8:30 बजे लेकर आएंगे RM2 पर। आज लेटेस्ट न्यूज के साथ साथ इस वर्ल्ड कप के एक डार्क हॉर्स पर चर्चा करेंगे, नॉर्वे की टीम पर फोकस होगी, जरूर सुनिएगा। वर्ल्ड कप नॉकिंग एट द डोर, आप लोग भी अपनी अपनी टीम चुन लीजिए। इस बार एक फेवरेट को निकालना मुश्किल हो गया है, पर दोस्तों के साथ कलीग्स के साथ ये गेम जरूर खेलेगा कि मेरे लिए ये फेवरेट है, मेरे लिए वो फेवरेट है। लेकिन भूलेगा नहीं, डार्क हॉर्सेस भी होते हैं, यू नेवर नो। I'll catch you very soon. Till then, enjoy the music. Bye-bye.
1: Thank you, Arvin. Have a good day. Milte hain thodi der mein.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Radio Musti.
4: Hit music only.
3: Feels a Musti. Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: ये सात समंदर पार करके आए हैं और हम तो बस अपनी गाड़ी से आए हैं. आप भी ड्राइव कर रहे होंगे, प्लीज बी केयरफुल ऑन द रोड. आज 8 जून है और पूरी दुनिया वर्ल्ड ओशन डे मना रही है. ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे ओशंस यानी समंदर सिर्फ पानी के बड़े बड़े बॉडीज नहीं है बल्कि धरती पर जीवन का आधार है.

क्या आप जानते हैं कि धरती की लगभग 71% सतह ओशन से ढकी हुई है और हम जो ऑक्सीजन से सांस लेने के लिए यूज करते हैं उसका करीब 50% ओशन से आता है। समंदर हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, लाखों प्रजातियों का घर है और दुनिया भर के करोड़ों लोगों को रोजगार और भोजन प्रदान करता है। लेकिन आज हमारे ओशंस जो है ना कई बड़ी चुनौतियां का सामना कर रहे हैं। ये प्लास्टिक पॉल्यूशंस, ऑयल स्पील्स, ओवर फिशिंग, क्लाइमेट चेंज और राइजिंग सी टेम्परेचर्स की वजह से समुद्री जीवन खतरे में पड़ रहा है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्रों में पहुंचता है जिससे टर्टल्स, डॉल्फिन्स, व्हेल्स और अनेक मरीन स्पीशीज को नुकसान होता है। तो आज वर्ल्ड ओशन डे है, कम से कम अगर हमने कुछ स्टेप्स लिए जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, बीच और वाटर बॉडीज को साफ रखने में योगदान दें एंड सस्टेनेबल सी फूड को सपोर्ट करें और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप समंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो कूड़ा कचरा है वो समंदर में नहीं बल्कि आप अगर किसी बिन में डाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए इसी के साथ अब मूव करते हैं अगले गाने की ओर। और ये गाना हमें लेके जा रहा है 8 बजे के समाचारों की ओर।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti,
0: feel the Musti.
3: पेशवा भोजपुरी के समाचार। गन्ना की कटनी के शुरू के संदर्भ में कालकाउं जाप की अमातु के कोविल में आयोजित वार्षिक प्रार्थना में भाग लेवे बखत प्रधानमंत्री डॉ. नवीन आमुलाम भावी राष्ट्रीय बजट की रूपरेखा प्रस्तुत करलन जे उनकर अनुसार मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थिति के बीच जिम्मेदारी सॉलिडारिटी और आर्थिक दक्षता पर ही आधारित रही। बोलन कि ई दूसर का बजट एगो कठिन आर्थिक दौर के बीच तैयार करल गल है और देश के यथार्थवाद तथा दृढ़ संकल्प के संगे सही राह पर ही वापस आने के आवश्यकता बाटे। प्रधानमंत्री मौजूदा चुनौती के मद्देनजर सब कोई के एकजुट होके जिम्मेदार तरीका से राष्ट्रीय हित में काम करे के मांग करलन। एक संगे ही बोलन की मकसद है अर्थव्यवस्था पर ही दबाव डाले के बिना और जरूरतमंद लोग की रक्षा करके देश में आर्थिक वृद्धि मजबूत करेगी। डॉक्टर नवीन गुलाम एक बात पर ही बल दिले हवन की एकता ही मौजूदा चुनौती पार करे के और देश की प्रगति के राह पर ही अग्रसर करे के एगो मात्र साधन है। ये बारिश के गन्ना के कटनी के सीजन आवत एकाध दिन में शुरू हो जाए। 22 जून से आलतेयो और तेगा कारखाना से पेड़ाई के काम शुरू हो। विशेषज्ञ लोग के अनुसार भले ही ई कटनी के सीजन एगो सामान्य से जस्ती सूखा मौसम के बाद आयल बाटे, फिर भी गन्ना पैदावार के कुल वृद्धि संतोषजनक है। हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के नवा चीफ ऑपरेटिंग अफसर नियुक्त करल गेल हवन। उ आधिकारिक तौर पर ही 1 जुलाई से अपन कार्यभार संभालियन। FSC के अनुसार उनकर वित्तीय क्षेत्र में 20 बरिस से जस्ती के अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर अनुभव बाटे। मॉरिशस सहित अमेरिका, UK, भारत और कैमन द्वीप पर काम कर ले हवन। मॉरिशस खातिर अफ्रीकी विकास बैंक देने से स्वीकृत नवा फ्रांसिंग में भारी गिरावट आयल बाटे। ADB के 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार गल बरिस के पारित करल गल वित्त पोषण में मॉरिशस के खाली 12 मिलियन रुपया से थोड़ा जस्ती ले प्राप्त होल बाटे। ई गल एक आध बरिस की तुलना में बहुत ही कम है जब ई राशि कलहला कईगो बिलियन रुपया ले पहुंचल बाटे। बकीर अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार ई कदम के ई अर्थ नहीं है कि ई संस्था मॉरिशस के छोड़ देल बाटे। बकीर बैंक के ई मानना है कि कईगो बड़ा परियोजना के पहले से ही मंजूरी मिल गल बाटे। ADB के ई कदम खातिर एकादगो आर परियोजना में देरी और उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण बतावल जाता। गलथोरा बखत से देश में फुट एंड माउथ डिजीज के मामला दर्ज करल गल बाटे। कर संकेत में हाथ में, गोड़ में और मुंह में छाला और फोड़ा शामिल बाटे। स्वास्थ्य अधिकारी लोग के अनुसार ई वायरल इन्फेक्शन जस्ती सर्दी के दौरान पड़ेला और एक से जस्ती लेकर लोग प्रभावित हो जा भले ही गल एकाद हफ्ता के दौरान एकर कई गो मामला सामने आल बाटे, फिर भी हबी खातिर एक स्थिति चिंताजनक नहीं बतावल जाता। लेकिन लोग में प्रथम संकेत पर ही डॉक्टर के दिखावे के चाहेला। दूसरा देश के खबर में आज फजर के दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटका महसूस करल गल। रिक्टर पैमाना पर ही एकर तीव्रता 7.8 अंक और गहराई 35 किलोमीटर के मापल गल है। सुनामी के चेतावनी जारी करल गल बाटे। रहल भोजपुरी के समाचार तो ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: Morning beat, a good beat for your morning show. James.
0: RM2 Radio Musti in the mix.

0: वैसे नाना नहीं, मॉर्निंग में जब मंडी में काम पर जाना होता है ना तो ज्यादातर नानी याद आती है।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: 8 जून सुबह के 8:08 हुए हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती। मैं हूँ वेदिता आपके मॉर्निंग बीट के साथ और यहाँ पर शुरू करते हैं
3: स्पोर्ट्स न्यूज लेटेस्ट अपडेट्स।
4: स्पोर्ट्स न्यूज
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: एंड ये सभी बहुत सारे लोग हैं काम पर जा रहे हैं तो हमारे दोस्त विकास ने हमें इशारा किया है कि शिवानंदा एवेन्यू टू IGCIC यहाँ पर रास्ता एकदम ब्लॉक्ड हो गया और बहुत धीरे धीरे लोग गाड़ी चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी। तो ट्रैफिक ब्रांच से फ़ोन करके जब हमने पूछा कि भाई बता दो क्या हो गया तो उन्होंने कहा नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, नो एक्सीडेंट नो इंसिडेंट की रिपोर्ट है। एक्चुअली पीक टाइम है तो बहुत सारे लोग अभी निकले हुए हैं काम पर जाने के लिए, इसकी वजह से अभी थोड़ा ट्रैफिक हो गया है, बढ़ गया है, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। एंड चलिए अगर आप लोग भी ड्राइव कर रहे हैं बी केयरफुल ऑन द रोड, आराम से गाड़ी चलाएगा और बाकी ट्रैफिक अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल अभी समय हो गया है।

0: जान लेते हैं अदिति के साथ आज मौसम कैसा रहेगा।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: ओनली टू विनर्स।
3: अमहालत मस्करिंस के दक्षिण में पाई जाने वाले जोरदार आंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा, 2.50 मीटर तक की लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है, जबकि दोपहर बाद दक्षिणी लगूनों में स्थिति बेहतर हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:40 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: C'est le moment que tout le monde attendait. La fièvre du foot débarque chez Winners avec des offres à ne pas manquer. Jouez, marquez et gagnez. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos produits préférés et retrouvez tous vos indispensables pour vivre le match à petit prix chez Winners. Snacks, boissons, ambiance, entre amis ou en famille, vivez toute l'émotion du match et repartez gagnant. Le coup d'envoi est lancé. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin Winners pour profiter des offres et animations du moment.
5: On est tous winners!
1: A good beat for your morning show. Come on! Morning Beat, RM2.
2: Radio Musty.

0: दोस्तों, अपने हक के लिए खड़े होना सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करना है। अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तो दुनिया आपकी खामोशी को आपकी रजामंदी समझ लेगी। कहते हैं ना, फाइट फॉर योर राइट। फाइट फॉर योर राइट का मतलब हमेशा झगड़ा लड़ना नहीं होता। इसका मतलब है अपनी डिग्निटी, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज और जस्टिस के लिए खुद को स्टैंड करना। जब कोई आपका हाथ आपके साथ अनफेयर बिहेवियर करें, मेहनत का क्रेडिट ले लें या आपको दबाने की कोशिश करें, तब शांत लेकिन मजबूत तरीके से अपनी बात रखना ज़रूरी है। राइट्स के लिए लड़ना कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और करेज का साइन होता है। डर के सामने झुकने से प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं, अपने हक के लिए खड़े होने से हम खुद बड़े बन जाते हैं। रिमेंबर, रिस्पेक्ट मिलने का इंतजार मत करो, अपने एक्शंस और कॉन्फिडेंस से उसे अर्न करो और जब जरूरत हो अपने हक के लिए आवाज उठाओ।
1: Avant de défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: Oh God, one more remix. A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: 48 teams, 104 matches. Radio Masti ki team ke saath chaliye United States, Canada aur Mexico.
1: Radio Masti ke saath road to the World Cup.
2: चलो वर्ल्ड कप की ओर बहुत जल्द मेक्सिको अमेरिका और कनाडा पहुंच रहे हैं सो काउंटडाउन जारी है आज 8 जून कल 9 फिर 10 और थर्सडे को ग्रैंड ओपनिंग और पहला मैच ब्राजील के स्क्वाड में अटलांटा से मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने वाला खिलाड़ी मिडफील्डर एडिसन को जोड़ा गया है वो रोमा के खिलाड़ी वेस्टले के स्थान पर आ रहा है वेस्टले को इजिप्ट के खिलाफ फ्रेंडली मैच में गहरी चोट लगी थी जर्मनी के लिए हाई मोमेंटम 9 गेम विनिंग स्ट्रीक द नेशनल मैनचेस्टर के लिए ऐसे में जर्मनी को इस टीम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इधर इंग्लैंड की टीम का वाइस कप्तान होगा डिक्लेन राइस कप्तान मिस्टर रिलायबल बालों दो फेवरेट हैरी केन है इस वर्ल्ड कप में नॉर्वे की टीम बहुत दूर जा सकती है 28 साल बाद वर्ल्ड कप में खेलने आई है पर वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द अल्टीमेट डार्क हॉर्सेस इस बार गोल्डन जेनरेशन टीम है वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी अर्लिंग अलोन और मार्टिन ओडेगार्ड क्वालिफिकेशन में डोमिनेट 8 विंस आउट ऑफ 8 मैचेस 37 गोल स्कोर कर पाए थे केवल 5 कंसीड किए थे इटली को 3-0 और 4-1 से हराने वाली नॉर्वे की टीम ही थी नॉर्वे ग्रुप आई में है चैलेंजिंग ग्रुप ग्रुप डेलामो इसमें फ्रांस सेनेगल नॉर्वे और इराक हैं फुटबॉल एनालिस्ट के अनुसार फ्रांस इस ग्रुप को टॉप करेगा और नॉर्वे टॉप 2 या टॉप 3 से नॉकआउट में जा सकता है याद दिला दें सभी ग्रुप से 2 टॉप टीमें ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होंगी और 8 बेस्ट थर्ड प्लेस चुनी जाएंगी सो नॉकआउट राउंड के लिए तैयार अभी बाद में अभी आप लोग तैयार रहिए अपने अपने शर्ट निकाल लीजिए और लेट्स सपोर्ट द टीम कौन सी टीम ये आप खुद देख सकते हैं चलो वर्ल्ड कप की ओर on RM2. Keep on listening.
0: FIFA World Cup 2026. 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, a very good morning and welcome. चलो भाई यहाँ पर इतने सारे लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारा भी हक बनता है कि उनको हैप्पी बर्थडे बोल ही दे। चले तो यहाँ पर हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं टू भाभी अनुषा जी, हाँ, जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं आज। और चलो भाई यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। एंड भाई कविराज का भी बर्थडे है, तो ये है अंजू की तरफ से, पापा सुनील बाबू की तरफ से बहुत सारा प्यार है उनके लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे की बात चली है तो यहाँ पर और भी बहुत सारे दोस्त अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू हर्षिता सदा सिंह, उनके हस्बैंड नीरेश की तरफ से यहाँ पर हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आपको। जी हाँ, विकास के लिए मैसेज है, उनको भी हैप्पी हैप्पी बर्थडे। एंड साथ में यहाँ पर हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं सावित्री दामड़े जी को, और वो रहती है लावोंचिया, उनकी बेटी आशुका, उनके दामाद हैं रोशन। साथ में उनकी माँ यानी कि नानी की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। उनके पोते हैं रेयांश, और वो आज के दिन अपने लेट बेटे अनिश को याद कर रहे हैं। एंड उन्होंने सबको थैंक यू बोला है जिन्होंने उनको उनके बर्थडे पे याद किया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं हमारे कलीग, हमारी छोड़ी अशिता रघु को, जो कि हमारी जर्नलिस्ट है, और उनको हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं हमारे पूरे एमबीसी टीम की तरफ से। अशिता, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, जहां पर सब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, प्रिया जो है लगविया दिखेओल से हैं, ब्लेसिंग एंड लव फ्रॉम मामा संगीता पापा दौमैन, हैप्पी बर्थडे टू यू, बेस्ट विशेस हैं फ्रॉम कामिनी जीतन सर्वेश, साथ में हैं दीपशा, वी हैव नितेश रोहन नक्ष विहान एंड युवान की तरफ से बुदारू फैमिली की ओर से विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे प्रिया। चलिए आपको मैं बता दूं कि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन शिल्पा शेट्टी के साथ। जी हाँ, 8 जून 1975 को ये पैदा हुई थी। उन्होंने 90s के दौर में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी एक्टिंग, डांस और ग्रेसफुल पर्सनालिटी से सबका दिल जीता। फिल्मों के साथ साथ शिल्पा ने फिटनेस को भी एक मूवमेंट बना दिया। आज सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक फिटनेस आइकन, एक एंटरप्रेन्योर और कितने सारे लोगों के एक इंस्पायरेशन बन गई है। उनका डिसिप्लिन, हेल्दी लाइफस्टाइल और पॉजिटिव माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क से भी मिलती है। आज उनके बर्थडे के मौके पे हम उनके अचीवमेंट्स को सल्यूट करते हैं और उनके लिए खुशियाँ, सेहत और सफलता से भरे एक शानदार साल के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। चलिए, तो हैप्पी बर्थडे शिल्पा शेट्टी, एंड आप इसी तरह अपनी इनर्जी, ग्रेस और पॉजिटिविटी से लोगों को इंस्पायर करती रहें। दोस्तों, अगर आप भी शिल्पा शेट्टी को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो जरूर आप कर सकते हैं, बाकी इस गाने के साथ डांस कर सकते हैं। शिल्पा शेट्टी के सभी फैंस के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: And yes, you are listening to Radio Masti.
1: A good beat for your morning show.
2: Come on.
1: RM2.
3: Radio Masti.
0: चलिए तो जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी इस समय हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे, लेट मी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. या ओके, सो आज का दिन आपके लिए सरप्राइज से भरा हो, प्यार से भरा हो, और आपकी ज़िंदगी में एक कहते हैं ना कि नया मोड़. कहीं ना कहीं लोग कहते हैं चलो अपने बर्थडे पर एक नई ज़िंदगी शुरुआत करते हैं, और वो शुरुआत आज हो आपकी ज़िंदगी में. बस खुशियाँ खुशियाँ हो, प्यार ही प्यार हो, और आप हमेशा खुश रहे. और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहे, क्योंकि यहाँ पर भी खुशियाँ ही मिलती है ना. चलिए तो इसी के साथ अभी हम एक और आर्टिस्ट के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं. यस, आप ज़रूर पसंद करेंगे इन्हें, और अभी भी पसंद करते हैं. तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं अब हम डिम्पल कपाड़िया की. जी हाँ, डिम्पल कपाड़िया, इनको कौन नहीं जानता. अभी भी इनकी फिल्में चल रही हैं, अभी भी ये बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही हैं, जो अपने ज़माने में खुद एक बहुत बड़ी स्टार थी, रातों रात स्टार बन गई थी. डिम्पल कपाड़िया ने 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में ऐसा डेब्यू किया जिससे पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया. उनकी पहली फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया, और वो इंडियन सिनेमा की सबसे यादगार एक्ट्रेसेस में शामिल हो गई. अपने करियर के दौरान डिम्पल ने कई अलग अलग और चैलेंजिंग रोल्स निभाए. उनकी एक्टिंग में हमेशा एक नेचुरल चार्म और गहराई नजर आती है, जो उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग बनाती हैं. चाहे क्लासिक सिनेमा हो या मॉडर्न फिल्म्स, डिम्पल कपाड़िया ने हर जनरेशन की ऑडियंस का दिल जीता है. उनका कॉन्फिडेंस, एलिगेंस और स्क्रीन प्रेजेंस आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना पहले था. उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि टैलेंट और डेडिकेशन के साथ हर दौर में अपनी पहचान बनाई जा सकती है. और आज उनके बर्थडे के खास मौके पर हम डिम्पल कपाड़िया जी को बहुत सारी शुभकामनाएं भेजते हैं, खास तौर पे उनकी सभी फैंस की तरफ से. वैसे एक फिल्म में वो नजर आई थी जहाँ पे उन्होंने एक रोबोट बनाई थी, आपको याद है, तेरी बातों में, या कैसे उलझा जिया. चलिए जी, शायद आपको याद होगा कि यहाँ पे वो साइंटिस्ट बनी थी. हैप्पी बर्थडे टू डिम्पल कपाड़िया, उनके सभी फैंस के लिए पेश है गाना. यू कैन डांस.

0: a good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: अब तो जाने का टाइम हो गया है जी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ खुश रहे। जी हाँ, जितना भी पल हमने साथ में बिताए, जितने भी गाने हमने सुने, जितना भी हमने डांस किया, लेडीज बड़ी शर्माती है डांस करने के लिए, लेकिन घर पे कौन देखता है। डांस करना है तो करो ना, डांस करने से अच्छा होता है। देखो अभी हम बात कर रहे थे, विकास डांस करते करते आ गया।
3: टिप टिप टिप टिप टिप टैप टैप टैप डांसिंग।
2: नहीं, ये टिप टिप टिप वाला क्या था?
3: नहीं, मैं बहुत इंस्पायर हो रहा था जब बारिश होती है, तो टिप टिप तो
2: बारिश होने
3: नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल, इसलिए मैंने टैप टैप।
2: तो मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो मॉर्निंग मॉर्निंग में?
3: देखो ऐसा है, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि मौसम कैसा हो रहा है। स्टूडियो में बैठे बैठे जो तुम बारिश कर रहे हो गानों की, उसमें कहीं भीग ना जाओ, जाकर सुखा लो अपने।
2: सीधे सीधे बोल दो ना विदिता, बाहर जाओ, तेरा टाइम खत्म हो गया, बारिश का बहाना क्यों बना रहे हो।
3: चलो कोई नहीं, पतली गली लो और निकल लो।

0: प्यारा।
1: चलो हम भी बाहर कुछ देख के आते हैं नजारा।
0: तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा।
1: कल मॉर्निंग में मिलते हैं 7 बजे। ओके okay?

0: संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा। गन्ने की कटनी की शुरुआत के संदर्भ में कल कौंजाब के माथुके कोविल में आयोजित वार्षिक प्रार्थनाओं में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम निभावी राष्ट्रीय

0: बजट की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो उनके अनुसार मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच जिम्मेदारी, सॉलिडारिटी और आर्थिक दक्षता पर आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि ये दूसरा बजट एक कठिन आर्थिक दौर के बीच तैयार किया गया है और देश को यथार्थवाद तथा दृढ़ संकल्प के साथ सही राह पर वापस लाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर सभी से एकजुट होकर और जिम्मेदार तरीके से राष्ट्रीय हित में काम करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि मकसद अर्थव्यवस्था पर दबाव डाले बिना और जरूरतमंदों की रक्षा करते हुए देश में आर्थिक वृद्धि मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि एकता ही मौजूदा चुनौतियां पार करने और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करने का एकमात्र साधन है। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई है। एडीबी की 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पारित किए गए वित्त पोषण में मॉरिशस को मात्र 12 मिलियन रुपए से थोड़ा ज्यादा ही प्राप्त हुआ है। ये पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत कम है, जब ये राशि कई बिलियन रुपए तक पहुंच पाती थी। लेकिन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार इस कदम का अर्थ ये नहीं है कि संस्था ने मॉरिशस को छोड़ दिया है, बल्कि बैंक का कहना है कि कई बड़ी बड़ी योजनाओं को पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है। एडीबी इस कदम के लिए कुछ परियोजनाओं में देरी और उच्च सार्वजनिक ऋण का कारण बताता है। पिछले कुछ समय के दौरान देश में फुट एंड माउथ डिजीज के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके संकेतों में हाथों, पैरों और मुंह में छाले और फोड़े शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा सर्दियों के दौरान होता है और इससे सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। भले ही पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इसके काफ़ी मामले सामने आए हैं, फिर भी अभी के लिए स्थिति चिंताजनक नहीं बताई जाती। बच्चों में इसके प्रथम संकेत दिखने पर ही डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज तड़के सुबह दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 अंकों और गहराई 35 किलोमीटर की मापी गई। सुनामी की चेतावनियां जारी की गई हैं और वहां के राष्ट्रपति ने लोगों के लिए जल्द से जल्द ऊंचाई वाले इलाकों में पनाह लेने के आदेश जारी किए हैं। मिंदानाओ द्वीप में स्कूल बंद किए गए हैं और आपातकालीन कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: और जी बुलाया नहीं लेकिन आ गया। नहीं नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मंडे की। बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मंडे, उफ ये मंडे, मॉर्निंग मॉर्निंग उठना, तैयार होना। और आज ठंड भी थोड़ी ज़्यादा थी। नहीं मैं देखा जब तो था लगभग 13-14-15 डिग्री आपके साइड पर, कितना डिग्री। लेकिन कभी कभी काम के चक्कर में जो ये तापमान आपके दिमाग में जो बढ़ जाता है वो काफ़ी मुश्किल होता है संभालना। इसलिए ठंडा ठंडा कूल कूल अपना दिमाग भी रखो, खाली मौसम को ठंडा कूल मत होने दो, अपना दिमाग भी। Right back after the weekend, और वीकेंड में बहुत सारी मस्ती हुई, जहां पर जो जीता वही सिकंदर पहुंच गए थे भाई सीधा हमारे ग्रुप के अंदर। हम थे एट ब्लू बे पब्लिक बीच, जहां पर RM2 RM3 की टीम, बहुत सारी मस्ती हुई। थैंक यू सो मच उन सभी के लिए जितने सारे लोग वहां पहुंचे, हमारा साथ दिया, एंड उन सब के लिए भी जिन्होंने हमें फॉलो किया ऑन फेसबुक एंड टिकटॉक लाइव। और वहीं पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसके भी बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स थे जो पहुंचे थे टीवी सेट के सामने। और उसके बाद कहानी बहुत ही कमाल की चली। इट्स सो नाइस कि म्यूजिक के जरिए, अपने सारे प्रोग्राम के जरिए सब एक साथ आ पाते हैं। तो चलिए, अगर प्यार हो गया हमको तो आपको भी तो कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.
2: तो साहब थोड़ी देर में हॉरोस्कोप और उसके बाद कुछ घर की बातें।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Masti.
1: Hey June Monday ka din shuruaat karte hain with
2: Aries Mesh Rashi.
1: आज का दिन संतुलित और सुखद रहेगा। धार्मिक माहौल में समय बिताने का मौका मिलेगा। नौकरी में मेहनत का फल प्रमोशन या प्रशंसा के रूप में मिल सकता है और कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से मन काफी प्रसन्न हो सकता है।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: भाई आज का दिन लाभ देने वाला रहेगा। परिवार में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी जरूरी बात को हर किसी से शेयर ना करें। वाहन सावधानी से चलाएं, चोट लगने की आशंका है, इसलिए बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड।

0: नाय मिथुन राशि
1: आपके लीडरशिप जो स्किल्स हैं बहुत कमाल हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेंगे। मुश्किलें आएंगी लेकिन आप उनका डट कर सामना करेंगे। नया बिजनेस शुरू करने का विचार मन में आ सकता है और थोड़ा सोचिए कि अब कितना आप काम कर सकते हैं उसके प्रति। वहीं पर संतान की खुशी के लिए नया वाहन खरीद सकते हैं।
0: कैंसर कर्क राशि,
1: कर्क राशि आज खर्च अचानक बढ़ सकते हैं जिससे थोड़ी सी टेंशन बनेगी। अगर प्रोविजन रखा है तो बढ़िया। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो फिलहाल रुकना ही समझदारी होगी। काम को पूरी ईमानदारी से करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
0: लियो सिंह राशि,
1: लियो जो भी काम मिले उसको कर दियो। आज नया काम शुरू करने के लिए दिन काफी अच्छा है। रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहने वाला है। बिजनेस में बदलाव करने से बचे। पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा और जीवन साथी के साथ शॉपिंग या अच्छा समय बिताने का भी मौका मिलेगा।
0: वर्गो कन्या राशि,
1: आज कामकाज में नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। परिवार में तालमेल और प्यार बना रहेगा। किसी दूर रहने वाले की याद सता सकती है तो उनसे संपर्क स्थापित कीजिए थोड़ी सी बातचीत। और अगर आपको लगता है कि शुगर या बीपी जैसी समस्याएं आ रही हैं उनको हल्के में ना लें।
0: लिब्रा तुला राशि,
1: भाई चुनौतियां थोड़ी ज्यादा रहने वाली हैं। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। पैसों के मामले में किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। परिवार के साथ खुलकर बातचीत करें और ऐसे जो गलतफहमी है ना वो दूर हो सकती है। बिजनेस में पार्टनरशिप करने से बचें और यात्रा की योजना बन रही है।
0: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज धैर्य और शांति बनाए रखें आपके लिए अच्छा रहेगा। थकान और मानसिक बोझ से राहत मिलेगी। काम के साथ साथ थोड़ा आराम के लिए भी समय निकालें। जीवन साथी के साथ चल रही अनबन को प्यार से सुलझाने की कोशिश करें। और है नहीं कुछ, अगर प्यार से बात सुलझ सकती है तो और क्या जरूरी। परिवार में शादी विवाह की खुशखबरी माहौल बना सकती है।
0: सजिटेरियस धनुराशि,
1: करियर के लिहाज से आज का दिन शानदार रहने वाला है। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छा अवसर मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यापार में धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: वैसे दिन तो मिला जुला है। दोस्तों के साथ समय बिताकर मन हल्का होगा। जो आपके सामने है वो हो सकता है वो ठीक हो ना हो, इसलिए गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। खाली दिखावे में ज्यादा पैसा खर्च ना करें, नुकसान पैदा हो सकता है। जमीन जायदाद से जुड़ी चर्चा परिवार में हो सकती है और घर में मेहमान के आने से खुशी का माहौल बन सकता है।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज व्यवहार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं लेकिन आपकी समझदारी सब संभाल लेगी। दांपत्य जीवन में प्यार और अपनापन बना रहेगा। किसी रिश्तेदार से खुशखबरी मिलने की भी संभावना है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत खराब होने से थोड़ी सी भागा दौड़ी बढ़ सकती है। Pisces, आज का दिन काफी बिजी रहने वाला है। बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने ये भी जरूरी है। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक हो सकती है लेकिन इसको बड़ा एक रूप ना लेने दें। काम में कोई बड़ा रिस्क लेने से बचें। परिवार की समस्याओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। मन की बात अपने पिता या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर कर सकते हैं।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: movies on the big screen. तेरा हो जाऊं, लेकिन अब ये बताऊं कि दोनों में से किसने मारी बाजी?
1: Welcome to RM2.
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.
0: और अच्छी चलिए बात करते हैं बॉबी देओल की. बंदर या फिर जवानी है तो इश्क होना ही है. है जवानी तो इश्क होना ही है. चलिए देखते हैं दोनों ने क्या कमाल की. बॉबी देओल की बंदर और वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है सिनेमा घरों में लग चुकी है. दोनों ही फिल्में 5 जून को रिलीज हुई और दोनों में बहुत ही कमाल के साज हैं और हर कोई देखना चाहता है इन सितारों को. तो पहुंच गए बड़े पर्दे पर इन बड़े एक्टर्स को देखने के लिए. रविवार को है जवानी तो इश्क होना की कमाई में इजाफा देखा गया और वहीं पर इस फिल्म ने बीते 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर दिया. वरुण धवन, मृणाल और पूजा हेगड़े की फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.5 करोड़ रुपए कमाए और दूसरे दिन भी कलेक्शन काफी कमाल का रहा. है जवानी तो इश्क होना है का 3 दिनों का कलेक्शन 24 करोड़ का हो चुका है. वहीं पर बंदर को वीकेंड का लाभ नहीं मिला. बीते दिन रविवार को इसने 1 करोड़ कमाए. बंदर ने ओपनिंग डे पर 50 लाख और दूसरे दिन शनिवार को 95 लाख रुपए कमाए. इसका टोटल नेट कलेक्शन अब ज्यादा नहीं

0: लेकिन 2.54 करोड़ है। वही बार आप देखते हैं कि दोनों के बीच में जो टक्कर है इससे होती किसको फिकर है। वी गोना गिव यू अपडेटेड।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए बहुत सारी बातों के बीच में बात करते हैं अब गोल गप्पों की। भाई मॉर्निंग मॉर्निंग में गोल गप्पे ये कैसे, लेकिन एक खबर बनी है तो उसको लेकर हम शामिल हो गए। जी आजकल बहुत सारी खबरें वायरल हो जाती हैं और ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी व्यूज़ को बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। और हुआ है कि एक ऐसी पहुंच गए इन्फ्लुएंसर लोगों के पास बीच में और कहा कि भाई देखो ऐसा है कि तुम्हें मैक्सिमम गोल गप्पे खाने, लिमिट है 50। क्या बात कर रहे हो, मतलब 3-4-5 उसके बाद 50। तो उन्होंने कहा कि तो वैसा है कि आपको मोटिवेट करने के लिए हो गया कि हर एक गोलगप्पे के लिए मैं आपको दूंगा 50 रुपये। तो काफ़ी लोगों ने ट्राई किया लेकिन टारगेट था 50 का। एक लड़का मान गया, उसके बाद एक से लेकर दो से लेकर तीन, जब 35-40 हो गए उसके बाद पेट फूल गया गोलगप्पे की तरह, लेकिन बंदा रुका ही नहीं। एंड फाइनली इस इन्फ्लुएंसर को उसको देने पड़े 2,500 रुपीज गोलगप्पे खाने के लिए। हाँ वो बात अलग है कि ये जो 50 गोलगप्पे पेट में नाच रहे थे वो बाद में कब कहाँ कैसे निकल, मतलब सुन रहा हूँ हालत ख़राब होती है उसके पानी के साथ साथ। अब लेकिन बंदा रुका नहीं, 50 गोलगप्पे फटाफट खा गया और जीत गया ये बाजी। ये बात अलग है कि 50 खाने के लिए पहले से हो गया था राजी। नहीं तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो, तुम्हें भी खाने, ये अलग गाना है जीवन में जाने जाना, गोलगप्पे को नहीं खाना।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए वहीं पर हम बात करते हैं, जब अपनी हेल्थ और वेलनेस की बात आती है तो बहुत ज़रूरी है उन लोगों से बात करना जो कि उन्हें लगता है कि सांस फूलना या ऐसे एकदम से थकावट हो जाना ये नॉर्मल सी बात है। नहीं, एक्चुअली इसमें लक्षण दिखते हैं और क्या करना चाहिए, चले जानेंगे। LDL और BP साथ बढ़ने से क्या होता है? वैसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल और BP साथ बढ़ने के लक्षण होते हैं सांस फूलना, सर दर्द रहना और चक्कर आना, सीने में दर्द हो या फिर बहुत थकान रहना, धुंधली सी नज़र हो जाए या तेज धड़कन, शरीर में जैसे एक सुन्नपन आ जाता है, सब कुछ बिल्कुल जैसे रिएक्ट नहीं कर रहा, रोज़मर्रा के काम करने में परेशानी होने लगे, तो ये सोच लीजिए कि आपको अपना वेट कंट्रोल करना ज़रूरी है। भाई एक्सपर्ट्स ने बताया कि मोटापे पर ध्यान रखने की सलाह बहुत ज़रूरी है। पेट की चर्बी एक चेतावनी भरा संकेत हो सकती है, क्योंकि कमर का जो अतिरिक्त फैट होता है ना, हाइपरटेंशन और LDL बढ़ने से जुड़ा होता है। डायबिटिक या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मरीजों को इसका खतरा ज़्यादा होता है। अब देखिए, ऐसा है कि जब आप सोचते हैं कि कैसे होता है, तो सैचुरेटेड फैट्स या फिर ट्रांस फैट्स, नमक, रिफाइंड शुगर, इनसे भरे जो फूड्स हैं ना, वो LDL कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लेवल को साथ में बढ़ाने का काम करते हैं। फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स या फिर फास्ट फूड, ये बार बार खाने से क्रॉनिक डिजीजें आने लगती हैं। इसके अलावा डॉक्टर ने कहा कि देखो, फिजिकल एक्टिविटी की कमी युवाओं के अंदर स्थितियों को ख़राब कर रही है। भाई ये कि काफ़ी लोग बस स्क्रीन लेके बैठ जाते हैं और फिर कितने घंटे निकल के पता ही नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन सोचिए आपकी बॉडी ना कुछ एक्सरसाइज कर रही है, ना हिल रही है, ना डुल रही है, अब होगा क्या? चलिए हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आपके साइड पर भी कुछ है अगर बताने के लिए तो हमें यहीं पर 5491294 पर डू सेंड इन योर मैसेजेस।
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
3: Avec MBC Play, tu bannes 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026 avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Obansen Premium New World TV qui peut disponible au MBC Play à partir des 16 ans pour 6-300 roupies et coupé pour sa package là 6 cents fois. Ou pourquoi pas suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play avec ou partout.
1: RM2 Radio Musty.
4: Pop the lights, go black. Boom.
1: The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musty. Feels a Musty.

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Okay, good morning. Time check exactly 10 a.m. स्टूडियो में आगे चलती हूँ, उनसे मिलते जाते इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
6: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। इस साल की शुरुआत में 201 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड पार करने के बाद अप्रैल 2026 तक हाउस होल्ड ऋण बढ़कर 207.40 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। बैंक ऑफ मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें वार्षिक 12.2% की वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस बढ़ोतरी के कारण के कई कारण हैं। परंपरागत रूप से मॉरिशन लोग घर खरीदने या बनवाने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन हाल ही में अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट की कीमतों में लगभग 30% की वृद्धि ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। एक और कारण है आम जीवन चलाने और खरीदारियों के लिए क्रेडिट सुविधाओं का सहारा लेना। इसके परिणामों में से एक है परिवारों की खरीद शक्ति और बचत में कमी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कर्ज चुकाने में अब मॉरिशन परिवारों की आय का लगभग 18% खर्च होता है। मॉरिशस में सभी के लिए

0: सामान्य नागरिक विवाह यानी सिविल मैरिज की मांग वाले पिटीशन को एक हफ्ते से भी कम समय में 13,000 से ज्यादा हस्ताक्षर मिल चुके हैं। आउट मोरिस की निदेशिका सोंद्रिन जुलियन के अनुसार अधिकांश लोग इस मांग का समर्थन करते हैं। इस अभियान का उद्देश्य है देश में ज्यादा समावेशी समाज को बढ़ावा देना और समान अधिकारों की रक्षा करना। ये याचिका 1 जून को प्राइड मंथ के संदर्भ में शुरू की गई थी। ये पिटीशन आउटमोइस की के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं और जून के आखिर तक जनता के लिए खुला है। प्राप्त परिणामों को एक नागरिक घोषणा पत्र में संकलित किया जाएगा और सार्वजनिक किए जाने के बाद इसे अधिकारियों के सुपुर्द किया जाएगा। पिछले कुछ समय से देश में फुट एंड माउथ डिजीज के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके संकेतों में हाथों, पैरों और मुंह में छाले और फोड़े शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये वायरल इन्फेक्शन ज्यादा सर्दियों के दौरान होता है और इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। भले ही पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इसके काफी मामले सामने आए, फिर भी अभी के लिए स्थिति चिंताजनक नहीं बताई जाती। बच्चों में इसके प्रथम संकेत दिखने पर ही डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पिछले अप्रैल महीने से पहली बार के लिए ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले किए हैं, जिसका इसराइल ने भयानक जवाब देने की चेतावनी दी है। अधिकांश मिसाइलों को मार गिराया गया है और इसराइली सरकार ने लोगों को शेल्टर से निकलने की अनुमति भी दी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से जवाबी हमले न करने और ईरान से ऐसी भड़काने वाली हरकतें न करने की मांग की है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड जनाब मोहम्मद फैजल गुलाब खां, जो ओंगी नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके मकान जगदम्बी रोड गुडलैंड से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स का शमशान काकर बसाने जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Hey, back with the music. 10:08. 8 की बात करें तो 8 जून भी है ना. 2026 का जून का महीना चल रहा है और आपको बताएं कि जून के बाद जुलाई बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि वर्ल्ड कप. जहाँ कैच करना चाहते हैं अगर एक्शन तो मॉर्निंग के अंदर 7:30, 7:40 लगभग स्पोर्ट्स की खबरें, उसके बाद 8:30 एक बार फिर से बस कोशिश रहती है कि आपको अपडेटेड रखें ये स्पोर्ट्स दुनिया में जो भी हो रहा है. और वहीं पर अभी जैसे फ्रेंच ओपन खत्म हुआ उसके बाद अब जब वर्ल्ड कप की बात होगी तो टीम से लेकर प्रोफाइल ऑफ द प्लेयर्स एंड एक के बाद एक मैच सारी अपडेट्स. लेकिन सबसे बड़ी बात है डोंट फॉरगेट एमबीसी प्ले. जी हाँ, वहाँ पर आप सारे मैचेस देख सकते हैं. क्या करना है आप हमारे साथ देते जाइए और ध्यान से सुनिए.
3: Avec MBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV, qui peut disponible au MBC Play à partir des 16 ans pour 10-300 roupies. Et coupé pour sa package là, 600 c'est le fort. Ou pourquoi pas suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play avec ou partout.
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio.

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा, काफी लोग जब कॉर्पोरेट लुक की बात करते हैं तो बहुत ही कमाल का एक शर्ट पहना, उसके ऊपर एक कार्डिगन डाल दिया। हाँ, लेकिन वॉच, अरे साहब ये तो स्टाइल मंत्र है ना। जब चाहे एक वॉच पहनो, सिंपल पहनो। वॉचेस कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। वो बहुत क्वाइटली कह देते हैं कि मैं स्टाइलिश भी हूँ और पंचुअल भी। राइट। वैसे कपड़ों को ओवरलोड मत करो। अगर शर्ट या टॉप प्रिंटेड है तो बाकी आउटफिट सिंपल रखो, तभी वो निखर कर सामने आएगा। वैसे भी कहते हैं कि बॉलीवुड का सीक्रेट यही है, ग्रूमिंग भी फैशन का पार्ट है। नीट है, क्लीन शूज और फ्रेश फ्रेग्रेंस आपके लुक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन पर्सनल स्टाइल हमेशा रहता है एक यूनिक मिसाल। जो पहनकर आप खुश हों और कंफर्टेबल महसूस करें, वही आपका सिग्नेचर लुक है।
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments. RM2 Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: मस्ती।
1: हाँ, तो बात करते हैं कि कैसे अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी है सोचना, नहीं तो होता है कि ऐसी फास्ट मूविंग लाइफ के अंदर फास्ट फूड खा के अपने आप को अंदर से पका के फिर लगता है कि ये हो क्या रहा है। कभी पिंपल्स, कभी जो थे चेहरे पर डिम्पल्स, वो खत्म होते जा रहे हैं। रेगुलर चेकअप करना जरूरी। वैसे कहते हैं कि हाई बीपी और हाई एलडीएल, इससे पहले हम बात कर ही रहे थे, इसको जल्दी पकड़ने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कई घंटे काम करने वाले, लगातार तनाव में रहने वाले और स्लीप पैटर्न सही ना रखने वाले, वहीं उनके अंदर बीपी और कोलेस्ट्रॉल असामान्य होने का खतरा

0: इसके बाद ही ये रूटीन चेकिंग है ये शुरू कर दो, और अनहेल्दी फैट, नमक का सेवन कम करना, फल सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स और फाइबर से भरे फूड्स खाने शुरू कर दीजिए। वजन को हेल्दी लेवल में रखें, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, योगा, स्विमिंग, ऐसी चीज़ें जो आपको एक एक्साइटमेंट फैक्टर भी दें और फिट भी रखें, और एनजाइटी स्ट्रेस को मैनेज करने की दोनों स्थितियों में आपको करना पड़ेगा कुछ, मेडिटेशन से लेकर हेल्दी लिविंग, बच्चों के साथ खेलना, फैमिली के साथ ज़्यादा आप कनेक्टेड रहें, फिर देखिए साहब चेहरे पर खुशी रहेगी और आपके बॉडी पैरामीटर्स भी बिल्कुल सही।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: दस बजे 41 मिनट, डेट ऑफ जून, मंडे का दिन, और साढ़े संडे के बाद नहीं रहता याद कि आज काम करने का दिन है। उफ, ये मंडे हो तो क्या रहा है। हालांकि ये भी सच है कि काम करने की भागदौड़ी के अंदर कभी कभी चीज़ें पीछे छूटने लगती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी, अरे साहब इसकी बात क्या करें, टेक्नोलॉजी हैंड टू हैंड चल रही है, वक्त की रफ्तार को पकड़े चल रही है। लेट्स टॉक अबाउट एक ऐसी टेक्नोलॉजी थोड़ी देर में जो कि कंट्रोल कर पाएंगे आप अपने स्मार्टफोन से। स्मार्टफोन बहुत हैंडी हो गया, हर किसी के हाथ में रहता है और फ़ोन स्मार्ट होता जा रहा है और हम अभी तक अंगूठा लगा रहे हैं, अंगूठा स्मार्टफोन पर, है ना, ऐसी हालत आ चुकी है। चलिए बात करेंगे रोबोट्स के बारे में जिनको स्मार्टफोन के जरिए कंट्रोल कर पाएंगे आने वाले टाइम में। कुछ और टेक्नोलॉजी, अनदर स्नीक पीक इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन डिटेल्स होगा बस थोड़ी देर में। स्टे कनेक्टेड, कंटिन्यू टिल 12।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio

0: और M2
1: रेडियो मस्ती
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपीएस सेल्स लो ग्रानिट क्वार्ट्ज रिकासे लो लावो ला लिनिया मोडे

0: इधर है बॉबी देओल। देखते हैं आने में कितनी कमाई करते हैं। मूवीज वीकर की भी अपडेट, क्योंकि 2 से 4 होता है बॉम्बे टॉकीज।
1: RM2 रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

ये तो जून मंडे का दिन टाइम चेक एग्जैक्टली 11 AM थोड़ी देर में हम सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार।

0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ संक्षिप्त समाचार के साथ स्टूडियो में आ गया अदिति, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के नए चीफ ऑपरेटिंग अफसर नियुक्त किए गए हैं। वे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। एफएससी के अनुसार उनका वित्तीय रेगुलेशंस क्षेत्र में 20 सालों से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर अनुभव रहा है। उन्होंने मॉरिशस सहित अमेरिका, यूके, भारत और कैमान द्वीपों में काम किया है। गन्ने की कटनी की शुरुआत के संदर्भ में कल पंजाब के अम्बातू के कोविल में आयोजित वार्षिक प्रार्थनाओं में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भावी राष्ट्रीय बजट की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो उनके अनुसार मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच जिम्मेदारी, सॉलिडारिटी और आर्थिक दक्षता पर आधारित रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एकता ही मौजूदा चुनौतियां पार करने और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करने का एकमात्र साधन है। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई है। एडीबी की 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पारित किए गए नए वित्त पोषण में मॉरिशस को मात्र 12 मिलियन रुपए से थोड़ा ज्यादा ही प्राप्त हुआ है। ये पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत कम है, जब ये राशि कई बिलियन रुपए तक पहुंची थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज तड़के सुबह दक्षिणी फिलीपींस

0: फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 अंकों और गहराई 35 किलोमीटर की मापी गई। सुनामी की चेतावनियां जारी की गई हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 53 साल के 53 years old जनाब मोहम्मद फैजल गुलाब खां, जो ओंगी नाम से ज़रा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके मकान जगदम्बी रोड गुडलैंड से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जहाँ जिंदगी शुरुआत होती है, हर किसी की इस सच्चाई से मुलाकात होती है। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कैसे आप उसको स्पेंड करते हैं ये आपके ऊपर। सनशाइन ब्यूटीफुल एंड बहुत ही कमाल का दिन रहा आज सुबह, अगर कहें तो लगभग 14 डिग्री हो सेंटर प्लाटो की तरफ। एंड इतनी ठंड के अंदर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, वही चैलेंज था मेरे।

0: से ये जब हो जाए ना तो आपको लगे कि आपको एक अचीवमेंट तो मिल ही गई। चलिए इस घंटे में नाउ दिस लास्ट आवर फॉर मस्ट मॉर्निंग शो, यानी 11 से 12 के बीच में कुछ और हाउस होल्ड ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। उन लेडीज के बारे में जो अभी से ही प्लान करने लगती हैं कि उनके लिए लंच क्या होने वाला है, और ऐसी भागा दौड़ी के अंदर चाहे कपड़े सूखे नहीं सूखे बच्चों के लिए तैयार करना, ओहो हो चलता रहता है सिलसिला, नहीं इंतजार करना कि कब शॉपिंग भी हो जाएगी और कल काम पे क्या क्या ले जाने के साथ साथ रेडी रखना है बच्चों के लिए या फिर परिवार के लिए। ओह माय गॉड, सो मच हैपनिंग। इसे हम पहुंचे थे ब्लू बे पब्लिक बीच और वहां पे सेलिब्रेट किया हमने मदर्स डे। जितने भी लोग हमसे आगे मिले, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। चलिए अपना सिलसिला यूं चलने वाला है। नॉट टू फॉरगेट, अगर आपके मैसेजेस हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो दिल की आवाज पहुंचाइए मैसेज के जरिए। अरे आगे बढ़िए 5499-1294।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: ये मैजिक है म्यूजिक का. कभी लगता है कि जैसे पॉज बटन दबाकर जिंदगी को मैंने रोक सा लिया. ये लम्हे ये पल मैजिकल म्यूजिकल.
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.
0: हाँ सच बात है कि जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की और जब बात करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या फीचर्स आएंगी, सब कुछ है सही लेकिन थोड़ा समझ के भी रहना पड़ता है. आज सुबह सुन रहे थे हम टेकमा के अंदर कि कितना आसान हो गया किसी की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेना और वैसे ही एक बना लेना प्रोफाइल. यानी कि कभी आप लोग कि आपका बेटा आपकी बेटी या चाचा चाचा नाना नानी चाची जो भी बात कर रही है इवन पड़ोसी और कोई कह रहा है देखो ऐसा कि मैं मुश्किल फंसा हूँ मेरे लिए थोड़े से पैसे भेज दो, लगेगा तो वही है लेकिन हो सकता है आवाज़ कॉपी कर ली गई हो लेकिन ये एक स्कैम हो. ओ यस हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आने वाले टाइम के अंदर जहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारा फायदा कर सकती है वहीं पर नुकसान भी. सो बहुत चीज़ें हैं. अब जैसे सोचिए आपकी फेस रिकग्निशन, हो सकता है कि आपको कोई जॉब ऑफर आ जाए और उसके लिए करना क्या होगा कि आपको किसी से बात करनी होगी. बस वो बात करते करते कैसे कब आपको रिकॉर्ड कर लेंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ लेंगे, उसके बाद कब उसको इस्तेमाल भी कर लें, ये भी कमाल है. यानी कि आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर डालते हैं कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ती हैं और AI टूल्स की मदद से चेहरे और बायोमेट्रिक्स इनपुट की हूबहू नकल कर सकते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि आप हर किसी के आंसर ना करें कॉल और ये भी सोच लें कि सारी जानकारी हर किसी को देनी ये भी ज़रूरी नहीं. इसे नेक्स्ट टाइम आपको कोई मैसेज आए आपके पास नंबर सेव नहीं है या फिर आप बस सोचें कि आपने जॉब इंटरव्यू के लिए किसी सोशल वेबसाइट पर अपना नाम दे रखा है लेकिन फिर भी उसको स्कैन जरूर करें, उसकी सच्चाई को पहचानें और उसके बाद ही आगे बढ़ें. अनदर स्नीक पीक इनटू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी.
2: You're listening to Musty Mornings.
3: Must Morning Show.
2: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Oh yes, World Cup 2026 और इतनी सारी टीम्स और इतनी सारी हमारी जो प्लेयर प्रोफाइल्स हैं वो शेयर करते जा रहे हैं कि कौन सा प्लेयर किस टीम के अंदर और क्या क्या होने वाला है. लेकिन ये सब के बीच में yes, you know it. क्या अभी सारे मैचेस देख सकते हैं और ये होगा ऑन एमबीसी प्ले 1.0. लेकिन ये भी हो रहा है कि जब आप पेमेंट पे जाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि भाई पेमेंट फेल हो गई. एक्चुअली हो ये रहा है कि आप एक नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. जब आप पे करते हैं फिर चाहे वो ब्लिंक पर हो या पॉप पर हो या एमसीबी जूस पर, तो होता है कि आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, उसको एक्सेप्ट करना है. उसके बाद ही तो बस याद रखिए कि जब अब नेक्स्ट टाइम आप पे कर रहे हैं फॉर एमबीसी प्ले 1.0 तो आपको वो नोटिफिकेशन जो मिलती है उसको एक्सेप्ट करना और उसके बाद सब कुछ ठीक होने लगेगा. राइट, सारे मैचेस एट द क्लिक ऑफ अ बटन एमबीसी प्ले 1.0. अगर सही स्टेप्स फॉलो नहीं किए तो आपको भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है और हो सकता है कि दिल से आवाज आ जाए और आप भी जैसे अभी हर्षदीप कौर कह रहे हैं आप भी कहें

0: हे ऐसे ही मेरे इनबॉक्स में भी काफी खाली जगह थी, लेकिन आपने भर दिया जो मैसेज किया।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: ऑलराइट मैसेज टाइम। वैसे बहुत सारे लोग खुश रहते हैं जब अपना नाम सुनते रेडियो पर, मेरा नाम आया। हम तो चाहते हैं कि आपका नाम रोशन हो और हमेशा हम पढ़ते ही चले जाएं। हैप्पी बर्थडे। राइट, इट्स 8th ऑफ जून और बर्थडे मना रहे हैं बहुत ही प्यारी सी बेटी उविशा मोदालबेस हैं, पापा संजीव की तरफ से मामा है प्रीति, भैया तवेश है, एंड जेविन, अनुषा, जनिष्ठा। थोड़ा ब्रेक ले लूँ, लंबी लिस्ट है। अच्छा, सुनील भी है, सुदेश भी है, संजय, चाची, दिवीना, रानी, तुलसी फैमिली, दोहास फैमिली है, सभी के लिए लवली लवली टाइम्स। एंड 25th बर्थडे मना रहे हैं सिस्टर विश्नी और मामा प्रीति की तरफ से, पापा हैं क्रिश, सिस्टर उर्वशी, विनेश, केहान भाई साहब, अक्षा, आकाश है, और मनसुख फैमिली है, बॉम्बू से साथ दे रहे हैं, जीना जी इटली से हेलो गुड मॉर्निंग, और कहते हैं ओम नमः शिवाय। बस आपकी जिंदगी गाड़ी भी यूं ही चलती जाए ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ। गुड मॉर्निंग सर, आपके हालचाल कैसे हैं? कहते हैं एक गाना हो जाए फ्रॉम द मूवी साजन। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो फरमाइशी कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन फिर भी। रमेश सिंह पंजाब से अपनी फोटो भेजते हैं और कहते हैं कि कभी हम मॉरिशस में थे और बहुत मजा आता जब पहाड़ियों पर चढ़ते थे, और अभी चढ़ चढ़ के सिग्नल लेकर चला रहे हैं अपना रेडियो, वेरी नाइस। एंड वर्षा जी आपको भी अब बिग हेलो। तानिया से हैं और प्रीतम, पापा आनंद हैं, टीना, रणधीर, मिथुन, अनुष्का, अनिशा, कतिशा, आरोही एंड हर्षा की तरफ से। सो वर्षा, विशिंग लवली टाइम्स एंड हैप्पी बर्थडे। प्यासा गाना टू हस्बैंड विशाल। ड्राइविंग द मोमेंट गुडलैंड से फ्लैग। हाँ ये ठीक है, गाना सुन सकते हैं, लेकिन चलाते हुए मैसेज करना नो नो नो। माधुरी जी अगला गाना आपके नाम।
1: Welcome to RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा, कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो हमेशा आप देखना चाहते हैं, एक बारी देख ली, दो बारी मन नहीं भरा, खैर तो क्या करें, उसके बाद एक बारी फिर से देख ली। अच्छा, इसी लिस्ट के अंदर एक मूवी आती है ताल। अब दिल को ले अपना संभाल, क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं सुभाष घई। सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही उनकी, इसलिए क्योंकि उन्होंने ताल पिक्चर का एक पोस्टर उठाया और पूछा लोगों से, भाई इसकी क्या सीक्वल बननी चाहिए। याद होगा कि लेट 90s लगभग 99 में रिलीज हुई थी मूवी ताल, और इसमें अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना, अमेजिंग सॉन्ग्स, ओ माय गॉड, ये तो कमाल हुई हुई। लेकिन साथ साथ में जो रोमांटिक केमिस्ट्री थी अक्षय खन्ना एंड ऐश्वर्या राय के बीच में, वो काफ़ी कमाल थी। एंड देखते देखते लोगों ने कहा कि उसका जो एंड था वो काफ़ी दिल को चोट पहुंचाता है। नहीं तो बस अब फोटो को लेकर ताल 2 अब हो सकता है कि जल्दी सुनने में आए। कहते हैं अपने पोस्ट में सुभाष घई ने ये बताया कि इस फिल्म में एक बहुत बड़ी तारीफ मिली किसी की तरफ से, और अब सोशल मीडिया पर जहाँ पर इंटरनेशनल इसके लिए काफ़ी खासियत बनी हुई है, वहीं पर कई लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत प्योरिटी थी। जिस तरह इस मूवी को बनाया गया था, जो म्यूजिक था उसने सीधा दिल पे असर किया। उसमें जो कमाल के किरदार थे वो आज भी एक्टिव हैं बी टाउन के अंदर, तो मुश्किल नहीं है एक बार फिर से ताल 2 बनाना। अरे हर कुछ बन रहा है, जैसे ताल 1, ताल 2, आशिकी 1, आशिकी 2। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मूवी थी एक था टाइगर, उसका सीक्वल होता तो होता एक था लेपर्ड।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: घड़ी मिला लीजिए, दिन की 12 बजे है।
6: संक्षिप्त समाचार आपके साथ अदिति, नमस्कार आपको।
7: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार। हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। वे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। एफएससी के अनुसार उनका वित्तीय रेगुलेशंस क्षेत्र में 20 सालों से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर अनुभव रहा है। उन्होंने मॉरिशस सहित अमेरिका, यूके, भारत और कैमन द्वीपों में काम किया है। इस साल के लिए गन्ने की कटनी का सीजन आने वाले कुछ दिनों में शुरू होगा। 22 जून से आलतेओ और 13 कारखानों से पेड़ाई का काम शुरू होगा। विशेषज्ञों के अनुसार भले ही इस कटनी का सीजन एक सामान्य से ज़्यादा सूखे मौसम की बात आया है, फिर भी गन्ना पैदावार की कुल वृद्धि संतोषजनक है। कृषि सदन के तरफ से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सर्दियों के आगमन के साथ वृद्धि में धीरे धीरे कमी आने के कारण कटनी मध्य दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में 201 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड पार करने के बाद अप्रैल 2026 तक हाउस होल्ड ऋण बढ़कर 207.46 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। बैंक ऑफ मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें वार्षिक 12.2% की वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस बढ़ोतरी के कारण के कई कारण हैं। परंपरागत रूप से मॉरिशन लोग घर खरीदने या बनवाने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन हाल ही में अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट की कीमतों में लगभग 30% की वृद्धि ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। एक और कारण है आम जीवन चलाने और खरीदारियों के लिए क्रेडिट सुविधाओं का सहारा लेना। इसके परिणाम से परिवारों की खरीद शक्ति और बचत में कमी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कर्ज चुकाने में अब मॉरिशन परिवारों की आय का लगभग 18% खर्च होता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज सुबह दक्षिण फिलीपींस में पेश आए 7.8 अंकों की तीव्रता वाले जोरदार भूकंप में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने

आने की खबर है। 129 लोग घायल बताए गए हैं इस भूकंप के बाद। फिलीपींस और आसपास के कई देश, इंडोनेशिया और जापान में भी सुनामी के वार्निंग जारी किए गए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार।

शोक समाचार सुनिए। तालिपो लेन अमोरी में, तालिपो लेन अमोरी में 45 साल की 45 years old श्रीमती दीपा गोकुल लालमन, श्रीमती दीपा गोकुल लालमन जो पैदाशी नाम गोकुल जो दीपा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं कि अर्थियाज दिन के 3 बजे, इनके अर्थियाज दिन के 3 बजे इनके पिता श्री प्रेम गोकुल के मकान तालिपो लेन अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रैंड पा वेला वॉन्चर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। सदाली रोड वाकवा में, सदाली रोड वाकवा में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड मिसेस बीबी साहरुनिसा कुदाबुकस, मिसेस बीबी साहरुनिसा कुदाबुकस पैदाशी नाम जुमन जो मीना नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 3:30 बजे, इनका जनाजा आज दिन के 3:30 बजे इनके मकान सदाली रोड वाकवा से उठाकर पहले नमाज जनाजा के लिए सदाली की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे 3:30 PM। शोक में रूबेन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती मस्ती
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: वैसे गुड मॉर्निंग, वैसे गुड आफ्टरनून हम कहना चाहते हैं यहाँ पर. वार्म वेलकम टू योर रेट्रो रिदम. यहाँ पर 12:10 होने को है. आप जुड़े हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ, इट्स योर रेट्रो रिदम. यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं, साथ ही हम मना रहे हैं आज बर्थडे ऑफ डिंपल कपाड़िया. वैसे उनके बारे में हम बात ही कम करेंगे अभी के लिए. वी विल बी टॉकिंग विद समबडी रियली स्पेशल जो कि हमारे स्टूडियो में है. वो न सिर्फ अकेली है, बस अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में.
1: Retro Rhythm.
0: रोज लेकर आते हैं एक नई बात और एक नई उम्मीद. और हमारे जो रेट्रो रिदम में हम बात करते हैं अभी के लिए विद एलेना. हेलो एलेना, हाउ आर यू?
2: हाय,
0: हाउ आर यू?
2: आई एम गुड.
0: यस, देखा आपकी आवाज पहली बार हमारे रेडियो चैनल पर गूंज रही है, कैसा लग रहा है आपको? हेलो, हाय.
2: Hi.
0: Yes. How do you feel? It's the first time you're talking on air on RM2 Radio Masti. So how's the feeling, Elena?
2: I feel pretty honored, but yes. I'm also quite anxious.
0: Yeah.
2: I mean, it's a great feeling.
0: Yeah. So what do you think about the future of radio with yourself? Do you associate yourself with old songs, new songs, and, you know, we can say 2000 songs or purani gaane, old songs or new songs?
2: Not really. So, but
0: if I ask you, what's your favorite song?
3: Bollywood,
0: yeah.
2: I don't really have one because I don't usually listen to those. So
0: you don't get the time to listen to music. Don't you think music is a therapy also?
2: Yeah, it is. It's like a universal language.
0: Yeah, and this universal language, doesn't Bollywood include in it?
2: Yeah, of course. I mean, any language because it's universal.
0: So if you believe, this is a beautiful saying that you're saying. So what's the favorite song of Elena? Do you sing?
2: No.
0: You don't sing?
2: No.
0: You don't listen to music? You do listen to music.
2: I mean, I do, but my favorite artist would probably be...
0: Tell me anybody. Since it's universal, you tell me. Justin Bieber?
2: Sure.
0: Well, if I'll tell you the name of Lata Mangeshkar, do you know?
2: No, not at all.
0: Not at all? You don't know Lata Mangeshkar? कोई बात नहीं.
2: No.
0: अभी के लिए एक गाना है आ रहा है लता मंगेशकर के आवाज में एंड किशोर कुमार के आवाज में. एक्चुअली ये गाना है, उन्होंने ये भी गाना गाया है. एंड देयर इज अ सॉन्ग ऑफ कभी कभी, मे बी इट विल बी कभी कभी ऐसा भी होता है. इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग.
3: हम अभी चलाएंगे. मनीष भाई, ये बताना जरूरी है हमारे लिसनर्स को, ये जो टीम है यहाँ पर वो कहाँ से है, ये तो पूछ लो.
0: हाँ जी. वैसे मैं गेस करना चाहती हूँ, ये है The girl

0: रेट्रो रिदम
1: से आज हम मना रहे हैं द इंडियन एक्ट्रेस जो कि बहुत ही कम उम्र में 14 साल से उन्होंने शुरुआत की है, अपनी करियर की शुरुआत की है इन द बी टाउन द बॉलीवुड इंडस्ट्री. में बात कर रहे हैं अब डिंपल कपाड़िया. आज वो 69 ईयर्स के हुए हैं. हैप्पी हैप्पी बर्थडे. वैसे शुरुआत तो की थी उन्होंने बॉबी मूवी से. अभी यू नो मैरिड एंड डिवोर्स्ड राजेश खन्ना. उनकी दो बेटियाँ हैं रिंकी और ट्विंकल खन्ना. और दामाद तो है ही, आप तो जानते हैं अक्षय कुमार ने उनकी एक बेटी शादी जो की है. अभी लेट्स प्ले द सॉन्ग्स जो आपके दिल के बहुत भी करीब है. और इस सॉन्ग को हम कैसे भूल सकते हैं, सागर मूवी से लिया गया ये गाना. यू नो आफ्टर हर डिवोर्स शी डिड अ वेरी ग्रेट कमबैक विद अ फिल्म विद अ मूवी सागर. एंड आफ्टर हैविंग हर टू किड्स शी डिड हर कमबैक विद दिस मूवी. एंड काफी हिट हुई थी ये मूवी सागर किनारे द डुएट वर्जन. हियर वी गो.
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: देखिए रेट्रो रिदम और इसमें जुड़ गए हैं आप और हम। अब जब म्यूजिक का हो ही गया है संगम, तो ये बताना चाहते हैं हम कि कुछ अलग बात है, यानी कि अब मूड थोड़ा चेंज हो रहा है। वी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप 2026, इसकी अपडेट्स मिल रही हैं, अपनी अपनी टीम्स हैं और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप सारे मैचेस देखना भी चाहते हैं, फॉलो भी करना चाहते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, MBC Play 1.0, राइट, बिल्कुल सही सुना आपने। उसमें जितने मैचेस हैं आप देख पाएंगे, नहीं तो जो फ्री वाले हैं वो तो जरूर मिलेंगे MBC TV पर, लेकिन सारे नहीं। सारे देखने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब चाहे ब्लिंक यूज करें या फिर पॉप यूज करें या फिर MCB जूस, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, उसको आपको ओके करना है, तभी आपकी पेमेंट पास हो पाएगी। नहीं तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने हमसे फ़ोन करके कहा कि भाई पेमेंट फेल हो गई, हम तो देखना चाहते हैं, हम तो रजिस्टर करना चाहते हैं। लेकिन जब आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आती है, उसको ओके अप्रूव करना है, उसके बाद आपकी पेमेंट होगी। तो कोई बात नहीं,
2: ओके के बिना पेमेंट नहीं।
1: हाँ देखिए ये बात है, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी यहाँ पर हैं स्पोर्ट्स लवर्स एंड फुटबॉल वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं 2026, आपको बताया कि अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाता है। चलते फिरते घूमते फिरते कहीं भी आप उसको देख सकते हैं। तो मैसेज मिलेगा, उसको ओके करना है, अप्रूव करना है, पेमेंट गई, उसके बाद सब सही, यानी कि सारे मैचेस आप देख पाएंगे वर्ल्ड कप ऑन MBC प्ले 1.0।
0: रेट्रो रिदम
3: RM2 रेडियो मस्ती।

ये जो उसकी रोल है डिपल कपाडिया के लिए बेस्ट वी कैन से ऑल्सो कि नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड का जो अवार्ड मिला था फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड, न सिर्फ इस गाने के लिए दिल हूँ हूँ करे फ्रॉम द मूवी रुदाली, रुदाली मेड हर वन द बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड, तो काश के साथ साथ ये गाना चल पड़ा दिल हूँ हूँ करे। हियर वी गो ऑफ कोर्स इन द वॉइस ऑफ द

0: बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं उनके परफॉर्मेंस को हम सराहते हैं. हम बात करें अपन डिबल कपाटिया, वैसे इंदर सराए थे काश मूवी में, दृष्टि मूवी में, लेकिन मूवी टू डाली वॉज वेरी वेरी नोन. और बॉबी मूवी तो आप जस्ट जानते ही है, अभी प्रहार एक्चुअली, एंड अंगार मूवी में भी, गर्दिश इन 1993, क्रांतिवीर में 1994. वैसे सारा कुछ उन्होंने किया है अपनी बाली उम्र में, हम कह सकते हैं. वैसे कम उम्र में बॉबी बन चुकी है, एंड यहाँ पर उन्होंने तो अपने करियर की शुरुआत भी बस 14 साल में किए है. वैसे हैप्पी बर्थडे गोज आउट टू डिंपल कपाडिया. और न सिर्फ उनके नाम, हम सेकेंड आवर में शुरुआत करेंगे विद शिल्पा शेट्टी. उनके सारे गाने हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे. वैसे शिल्पा शेट्टी भी आज अपना जन्मदिन मना रही है. अभी के लिए डिंपल कपाडिया का एक और गाना अंगार मूवी से, एंड गर्दिश मूवी कमिंग अप फॉर यू.
1: Retro Rhythm.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: किसी नजर को तेरा आशा भोसले की आवाज में और ये भूपिंदर की आवाज में फॉर यू किसी नजर को तेरा आज इंतजार भी है। वैसे ये गाना स्पेशली डेडिकेटिंग इट टू समवन जिन्होंने मांगा है डिपिन कपाडिया का, है द बार बार सॉन्ग।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: टाइम चेक दिन के बचा है। संक्षिप्त समाचार आपके साथ रजनी जी, नमस्कार आपको।
4: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हैं। चेतन बाबूलाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो वे विपक्ष नेता का पद संभालने के लिए तैयार है। चेतन बाबूलाल ने इस बात पर विश्वास जताया कि वे जिम्मेदारी अलग तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि वे पुरानी सरकार का हिस्सा नहीं थे जिस तरह के वर्तमान समय में जुले चौको हैं। आज सुबह वे एगेमेन में कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। वे फ्रों मिलितों प्रोग्रेसिस के सदस्य हैं और उन्होंने बताया कि अगर वे विपक्ष नेता बने तो प्रधानमंत्री को उनके प्रश्नों का जवाब देना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा, यही सही बदलाव होगा। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृति, नई फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई है। एडीबी की 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पारित किए गए नए वित्त पोषण में मॉरिशस को मात्र 12 मिलियन रुपए से थोड़ा ज्यादा ही प्राप्त हुआ। ये पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत कम है जब ये राशि कई बिलियन रुपए तक पहुंची थी, लेकिन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार इस कदम का अर्थ ये नहीं है कि ये संस्था मॉरिशस को छोड़ रही है, बल्कि बैंक का कहना है कि कई बड़ी परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। वे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। विदेशी समाचारों में फिलीपींस में 7.8 अंकों वाला एक जबरदस्त भूकंप आया जिसमें मरने वालों की संख्या कम से कम 19 तक पहुंच गई है। घायलों की तादाद 129 तक बताई जाती है। फिलीपींस के प्रमुख दक्षिणी द्वीप मिंडानाओ में जनरल सांतोस सिटी के तट के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। इलाके के कई देशों, फिलीपींस के साथ साथ इंडोनेशिया और जापान ने भी सुनामी की चेतावनियां जारी की। फिलीपींस के राष्ट्रपति फेडिनांड मार्कोस जूनियर ने सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं ताकि तुरंत कदम उठाए जाए। लोगों से ऊंचे इलाकों में भी जाने की मांग की गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे। चीनी सरकारी एजेंसी सिंघुआ के अनुसार वे वहां उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बैठक के दौरान दोनों नेता दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती की पुष्टि करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 53 साल के जनाब मोहम्मद फैजल

0: गुलाब खान, जनाब मोहम्मद फैजल गुलाब खान जो औगी नाम से भी जाने जाते थे का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के दो बजे उनके मकान जगदम्बी रोड गुडलाइन से उठाकर दफनाने के लिए बिलमोका कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 पीएम। टालीपोलिन अमोरी में 45 साल की 45 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दीपा गोकुल लालमोन पैदाशी नाम गोकुल जो दीपा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके पिता श्री प्रेम गोकुल के घर टालीपोलिन अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घाव पावे लावांचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। सादाली रोड वाकवा में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की बीबी सहेरुन्निसा कोदाबकस पैदाशी नाम जुमन जो मीना नाम से भी जानी जाती थी का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके घर सादाली रोड वाकवा से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए सादाली मस्जिद ले जाया जाएगा, जिसके बाद दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शुक्मय रूबीन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musti.

0: Retro Rhythm. जी वेलकम, स्वागत है आप सभी का इन द सेकंड आवर ऑफ योर रेट्रो रिदम. वैसे पहले घंटे हमने बात की है अबाउट डिंपल कपाड़िया, वैसे बात थोड़ा सा कम किया है लेकिन गाने तो मस्त चलाए आपने. वैसे आपके नाम एंड यहाँ पर आई गेट हियर सम रियली नाइस ट्रैक जो हमने चुनकर लाए हैं. वैसे सबसे पहले हम विश करना चाहते हैं अगेन वेरी हैप्पी बर्थडे गोज आउट टू शिल्पा शेट्टी जो आज 51 ईयर्स के हुए हैं. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. वैसे से जो बेस्ट विशेज हैं उनको ही देंगे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमारी एंटरटेनमेंट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा. वैसे आप तो जानते ही हैं शी मेड हर स्क्रीन डेब्यू इन द थ्रिलर मूवी बाजीगर 1993 में, जिनकी वजह से उनको मिला था फर्स्ट नॉमिनेशन फॉर द फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस. वैसे बाजीगर मूवी से लिया गया ये गाना. किताबें बहुत ही चर्चे में थे और सारे जो यंगस्टर्स थे उन जमाने ये गाने याद करेंगे ज़रूर. वैसे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, किताबें बहुत सी चला देंगे आपके नाम ना.
1: Radio Musti.
2: Avant de défi, de long shift. Le premier pas qui capable sens tous audi et a toujours un pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Il pense simple.

0: उनसे मोहब्बत करके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, ऐसे ऐसे किताबें बहुत सी, ऐसे हर रोज़ ऐसे गाने चलाने की मौका नहीं तो मिलता है, लेकिन आज सिंस इट्स हर बर्थडे टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फेमस एंड मोस्ट फेमस ब्यूटीफुल क्या बॉडी फिगर है, योगा और टीचर, हम बात कर रहे हैं बात शिल्पा शेट्टी। एंड यस, जैसे कि आप तो जानती हैं कि बाजीगर के लिए उनको अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तो मिला ही मिला, लेकिन उनका जो सक्सेस है ना इज वेरी प्रोग्रेसिव ऑल्सो हम कह सकते हैं, बिकॉज मैं खिलाड़ी टू नारी में 1994 में वो नजर आए थे इन द मूवी जानवर ऑल्सो। ऐसे ऐसे हम लेकर आ रहे हैं मेरा यार दिलदार बड़ा सोना छिड़ा के दिल मेरा, अच्छा ये गाना हम चला देते हैं अभी के लिए आपके नाम, तो आप इन्जॉय कीजिएगा अपने ड्राइव को, अपने लंच को, शुभ आहार फॉर ऑल दोस्त जो कि अभी तक खा रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे खाइएगा, धीरे धीरे इन्जॉय कीजिएगा, हमारे साथ यूं ही निभाते चलिए।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Misty

यार दिलदार बड़ा सोना, क्या बात है, जानवर मूवी से लिया गया ये गाना जिसमें नजर आए थे ऑफकोर्स शिल्पा शेट्टी 1999। अगर बात करें तो हम तुमको निगाहों में, ये रहा गाना स्पेशली फॉर ऑल दोस्त जो कि गर्व द मूवी प्राइड एंड ऑनर जिसमें नजर आए थे शिल्पा शेट्टी अगेन एज द किरदार ऑफ जन्नत, साथ में नजर आए थे इन द मूवी अरबाज खान एंड सलमान खान, अमरीश पुरी, आकांक्षा मल्होत्रा, याद आ रहे हैं फरीदा जलाल, द अच्छी माँ। Now we're talking Shilpa Shetty, happy birthday goes out to her. Known for various styles, dancing style and healthy eating habits, lekin isme kya acha kirdaar tha iska.

0: तुमको निगाहों में कुछ इस तरह से छुपा लेंगे। वैसे यहाँ पर 1:50 होने को है। अब जो रहे यार इंटू रेडियो मस्ती के साथ, वैसे अगला गाना है मैं खिलाड़ी तू अनारी मूवीज ले आ गया, ये गाना आई एम गोना प्ले इट फॉर यू। लेकिन इस सॉन्ग में नजर तो नहीं आई थी शिल्पा शेट्टी, लेकिन सैफ अली खान ने काफी जादू चला दिया इस गाने के साथ।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती,
0: तो अभी गाइए मुस्कुराइए और यूं ही साथ निभाते रहिए। बस थोड़ी देर में कार्यक्रम खत्म, रेट्रो रिदम खत्म हो जाएगा शुरू आफ्टरवर्ड्स 2 to 4 PM का ये जो जलवा।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: तो चलिए जी, बाजीगर मूवी से लिया गया है ये गाना. ऐ मेरे हमसफर विनोद राठौर की आवाज़ है, अलका याग्निक की आवाज़ों के साथ अभी के लिए जाने का समय जो हो चला है. हमको इजाज़त दीजिए, आ गया दीजिए एंड आ रही आपके लिए नल.

जो आ रही है 2 to 4 में आपका स्वागत करने के लिए और आपका साथ निभाने के लिए, उनका साथ दीजिएगा। बाय बाय, बड़ा बड़ा प्यार आपके लिए, आपके दिल तक। सी यू।

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2.
0: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: दोपहर के 2 बजे हैं। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे रजनी नमस्कार।
7: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून तैयार किया जा रहा है और मॉरिशियनों को महासागर के टिकाऊ संचालन के हक में अतिरिक्त रूप से समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करने के वास्ते उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बात का ऐलान ब्लू इकोनॉमी मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेन ने किया। वे आज मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट की ओर से लेस्टुचे फ्रांसे डे मॉरिस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस से संबंधित गतिविधियों में भाग ले रहे थे। बेथॉन लार्जेस के खिलाफ औपचारिक रूप से नए आरोप लगाए गए हैं। असल में इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एजेंसी के इस निदेशक को सैलवी थर्मल स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 2020 में डेनमार्क की कंपनी BMSC में एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व आयका के महानिदेशक की ओर से इंटरमीडिएट अदालत के सामने दर्ज मामले को रद्द कर दिया गया है और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP के सुझावों के अंतर्गत एक नया मामला दर्ज किया जाएगा। चेतन बाबूलाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो वे विपक्ष नेता का पद संभालने के लिए तैयार है। चेतन बाबूलाल ने इस बात पर विश्वास जताया कि वे जिम्मेदारी अलग तरीके से संभाल सकते हैं क्योंकि वे पुरानी सरकार का हिस्सा नहीं थे, जिस तरह की वर्तमान समय में जोले शोंगो है। आज सुबह वे RMN में कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। वे फ्रों मिलिटों प्रोग्रेसिस्ट के सदस्य हैं और उन्होंने बताया कि अगर वे विपक्ष नेता बने तो प्रधानमंत्री को उनके प्रश्नों का जवाब स्पष्टीकरण देना ही होगा, यही सही बदलाव होगा। विदेशी समाचारों में फिलीपींस में 7.8 अंकों वाला एक जबरदस्त भूकंप आया जिसमें मरने वालों की संख्या कम से कम 19 तक पहुंच गई है। घायलों की तादाद 129 तक बताई जाती है। फिलीपींस के प्रमुख दक्षिणी टापू मिंडानाओ में जनरल सांटोस सिटी के तट के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। इलाके कई देशों फिलीपींस के साथ साथ इंडोनेशिया और जापान ने भी सुनामी की चेतावनियां जारी की। उधर फिलीपींस के राष्ट्रपति फेडिनांड मार्कोस जूनियर ने सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं ताकि तुरंत कदम उठाए जाए और लोगों से ऊंचे इलाकों में भी जाने की मांग की गई है। रुख करते हैं चीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे। चीनी समाचार एजेंसी जिंगवा के अनुसार वे वहां उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बैठक के दौरान दोनों नेता दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती की पुष्टि करेंगे और साथ में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। और इसराइल ने आज कहा कि उसने ईरान के दक्षिण पश्चिम में एक पेट्रोकेमिकल केंद्र पर हमला किया, साथ ही अन्य सैनिक ठिकानों पर भी निशाना बनाया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी रिपोर्ट दी कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से कह दिया कि वे अतिरिक्त रूप से हमला न करें। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। मेजोनेट रोड रिविया डिजोंगी में 47 साल के 47 ईयर्स ओल्ड के श्री सुदेशन वेंकातेसु, श्री सुदेशन वेंकातेसु जो ब्ले नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ आज दिन के 2 बजे अभी से ही उनके पिता श्री देवा सागावन के घर मेजोनेट रोड रिविया डिजोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि

0: जाई जाएगी क्रिमिनल टुडे एट 2 पीएम टैली पोलिन अमोरी में 45 साल के 45 इयर्स ओल्ड के श्रीमती दीपा गोकुल लालमोन पैदाशी नाम गोकुल जो दीपा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके पिता श्री प्रेम गोकुल के घर टैली पोलिन अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव पावेला पहुंचे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। साडाली रोड वाकुआ में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के बीबी साहिर उरीसा कोडाबकस पैदाशी नाम जुमन जो मीना नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके घर साडाली रोड वाकुआ से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए साडाली मस्जिद ले जाया जाएगा, जिसके बाद दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Masti.
6: Radio.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: मेरे नसीब में तू है कि नहीं, टाइमलेस सॉन्ग आपको फील कराने के लिए. गुड आफ्टरनून, इट्स नर्मनी. एंड लेट मी टेल यू कि 4 बजे तक हम आपके साथ में होंगे, फन वाइब्स होंगे. तो मेक श्योर कि आप यहीं पर आरएमजू रेडियो मस्ती पर यू स्टे कनेक्टेड. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट गाने की ओर. टू मेक यू मंडे फंडे.
3: मोर म्यूजिक इन द मिक्स.
0: आज आजादी है. Bombay Talkies, Radio Musty.
1: Radio Musty.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: ना वो अजीबो गरीब गाना आपको फील कराने के लिए कि कभी कभी लाइफ में सब हमारे हिसाब से तो नहीं चलता, पर कोई नहीं जी, जो भी होता है बेस्ट के लिए होता है। अगर आप इस समय ड्राइव करके घर लौट रहे हैं, आराम से रिलैक्स होकर ड्राइव कीजिए, क्योंकि आरएमजी रेडियो मस्ती यही पर है। तो जारी रखते हैं गुड वाइब्स को, ऐसे ही स्टे कनेक्टेड टू आरएमजी रेडियो मस्ती।
1: आरएमजी रेडियो मस्ती in the mix. Radio

0: Cheese.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: कहने को तो हम आपकी वजह से यहाँ हैं एंड आरएम टू रेडियो मस्ती सच में ग्रेटफुल है टू हैव यू बाय आवर साइड्स। तो अभी के लिए मैसेजेस पढ़ने का टाइम आ गया है। वी हैव प्रीतम जी जो विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू वर्षा दुकी जी जो कि ब्रिटानिया के रहने वाली हैं। वो विश कर रही हैं उनको लॉट्स ऑफ सक्सेस पापा आनंद की तरफ से। टीना, रणधीर, मिथुन, अनुष्का, अनिशा, कतेशा, आरोही, हर्षा। नेक्स्ट मैसेज वी हैव नाइस सॉन्ग। नमस्ते नमन जी, नाइस सॉन्ग, थैंक यू जी। आपने नाम तो नहीं लिखा, लिख देना जरूर बाद में। एंड वी ऑल्सो हैव यालेश सोहे नाम से, हमारे बड़ी जो हमें सुन रहे हैं, कनेक्टेड है सुबह से और वाइब कर रहे हैं, तो ऐसे ही लॉट्स ऑफ फन करने वाले हैं साथ में गानों के जरिए। तो नेक्स्ट वन गोज आउट टू ऑल ऑफ यू जो अभी कनेक्टेड हुए हैं आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ।
0: रेडियो मस्ती
1: हिट म्यूजिक ओनली।
0: Feels a musty. Radio Musty.

0: Oldies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: And yes, it's your RMG Radio Musti and Monday afternoon को थोड़ा easy और थोड़ा filmy बनाने के लिए Bombay Talkies आपके साथ है. Drive कर रहे हो या फिर bus में हो, RMG Radio Musti आपके साथ में ही है. Upcoming आपके लिए next है अभी या Cocktail 2 का गाना, तो mood को shift कराते हैं Mashu का गाने के साथ.
1: Radio Musti in the mix. Radio Musti feels a musty in the mix.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: RM2.
1: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: सुबह के 3 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे रजनी जी। नमस्कार।
4: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। गंगा तालाब एक पवित्र स्थल है, आध्यात्म का प्रतीक। प्रतिदिन हजारों की संख्या में रोगी स्थल का दौरा करते हैं, लेकिन हाल में पेश आई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब इस प्रतीकात्मक स्थल पर दौरे के लिए संबंधित कदम उठाना चाहते हैं। इस तरह आज कला एवं संस्कृति मंत्री के नेतृत्व में स्थल का दौरा किया गया और उठाए जाने वाले कदमों पर बातचीत की गई। स्थलों के संरक्षण के लिए गाइडलाइंस दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अभी ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून तैयार किया जा रहा है और मॉरिशनों को महासागर की टिकाऊ संचालन के हक में अतिरिक्त रूप से समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करने के वास्ते उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बात की घोषणा ब्लू इकोनॉमी मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने की। वे आज मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट की ओर से लेस्ट डिफेंसे दे मॉरिस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस से संबंधित गतिविधियों में भाग ले रहे थे। बेथॉन लाजेस के खिलाफ औपचारिक रूप से नए आरोप लगाए गए हैं। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एजेंसी के इस निदेशक को सेल्वी थर्मल स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 2020 में डेनमार्क की एक कंपनी BMSC में एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व आईका के महानिदेशक की ओर से इंटरमीडिएट अदालत के सामने दर्ज मामले को रद्द कर दिया गया और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP के सुझावों के अंतर्गत एक नया मामला दर्ज किया जाएगा। विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं। फिलीपींस में आए भूकंप में मृतकों की संख्या कम से कम 32 तक पहुंच गई है। कई इमारतें ढह गई और सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। 200 से अधिक लोग घायल बताए जाते हैं। इसके अलावा भूकंप के बाद दक्षिणी फिलीपींस में सरांगानी प्रदेश में भूस्खलन भी हुआ और भूटान में कल रात 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके सिलीगुड़ी समेत उत्तर बंगाल और कोलकाता में महसूस किए गए। झटकों से लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि देर रात तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं थी। और पैट्रिक ब्रियर नामक गायक एवं कलाकार को बलात्कार करने की कोशिश और यौन दुराचार के एक मामले के सिलसिले में आज पुलिस हिरासत में रखा गया है। कलाकार ने इन सभी का खंडन किया। 67 वर्षीय कलाकार को आज सुबह पेरिस में हिरासत में रखा गया। कुल 30 से अधिक महिलाओं ने पैट्रिक ब्रियर पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। कम से कम 12 शिकायत दर्ज की गई है। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉयल रोड शमे ग्रेनियमे 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड की बीबी फरीदा भातू पैदाशी नाम फादौ, जो फरीदा नाम से भी जानी जाती थी, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज रात सवा आठ बजे उनके बेटे जनाब रियाद भातू के घर रॉयल रोड शमेग्रनिये से उठाकर दफनाने के लिए कौशालो शमेग्रनिये का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:15 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
5: More music in the mix.
6: Aaj Azadi hai.
7: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
0: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: सवेरे के 3:08 हुए हैं, आपने टी ब्रेक ले लिया, काम फिर से शुरू हो गया और मंडे का प्रेशर भी धीरे धीरे फील होने लगा है। लेकिन टेंशन किस बात की मेरे दोस्त, इस सेकंड आवर में फिर से लेकर आएंगे बॉलीवुड की ताज़ा ताज़ा खबरें, फिल्मी गॉसिप्स और आपकी फेवरेट गाने इस नमनी। और चलिए इस मंडे आफ्टरनून को फिर से थोड़ा एंटरटेनिंग बनाते हैं। 5491294 पर आपके मैसेजेस डेडिकेशंस का इंतजार रहेगा।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: जंगल में तो एंट्री मार ली है हमने, 3:16 हो चुके हैं, ट्रैफिक का चक्कर फिर से स्टार्ट हो गया ना बाबू भैया। फिकर नॉट, आपको शांत करवाने का सलूशन हमारे पास में ही है, आपको बस फुल वॉल्यूम पर डालना है अपने रेडियो को। एंड कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू अनदर खूबसूरत गाना।
1: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
0: आज आजादी है बॉम्बे Talkies, Radio Musty.

अंटे अमलापुरम अंटे आहापुरम अंटे इंडियन रिदम इलु इलु करके आज नाचेंगे हम।

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: दोस्तों आपको पता है आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ओशंस डे और बॉलीवुड ने भी समुंदर से अपना रिश्ता काफी गहरा रखा है। कभी प्यार को समुंदर की गहराई से कंपेयर किया गया तो कभी दोस्ती को लहरों की तरह मजबूत बताया गया। और समुंदर की बात हो और साथ समुंदर पार याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों आज सिर्फ सात समुंदर पर जाने की बात नहीं बल्कि इन सात समुंदरों को साफ और सुरक्षित रखने की भी बात है। तो अगली बार आप जब बीच पर जा रहे हो या समुंदर किनारे सनसेट को एंजॉय कर रहे हो थोड़ा प्यार समुंदर के लिए भी दिखाइए। और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ चलिए सुनते हैं एक ऐसा गाना जो दिल को भी समुंदर के जैसा गहरा गहराई का एहसास दिलाता है। दिल समुंदर कमिंग अप राइट नेक्स्ट आपके लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
3: रेडियो मस्ती
4: हिट्स म्यूजिक ओनली
3: फील्स अ मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Bombay Talkies Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: वैसे दोस्तों बॉलीवुड का जून महीना फुल पैक्ड चल रहा है. एक तरफ बॉबी देओल की पिक्चर बंदर, दूसरी तरफ वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है, और आगे आगे आने वाली है कॉकटेल चू और वेलकम टू द जंगल. इन मूवीज को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही ही है. एंट्रेड एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि जून 2026 बॉलीवुड का सबसे कंपेटिटिव मंथ बन सकता है. अब देखना यह है कि ऑडियंस किस मूवी को अपना ब्लॉकबस्टर बनाती है. तभी हो जाए एक और जबरदस्त गाना आपको कंपनी देने के लिए. इट्स योर आरएम टू वीडियो मस्ती भाई. गाना शुरू मिले तो यही पर जुए रहिए ना मनी के साथ.
3: You're listening to RM2 Radio Masti.

0: है जीना।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
2: लड़की बड़ी अनजानी है।
3: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
4: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
5: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
3: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti. बीच में एंट्री मारकर मैं निर्मणी के साथ, निर्मणी हाउ इज इट गोइंग, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है, ठंड थोड़ी सी बढ़ती हुई और तुम टी शर्ट में?
3: हेलो बॉस, मैं ठीक हूँ, कैसे हो?
2: बस सब कुछ बढ़िया। अच्छा, तुम्हें वर्ल्ड कप का फीवर चढ़ा कि नहीं चढ़ा?
3: हाँ चढ़ गया है, इसलिए तो गर्मी हो रही है क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई है।
2: राइट, आपको बताएंगे बहुत सारी टीम्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पर होगी आपकी नजर, और आप बिल्कुल ना करें फिकर क्योंकि हम भी हैं इधर। टॉकिंग अबाउट एमबीसी प्ले 1.0, बहुत सारे ऐसे हमारे लिसनर्स हैं जो फुटबॉल लवर्स भी हैं, अब उनको सारे के सारे मैचेस देखने हैं। कुछ फ्री आपको चैनल्स पे दिखाए जाएंगे मैचेस, लेकिन सारे नहीं, जो सारे अगर आप मैचेस देखना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा एमबीसी प्ले 1.0 और वहाँ पर करनी होगी पेमेंट टू वॉच ऑल द मैचेस। अच्छा, हो ये रहा है कि कहीं हमारे ऐसे लिसनर्स हैं, ऐसे फुटबॉल लवर्स हैं जो कि उसको डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन पेमेंट उनकी फेल हो रही है, वो इसीलिए क्योंकि जब आप चाहे वो ब्लिंग हो या फिर पॉप हो या फिर आप एमसीबी जूस पे जा रहे हो, आपको एक नोटिफिकेशन आती है जिसको आपको अप्रूव करना है। एक बार जब आप उसको अप्रूव करते हैं उसके बाद ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है, तो काफ़ी लोग पेमेंट के टाइम पर इसको अप्रूव नहीं कर रहे। अब जब अप्रूव नहीं कर रहे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। सो वेट कीजिए उस मैसेज का, अप्रूव कीजिए और उसके बाद पेमेंट थ्रू, और उसके बाद सारे के सारे मैचेस ओनली जस्ट फॉर यू, एनी टाइम एनी वे, एमबीसी प्ले 1.0।
4: Avec MBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV, qui peut disponible au MBC Play à partir des 16 ans, pour 6-300 roupies. Et coupé pour sa package là, 6 ans fois. Ou pour capable suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play, avec ou partout.
5: More music in the mix.
6: Aaj azadi hai.
0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
3: आइए सुनते हैं समाचार रचना के साथ। नमस्कार।
4: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। वैथोल आशय के खिलाफ औपचारिक रूप से नए आरोप लगाए गए हैं। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एजेंसी के इस निदेशक को सेल्वी थर्मल स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 2020 में टेनमाउ की कंपनी बीएमएससी में एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व आयका के महानिदेशक की ओर से इंटरमीडिएट अदालत के सामने दर्ज मामले को रद्द कर दिया गया और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस डीपीपी के सुझावों के अंतर्गत एक नया मामला दर्ज किया जाएगा। गंगा तालाब एक पवित्र स्थल है, आध्यात्म का प्रतीक। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इस स्थल का दौरा करते हैं, लेकिन हाल में पेश आई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब से इस प्रतीकात्मक स्थल पर दौरे के लिए संबंधित कदम उठाना चाहते हैं। इस तरह आज कला एवं संस्कृति मंत्री के नेतृत्व में स्थल का दौरा किया गया और उठाए जाने वाले कदमों पर बातचीत की गई। स्थलों के संरक्षण के लिए गाइडलाइंस दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अभी ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून तैयार किया जा रहा है और मॉरिशनों को महासागर के टिकाऊ संचालन के हक में अतिरिक्त रूप से समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करने के वास्ते उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बात का ऐलान ब्लू इकोनॉमी मंत्री डॉ. अरविंद बुले ने किया। वे आज मॉरिशस ओशियानोग्राफी इंस्टीट्यूट की ओर से लैस्टिचिम फ्रांसे डे मोरिस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस के संबंधित गतिविधियों में भाग ले रहे थे। कपड़ा उद्योग में कई कर्मचारी करीब 2 सप्ताहों से तकनीकी रूप से बेरोजगार हैं। असल में उन्हें 2 से 3 महीनों से अपना वेतन नहीं मिला है। संबंधित कंपनियों में वर्लनीट्स, यूनिवर्सल फैब्रिक्स लिमिटेड, क्लाइंट टेक्सटाइल लिमिटेड और इवाको लिमिटेड शामिल। आज सुबह कर्मचारी तथा उनके श्रमिक संघ फेडरेशन दे ट्रावायेजिनी के आत्मा शांतु ने श्रम मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। उनका मानना है कि अधिकारियों की ओर से समाधान पेश नहीं किए जा रहे हैं। विदेश समाचारों में फिलीपींस में आए भूकंप में मृतकों की संख्या कम से कम 32 तक पहुंच गई है। कई इमारतें ढह गई और सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। 200 से अधिक लोग घायल बताए जाते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान से तत्काल सैनिक कार्रवाई रोकने की अपील की है। बेहद कम शब्दों में उन्होंने ट्रूथ सोशल के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को फौरन शूटिंग गोलीबारी बंद करनी चाहिए। 2 महीनों की लड़ाईबंदी के बाद कल ईरान की ओर से इसराइल और पर मिसाइल दागी गई। जवाबी कार्रवाई में तेल अवीव ने भी तेहरान के कई प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जिसमें कारून पेट्रोकेमिकल प्लांट भी शामिल था। संक्षिप्त समाचार ये बस समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉयल रोड शिमेगंज में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड की बेबी फरीदा भातू पैदाशी नाम फाउदा, जो फरीदा नाम से भी जानी जाती थी, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज रात सवा आठ बजे उनके बेटे जनाब रियाद भातू की मकान रॉयल रोड शिमेगंजे से उठाकर दफनाने के लिए कौशालो शिमेगंजे का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:15 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
5: रफ्तार वाइब फिल्मी राइट्स
2: RM2 Radio Musti.

Well guys, check your time. Studio ke ghar mein 4 bajke 7 minutes ho chuke hain. So wishing all of you a very good afternoon. Namaskar ji aur Ganesha ka pranam. तो म्यूजिक की दुनिया में लगने वाला है एक अच्छा बुसाबूस, क्योंकि रफ्तार वाइब शुरू हो चुकी है आपके और हमारे बीच में। जहां हर बीट में है एनर्जी, वैसे हर ट्रैक में है हमेशा एक्साइटमेंट और हर पल में है नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट। सो वेलकम टू रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती। वैसे लेटेस्ट शॉर्ट बसेस, अल्टीमेट पार्टी एंथम्स और फुल ऑन मस्ती के साथ हम आ गए हैं और हम रखेंगे आपकी वाइब को काफी हाई और मूड सुपर चार्ज, क्योंकि आई नो इट्स मंडे और मंडे को हमेशा मंडे ब्लूज ही आते हैं। अच्छे से वीकेंड गुजारने के बाद जब भी मंडे आता है तो सभी का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, बट वी आर हियर टू पंप इट अप अ लिटिल बिट विद सम गुड म्यूजिक। तो बकल अप माय डियर, क्योंकि म्यूजिक की ये राइड रुकने वाली नहीं है। किनिशा साथ दे रही है इन योर रफ्तार वाइब्स, जहां म्यूजिक भागेगा फुल ऑन स्पीड के साथ सिर्फ रेडियो मस्ती पर। एंड बाकी जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, ऑलरेडी हिटिंग द रोड, ड्राइव केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन रेडियो मस्ती।

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: रेडियो मस्ती।
3: R M2 रेडियो मस्ती।
4: Let me hear you.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और
2: रेडियो मस्ती।
3: बिल्कुल जी, हमेशा ढेर सारा मस्ती हम करते ही रहते हैं आप लोगों के साथ और मौजा ही मौजा होता है जी इन योर रफ्तार वाइब्स। वैसे अगर आपको चाहिए धमाकेदार बीट्स, क्रेजी एनर्जी और बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स, तो डेस्टिनेशन तो हमेशा एक ही होते हैं, दैट्स ऑन रेडियो मस्ती हैपनिंग राइट नाउ योर रफ्तार वाइब्स। टाइम बीता चला जा रहा है, 4:17 हो चुके हैं। गानों के साथ साथ हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक कैडो, यानी कि आई हैव गॉट यू अ गिफ्ट राइट नाउ। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पार्टिसिपेट एंड बी हियर माय लकी विनर, और हो सकता है कि लक आज आपका साथ दे। और आज ऑन रेडियो मस्ती आप बन जाए का आज का लकी विनर। सो वैसे माय डियर लवली पीपल आउट देयर जो साथ दे रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर द परफेक्ट गिफ्ट आइडिया, सो mysticworld.mu पर आप डिस्कवर कर सकते हैं एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी एंड ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड इवन स्टनिंग होम डेकोर। सो mysticworld.mu हैज एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ट्रस्ट मी फॉर दैट, यू कैन विजिट द वेबसाइट mysticworld.mu और सिंपली यू कैन कॉल ऑन 5887652 5880 7652। और फिलहाल के लिए हम आपसे पूछेंगे एक बहुत ही आसान सा सवाल, एंड यू हैव टू गिव मी द राइट आंसर ऑन 5499 1294 पर 5499 1294। गिव मी द राइट आंसर राइट नाउ एंड यू कैन बी माई लकी विनर। तो चलिए जी, यू जस्ट हैव टू टेल मी श्रीदेवी हिले। श्रीदेवी की दो बेटियां हैं, एक का नाम है जानवी कपूर और दूसरी बेटी का नाम क्या है। सो लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी की दो बेटियां हैं, एक का नाम है जानवी कपूर और दूसरी बेटी का नाम क्या है। 5499 1294 पर सेंड मी द राइट आंसर विद फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ, देन ओनली यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट टू इन द गेम। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइट्स
2: ऑन एमटी रेडियो मस्ती।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: रेडियो मस्ती।
2: बिल्कुल जी, काफी जोरदार प्यार लेकर आते हैं बातने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती थ्रू दीज ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग गाने। बिल्कुल, और 4:30 होने को है। गणेश ऑन द माइक का थोड़ी देर पहले पूछा गया था एक सवाल, जहां पे सही जवाब देने पर आपको मिल सकता है वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड। पूछा गया था कि श्री देवी की दो बेटियां हैं, एक का नाम है जानवी कपूर और दूसरी का नाम क्या है। दूसरी का नाम खुशी कपूर है। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और मेरी इतने सारे सही जवाब मिले, एक भी गलत जवाब नहीं मिले। बट लकी ड्रॉ में किसका नंबर, किसका नाम निकल आया है, दैट्स अ डनलाल बीपन। कंग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर। यस, यू आर फ्रॉम रॉयल रोड रिविया जो पर्स, एंड आपने सही जवाब दिए, खुशी कपूर नाम है लक्ष्मी देवी कपूर की दूसरी बेटी का नाम। सो कंग्रेचुलेशंस, यू आर विनिंग अ वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर्ड टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड। सो लुकिंग फॉर द परफेक्ट गिफ्ट आइडिया माय डियर लवली पीपल, माय लिसनर्स, mysticworld.mu, वहां पर यू कैन डिस्कवर आवर एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स भी है, स्टनिंग होम डेकोर भी है, एंड mysticworld.mu इज एग्जैक्टली द प्लेस वेयर यू नीड टू गो, एंड एक्चुअली यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप उनके वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं 5880-7652। एंड आज का लकी विनर मिस्टर डनलाल डीपन, समवन विल बी कॉलिंग यू फ्रॉम द एमबीसी। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है।
1: You're listening to Radio Mastery.

0: RM2 Radio Musti. RM2 Radio Musti.
1: Traffic update. Traffic update.
2: तो चलिए जी चेक करते हैं स्टूडियो की घड़ी में 4:35 हो चुके हैं। ट्रैफिक अपडेट्स में हम आपको लेके जाएंगे स्ट्रेट ऑन द रोड्स की क्या चल रहा है। वैसे ऑफिस से घर की तरफ अगर निकल चुके हैं तो काफी लोग जो हैं और रोड्स पर ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ने लगा है। सो नॉर्थ या साउथ दोनों डायरेक्शन में व्हीकल्स जो पोर्टविस से निकल रहे हैं उनकी मूवमेंट थोड़ा हैवी है, और अगर सैन जॉ और रेजवी के आस पास हो तो ट्रैफिक स्लो मूविंग है एंड यहाँ थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। एंड कैथरबोर्न और जो रोजिल है का जो रीजन में भी यूजुअल इवनिंग रश देखने को मिल रहा है दोस्तों। वी हैव स्लो ट्रैफिक एट सेवरल जंक्शंस एंड बिजी मेन रोड्स पे भी ये हो रहा है। सो अगर आप नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हो या साउथ बाउंड जा रहे हो सो एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम का ध्यान रखें और सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें। एंड हम तो बस इतना कहेंगे कि ड्राइव सेफ, स्टे काम एंड टेंशन को साइड में बस रखो। हम बजाते रहेंगे आपके फेवरेट हिट्स यहीं पर ऑन रफ्तार वाइब्स, स्पेशली ऑन रेडियो मस्ती।

0: 4:40 हो चुके हैं लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के साथ स्पोर्ट्स गुरु आ गए हैं मिस्टर अरविंद गुड आफ्टरनून
1: आपको गिनीशा गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स सो जा रहे हैं वर्ल्ड कप की ओर एक गिनती कर लेते हैं ओके टुडे वी आर
0: आज हम मंडे 8 जून है
1: ओके फिर 9, 10
0: और 11 और शुरू हो जाएगी
1: बस 3 दिन
0: And you know, everyone can download, you know, ये जो NBC Play है 1.0, उसको download करके, and then you have to do a payment, अगर आप पूरा जितने भी here matches live देखना पसंद करोगे, so you can download NBC Play here 1.0, और बहुत सारे लोग हमें बोल रहे हैं कि हमारा payment जो है ना successful नहीं जा रहे हैं, जब payment के लिए आप सब जो चीज़ें भर लेते हो, एक message आएगा आपके mobile पे, you just have to press OK, OK दबाने के बाद फिर आपका payment जो है successful हो जाएगा, बहुत सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं, they are not pressing OK.
1: Okay. प्रेस okay. करने के बाद ही सब कुछ ओके होगा
0: ओके ही ओके
1: गुड टू रिमाइंड सभी मैच लाइव उसमें और द गुड थिंग इज कि इस बार मैचों को लेकर पॉकेट में चलना जरूरी है
0: मोबाइल मोबाइल पर
1: क्योंकि जिस समय मैच खेले जा रहे हैं इट्स सबसे मेरे ख्याल से 11 PM कुछ मैच 4 बजे कैन यू इमेजिन 4 बजे मैच थोड़े ही टीवी के सामने बैठकर देखेंगे सो मे बी दोज हु आर वर्किंग समवेयर वो लोग मोबाइल पे मैच देख सकेंगे
0: कहीं से भी यू कैन वॉच इट
1: सो ऑफिस में बैठे ऐसा नहीं कि अब ऑफिस में जाकर मैनेजमेंट को बोलना है कि एक टीवी लगा दो हमारे लिए मोबाइल पे हैं
0: सो
1: यू कैन गेट इट सो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज भी खेले जा रहे हैं आज सुबह कोलंबिया ने जॉर्डन को 2-0 से हराया फिर नेदरलैंड्स की अंतिम तैयारियां उज्बेकिस्तान के खिलाफ दोनों टीमें वर्ल्ड कप में हैं और फ्रांस का मुकाबला नॉर्दर्न आयरलैंड से फ्रांस इस मैच के बाद यूएसए के लिए एकदम तैयार और फ्रांस की टीम जो अभी तक फेवरेट है टू विन द वर्ल्ड कप आइवरी कोस्ट के खिलाफ एक झटका लगा था इस बार इनको संभलना होगा और कॉन्फिडेंस हाई होगा तभी जाकर कुछ हो सकता है वैसे एक साइकोलॉजिकल एज तो नहीं कहेंगे लेकिन एक साइकोलॉजिकल बूस्ट अप कहीं पर होता है यू रिमेंबर लास्ट टाइम वर्ल्ड कप का जो मैच था अर्जेंटीना का पहला मैच उसमें दे लॉस्ट अगेंस्ट सऊदी अरेबिया और दे अल्टीमेटली वेंट ऑल द वे टू लिफ्ट द टाइटल तो फ्रांस की टीम की हार हुई एक मजबूत टीम के खिलाफ आइवरी कोस्ट नाउ दे कैन नो देयर वीकनेसेस इसके आधार पर आज के मैच में दे विल ट्राई टू डील विद दोस वीकनेसेस और जब शुरू करेंगे वर्ल्ड कप दे कैन बी वेरी गुड भूलना नहीं चाहिए आज सुबह हम बता रहे थे अभी बाद में फिर से आपको बताएंगे कि फ्रांस के ग्रुप में इसे ग्रुप दे ला मोर कहा जा रहा है क्योंकि इसमें नॉर्वे टीम है इसको नजरअंदाज करना कठिन होगा कहीं पर लिख लीजिए आई से टुडे नॉर्वे विल बी वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस नॉर्वे और साथ साथ में इसी ग्रुप में सेनेगल है जो फ्रेशली अफ्रीकन चैंपियन बने थे ये बात अलग है कि ट्रॉफी उनसे ले ली गई और इराक की टीम जिसे डरना होगा क्योंकि दे ड्रू 1-1 अगेंस्ट स्पेन तो फ्रांस के लिए आज डेनियर रेग्लाज आज वी से बाकी मैच भी खेले जाएंगे फ्रेंडलीज अलग अलग फ्रेंडलीज आज और कल के फ्रेंडलीज में विल हैव लेट मी चेक दिस वन काफी मैच खेले जाएंगे कल हाँ पेरू स्पेन चाइना थाईलैंड इंडोनेशिया मोजाम्बिक कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चिली फिर फुटबॉल यूनियन ऑफ रशिया त्रिनिदाद हंगेरी कजाकिस्तान और वेंसडे को भी मैच है हाँ इंग्लैंड अपना अंतिम मैच खेलेगा इंग्लैंड कोस्टा रिका के खिलाफ इसी दिन पोर्टुगल का मुकाबला नाइजीरिया से इराक वेनेजुएला अर्जेंटीना आइसलैंड बोलीविया अल्जीरिया सऊदी अरेबिया वर्सेस सेनेगल ये वेंसडे के मैच होंगे तो वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं कुछ खिलाड़ी कोलैप्स भी हो रहे हैं जैसे एरिक्सन डेनमार्क का खिलाड़ी कल कोलैप्स हुआ लेकिन अभी कहा जा रहा है इज इन गुड स्पिरिट्स आफ्टर कोलैप्स इंग्लैंड की टीम में बेलिंगहाम को जगह मिलेगी या नहीं टोमास टुखेल ने बताया ही हैज टू फाइट फॉर टू स्टार्ट फॉर इंग्लैंड और सभी टीमें कुछ टीमें पहुंच गई हैं इन द वर्ल्ड कप जस्ट वेटिंग फॉर इट टू हैपन ये थर्सडे को शुरू होगा विद द मैच बिटवीन मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका क्रिकेट के बारे में बात कर ले, आज तीन दिन के अंदर अंदर रफा दफा कर दिया भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को। इंडिया स्कोर ए मैसिव 564, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम पहले इनिंग्स में 152 फॉलो ऑन करना पड़ा 112, सो इंडिया वन बाय एन इनिंग्स एंड 300 रन्स। इसमें कुछ अच्छे अच्छे खिलाड़ी सामने आए जो और

0: भारतीय टीम ये ट्रॉफी जीत गई क्योंकि ये एक वन ऑफ टेस्ट मैच है और जिसमें सुथर नाम का खिलाड़ी ही मेड हिज डेब्यू और उसने 6 विकेट लिए पहले मैच में। दूसरे मैच में वाशिंगटन सुंदर की ओर से 4 विकेट होल। बहुत कुछ हो रहा है वर्ल्ड कप में, भी बहुत कुछ होगा, हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। आज जैसे जैसे आ रहा है धीरे धीरे द वर्ल्ड कप, बहुत खबरें आएंगी और विल बी गिविंग यू ऑल दीज धीरे धीरे, खासतौर पर जो खिलाड़ी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कौन फेवरेट है। और हमारे लिसनर्स को भी बता दें कि विल बी कमिंग विद सम गेम्स एज वेल। कल तो आप लोग सैटरडे को खूब गेम्स हुए ब्लूबे में, तो यहां पर भी गेम्स होंगे फॉर द वर्ल्ड कप, लॉट्स ऑफ प्राइजेस टू बी वॉन, बी रेडी,
1: बी रेडी। और जैसे कि आपने बोला, रिमेंबर दिस, नो वे।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट,
3: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
4: RM2,
5: रेडियो मस्ती।
6: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट वर्ल्ड कप एवर,
7: 2026 फीफा वर्ल्ड कप।
8: पहली बार होंगी 48 टीम्स, 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
9: चलिए
8: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
10: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
0: चलो वर्ल्ड कप की ओर। बहुत जल्द मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा पहुंच रहे हैं, सो काउंटडाउन जारी है। आज 8 जून, कल 9, फिर 10 और थर्सडे को ग्रैंड ओपनिंग और पहला मैच। ब्राजील के स्क्वाड में अटलांटा से मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने वाला खिलाड़ी मिडफील्डर एडिसन को जोड़ा गया है। वो रोमा के खिलाड़ी वेस्ले के स्थान पर आ रहा है। वेस्ले को इजिप्ट के खिलाफ फ्रेंडली मैच में गहरी चोट लगी थी। जर्मनी के लिए हाई मोमेंटम, 9 गेम विनिंग स्ट्रीक द नेशनल मैनचेस्टर के लिए। ऐसे में जर्मनी को, इस टीम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इधर इंग्लैंड की टीम का वाइस कप्तान होगा डिक्लेन राइस, कप्तान मिस्टर रिलायबल बालों दो फेवरेट हैरी केन है। इस वर्ल्ड कप में नॉर्वे की टीम बहुत दूर जा सकती है। 28 साल बाद वर्ल्ड कप में खेलने आई है, पर वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द अल्टीमेट डार्क हॉर्सेस। इस बार गोल्डन जेनरेशन टीम है, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी अर्लिंग अलोन और मार्टिन ओडेगार्ड। क्वालिफिकेशन में डोमिनेट, 8 विंस आउट ऑफ 8 मैचेस, 37 गोल स्कोर कर पाए थे, केवल 5 कंसीड किए थे। इटली को 3-0 और 4-1 से हराने वाली नॉर्वे की टीम ही थी। नॉर्वे ग्रुप आई में है, चैलेंजिंग ग्रुप, ग्रुप डेलामो, इसमें फ्रांस, सेनेगल, नॉर्वे और इराक हैं। फुटबॉल एनालिस्ट के अनुसार फ्रांस इस ग्रुप को टॉप करेगा और नॉर्वे टॉप 2 या टॉप 3 से नॉकआउट में जा सकता है। याद दिला दें, सभी ग्रुप से 2 टॉप टीमें ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होंगी और 8 बेस्ट थर्ड प्लेस चुनी जाएंगी। सो नॉकआउट राउंड के लिए तैयार अभी बाद में, अभी आप लोग तैयार रहिए, अपने अपने शर्ट निकाल लीजिए और लेट्स सपोर्ट द टीम। कौन सी टीम ये आप खुद देख सकते हैं। चलो वर्ल्ड कप योर ऑन RM2, कीप ऑन लिसनिंग।
11: FIFA World Cup 2026, 11 जून से 19 जुलाई। Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

Well guys, I really hope that you are loving these beautiful and lovely गानों का selection जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. वैसे शाम तो हो ही चुकी है, roads काफी busy हैं, लेकिन vibes बिल्कुल high है on the radio मस्ती. वैसे अगर आप steering के पीछे हैं, घर की तरफ जा रहे हो, तो दोस्तों के साथ शायद कहीं पे तफरी मार रहे हो, या हो सकता है ladies या gentlemen जो already घर पे पहुंच चुके हैं and kitchen की तरफ जा रहे हो और सोच रहे हो कि dinner में क्या बनाना है. हम लेकर आए हैं good music for you my dear. Yes, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए non-stop entertainment. वैसे अगला एक घंटा और होगा फुल ऑन हिट म्यूजिक के साथ, फील गुड वाइब्स और जबरदस्त एनर्जी के नाम. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड, बिकॉज़ द साउंड ट्रैक ऑफ योर इवनिंग यहीं से शुरू होता है. राइट हियर राइट नाउ, रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती. और फिलहाल के लिए ये गाना सभी लोगों के नाम, टू ऑल दोज हु रियली लव देमसेल्फ. सेल्फ लव इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तो चलिए सब मिलके बोलते हैं, लव योर जिंदगी. एंड यस, आई लव यू गाइस.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: OMG,
2: रेडियो मस्ती।
3: आज है मंडे 8 जून 2026 और स्टूडियो की घड़ी में 5:09 हो चुके हैं। सो वेलकम बैक दोस्तों इन द सेकंड आवर ऑफ योर रफ्तार वाइब्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती। सो विशिंग ऑल ऑफ योर वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम। शाम का वक्त है और जी हाँ, ट्रैफिक अपनी रफ्तार में है, लेकिन हमेशा की तरह हमारी वाइब्स उससे भी ज्यादा फास्ट है मेरी जान। अगर आप भी अभी ड्राइव कर रहे हो, स्टेयरिंग पकड़े हुए हो और सोच रहे हो कि टेंशन वेंशन में हो, हम तो बस इतना कहेंगे कि ये शो स्पेशली आप ही के लिए है, क्योंकि बस आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऑफिस का स्ट्रेस आप भूल जाइए, मीटिंग ईमेल से सब कल देखेंगे, अभी सिर्फ म्यूजिक का टाइम है और म्यूजिक को ही आप एंजॉय कर लीजिए। ये है रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती और अगला गाना आपकी इवनिंग को और भी एनर्जेटिक बनाने के लिए हम लेकर आए हैं। सो वॉल्यूम भरा दीजिए और मूड को अपग्रेड कर लीजिए एंड 5499124 पर आप हमें मैसेजेस भेज दीजिए। 8 5 9 9 12 94 माय डियर लवली पीपल आउट देयर, सेंड मी योर डेडिकेशंस एंड डू लेट मी नो कहां से साथ दे रहे हो।

0: रफ्तार वाइब फिल्मी राइट्स
1: रेडियो मस्ती।
2: Wishing each and everyone to have a great time हमारे साथ on RM2 Radio Masti. Thank you so much साथ देने के लिए Ginesh on the mic. माफी चाहेंगे जो हम बहुत सारे लोग messages करके भेज रहे हैं कि क्या हुआ गला खराब हो गया. हाँ जी आवाज बैठ गई गला बैठ गया और still we are here to give you the good vibes on RM2 Radio Masti 5499-1294 पर जी हाँ I've got your dedication so here we go let's check it out किसने किसको याद किया है आज के दिन and we do have the next one but

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: Thank you so much for choosing us as your radio partner. और अभी ये टाइम बीता चला जा रहा है, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट रेडी। यस, कैसे? वैसे हम आपको देंगे ना कुछ फैशन टिप्स, सो विंटर ऑफिस स्टाइल टिप्स रफ्तार वाइब्स के अंदर। बिल्कुल दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया है और ऑफिस जाना मतलब सिर्फ वार्म रहना नहीं, स्टाइलिश भी तो लगना है। और यहाँ है कुछ जल्दी जल्दी से आपको क्विक विंटर ऑफिस जो फैशन टिप्स हैं हम आपको देने वाले हैं। लेयर स्मार्टली, यानी कि आप एक क्रिस्प शर्ट के ऊपर ब्लेजर या लाइट वेट स्वेटर पहनिए और प्रोफेशनल भी लगेगा और कंफर्टेबल भी एंड वार्म भी। और ऐसे ही अगर आपको न्यूट्रल कलर्स अच्छे लगते हैं, सो ब्लैक, नेवी ब्लू और ग्रे या बेज विंटर वार्डरोब के एवरग्रीन कलर्स हमेशा होते हैं, सो मिक्स एंड मैच करना भी इजी होता है। और वैसे एक स्टाइलिश स्कार्फ सिंपल आउटफिट को इंस्टेंटली क्लासी लुक दे सकता है और ठंड से भी बचा सकते हैं। सो आई गेस कि ये आप अप्लाई कर ही सकते हैं। सो ये थे आपके फैशन टिप्स ऑन रफ्तार वाइब्स।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides.
3: RM2. Radio Mastery.

0: रफ्तार वाइब फिल्मी राइट्स आरएमटी रेडियो मस्ती.
1: We've got you the best music selections in your Raftaar Vibes. 5:48 हो चुके हैं. आरुत, आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? अगर बस में हो, गाड़ी में हो, मेट्रो में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो, ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, सबको हमारा बहुत बहुत प्यार जो हम भेज रहे हैं इन गानों के जरिए आपको. एंड आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली लविंग दिस लवली गाने जो लेकर आई हैं. एंड वी हैव सो मेनी पीपल सेलिब्रेटिंग टुडे एंड दे आर शेयरिंग देयर हैप्पीनेस हमारे साथ. सो विशिंग अ हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. 23 साल हो गए अक्षय और सती सिचुन की वेडिंग एनिवर्सरीज को. हाँ जी रिव्या जो वहाँ पास से है, अगला गाना आप लोगों के लिए. एंड गुड टू लिसन टू योर लवली वॉइस. थैंक यू सो सो मच राधा फ्रॉम कनाडा. सो एंजॉइंग लवली म्यूजिक एज यूजुअल. सो डेडिकेट कर रहे हैं अगला गाना फैमिली के लिए जो कनाडा में है, मॉरिशस में है, और आपके लिए, हमारे लिए, हर हर महादेव, आपको भी मेरी प्यारी प्यारी जो राधा जी हैं. एंड सो साधना फ्रॉम रिविया डे क्रियोल. अगला गाना आपकी फैमिली के लिए, जीवन परिवार के लिए जो माउंट डेलबेर्क के रहने वाले हैं, यूनियन पार्क एंड लारोजा एंड दुबई में भी हैं. सो थैंक यू सो सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक. हे प्रणाम, ओम नमः शिवाय, आपको भी कुकिंग प्रसाद एंड महाप्रसाद एंड एंजॉयिंग द लवली सॉन्ग. गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर. आपको भी मेरी जान एंड कुराज टू यू गायत्री एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. कुमार देवीचंद जी, कैसे हो आप? सो ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे योर कुकिंग एंड लिसनिंग टू सच माइंड ब्लोइंग गाने. थैंक यू सो मच लवली पापा श्याम देवीचंद के लिए जो पेरेबिया के रहने वाले हैं. ललिता जीतन, जॉगिंग एंड लिसनिंग. Oh, that's good. Taking care of your health. अच्छी बात है, मतलब कि रोज आधा पौना घंटा चलना या जॉगिंग करना हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है. सो योर वंडरफुल प्रोग्राम इज फुल ऑन वॉल्यूम गिनी एंड वी आर रियली एंजॉइंग इट. एंड हैप्पी बर्थडे टू वर्षा डकी ऑफ ब्रिटानिया एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस टू यू फ्रॉम प्रीतम एंड पापा आनंद. एंड वी डू हैव टीना एंड एज वेल रणधीर, मिथुन, अनुष्का, अनिष्ठा, कतेशा, आरोही, हर्षा, आपको विश कर रहे हैं हैप्पी वाला बर्थडे. तो चलिए जी, टू ऑल दोस हू आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे, I just want to wish you a magical one on RM2 Radio Musti.

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन ऑल टू रेडियो में से फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 6 बज रहे हैं
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
6: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.

0: इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ 22 आरोपों वाले मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस जांच में गंभीर खामियां पाई हैं और कहा कि मुकदमे को आगे बढ़ाना न्याय हित में नहीं होगा। डीपीपी कार्यालय ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का संकेत दिया। एज रेटिंग्स अफ्रीका की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस के सार्वजनिक वित्त में सुधार के संकेत मिले हैं, हालांकि ऊंचे कर्ज और वैश्विक अनिश्चितताएं अब भी चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन सार्वजनिक खर्च पर बेहतर नियंत्रण से वित्तीय अनुशासन मजबूत हुआ है। मॉरिशस दुनिया का पहला ऐसा गन्ना उत्पादक देश बनने की ओर बढ़ रहा है जिसकी सभी चीनी कारखानों को बोंसिको सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा। ये प्रमाणन पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उत्पादन की गारंटी देता है। हाल ही में बोंसिको इंस्पायर अवार्ड्स 2026 में मॉरिशस सुगर सिंडिकेट को उसकी उल्लेखनीय पहलों के लिए सम्मानित किया गया। विदेश में दक्षिणी फिलीपींस में मिंडानाओ द्वीप के तट पर आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद कम से कम 32 लोगों की मौत, कई प्रांतों में 100 से अधिक लोग घायल, लगभग 2 दर्जन लोग लापता और सुरक्षा के तौर पर 10,000 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और अब पेश है समाचार विस्तार से। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ चल रही मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उन पर 5 लाख रुपए की सीमा से अधिक नकद भुगतान स्वीकार करने के मामले में 22 आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था, लेकिन अदालत का मानना है कि पुलिस जांच में गंभीर कमियों के कारण इस मुकदमे को आगे बढ़ाना न्याय की भावना के खिलाफ होगा। डीपीपी कार्यालय ने संकेत दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। बेथॉन लाजर्स के खिलाफ नए औपचारिक आरोप दर्ज किए गए हैं। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एजेंसी के इस महानिदेशक को सेल्वी थर्मल पावर स्टेशन के पुनर्विकास के लिए डेनमार्क की कंपनी BWSC को ठेका देने की जांच के सिलसिले में 2020 में गिरफ्तार किया गया था। अब बंद हो चुकी आईकाक के महानिदेशक द्वारा इंटरमीडिएट कोर्ट में दायर पिछला मामला खारिज कर दिया गया है और डीपीपी के कार्यालय की सिफारिशों के बाद एक नया मामला शुरू किया जाएगा। ताविन तापेसो की रिपोर्ट पर विवरण आस्था गोबिंद चितावन।
1: 6 सितंबर 2020 को इंजीनियरिंग परामर्श कंपनी के निदेशक बेथॉन लाजर्स को आईकाक ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने डेनमार्क की कंपनी बर्मिस्टर और वेन स्कैंडिनेवियन कॉन्ट्रैक्टर यानी BWSC से लगभग 42 मिलियन रुपए प्राप्त किए ताकि 4.3 बिलियन रुपए की सैलवी बिजली उत्पादन केंद्र पुनर्विकास परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट BWSC को मिल सके। इसके लिए मॉरिशस के अधिकारियों के समक्ष अपने प्रस्ताव का इस्तेमाल कर सके। इस मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 66 आरोपों के साथ प्रभाव के दुरुपयोग का एक आरोप भी दर्ज किया गया था। ये मामला पोर्टली इंटरमीडिएट अदालत की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन में दायर किया गया था। उस समय आईकाक को बेथॉन लाजर्स के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए डीपीपी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये अधिकार सीधे संस्था के महानिदेशक के पास था। इसके बाद 2025 में FCC ने आईकाक का स्थान लिया और करप्शन तथा वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभाली। उसी वर्ष फरवरी में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट में संशोधन किया गया जिसके तहत धोखाधड़ी और करप्शन से जुड़े मामलों में डीपीपी के अधिकारों को फिर से बहाल किया गया। इसी संदर्भ में गत 5 जून को पोर्टली इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष FCC ने बेथॉन लाजर्स के खिलाफ चल रहे मामले को वापस लेने की अर्जी दाखिल की। FCC के अनुसार इससे पहले डीपीपी कार्यालय आरोपी के खिलाफ नए और औपचारिक आरोप दर्ज कर चुका था। डीपीपी दफ्तर का मानना है कि पहले दायर किया गया मामला असंवैधानिक था क्योंकि उस समय लागू कानून के तहत संस्था के महानिदेशक को डीपीपी की सहमति के बिना ही मामला अदालत में ले जाने का अधिकार प्राप्त था। डीपीपी के अनुसार इस आधार पर बचाव पक्ष भविष्य में मामले को चुनौती दे सकता था, इसी कारण पुराने मामले को वापस लेकर नए सिरे से मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को पोर्टली इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन में होगी।
0: एज रेटिंग्स अफ्रीका द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस का सार्वजनिक वित्त मजबूती की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उच्च कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएं अभी भी बजटीय संभावनाओं पर दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि एजेंसी ने

0: सार्वजनिक खर्चों पर बेहतर नियंत्रण के चलते वित्तीय अनुशासन में सुधार दर्ज किया है। मॉरिशस दुनिया का पहला ऐसा गन्ना उत्पादक देश बनने की राह पर है जिसके पास अपनी सभी कारखानों के लिए बोसिको सर्टिफिकेशन होगा। ये आधिकारिक प्रमाण पत्र स्थिरता की गारंटी है जो इस बात की पुष्टि करता है कि इसकी पूरी उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के अनुकूल है। स्थानीय स्तर पर की गई पहलों के रंग लाने का प्रमाण ये है कि पिछले सप्ताह बोसिको इंस्पायर अवार्ड 2026 में चीनी सिंडिकेट की जमकर सराहना की गई। मिगान पुनापा नायकन, आस्था गोविंद तमन।
1: पिछले 5 वर्षों से अल्टियो की चीनी मिल और उसके प्रबंधन के तहत आने वाली लगभग 3000 हेक्टर गन्ना खेत बोसिको सर्टिफिकेशन के दायरे में हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन टिकाऊ, जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल चीनी उत्पादन की मान्यता देता है। वर्ष 2024 के अंत तक कंपनी के सभी गन्ना खेतों को ये प्रमाणन प्राप्त हो चुका था।
2: अल्टियो
1: के अनुसार ये प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी की चीनी उत्पादन प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, जिम्मेदार कार्य प्रणालियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अच्छी कृषि पद्धतियों की ये गारंटी चीनी खरीदने वाली कंपनियों के बीच काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओमनिकेन मॉरिशस ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की पहली चीनी मिल थी जिससे ये प्रमाणन प्राप्त हुआ था। कंपनी के अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल थी। इस प्रमाणन ने जल प्रबंधन, गन्ना खेती और उत्पादकता के सेक्टर में बेहतर कार्य प्रणालियों को बढ़ावा दिया है। साथ ही इसने मॉरिशस की चीनी को वैश्विक बाजार में एक अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा प्रदान की है। सीमित उत्पादन क्षमता के बावजूद ये प्रमाणन मॉरिशस को उच्च किस्म वाली और अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरी उतरने वाली चीनी के विश्वसनीय उत्पादक के रूप में स्थापित करने में मदद कर रहा है। मॉरिशस में हर वर्ष लगभग 2,20,000 टन चीनी का उत्पादन होता है जिसमें से करीब 70,000 टन चीनी वर्तमान में बोसिको प्रमाणित है। ये आंकड़ा आने वाले समय में और बढ़ सकता है क्योंकि तेगा इस वर्ष अपने अंतिम ऑडिट की तैयारी कर रहा है ताकि उसे भी ये प्रमाणन प्राप्त हो सके। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट का कहना है कि हाल ही में बोसिको अवार्ड्स में प्राप्त बेस्ट वैल्यू चेन इनिशिएटिव अवार्ड ने देश और उसके चीनी उद्योग की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में खरीदार किस्म, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ उत्पादन से जुड़े सर्टिफिकेशन को पहले से कहीं अधिक महत्व दे रही
2: है।
1: वर्तमान में दुनिया के 125 चीनी उत्पादक देशों में लगभग 50 देशों की कंपनियां और चीनी मिलें बोसिको प्रमाणन प्राप्त कर चुकी है। मॉरिशस का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 के अंत तक देश के कुल चीनी उत्पादन का 50% हिस्सा बोसिको प्रमाणित हो जाए।
0: एक पवित्र स्थान जो आध्यात्मिकता और ध्यान प्रार्थना का प्रतीक है, गंगा तालाब हर दिन हजारों आगंतुकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल ही में हुई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थल पर आने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रस्तावित उपायों की समीक्षा करने के लिए कला और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में आज इस स्थल का दौरा भी किया गया। इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेष रूप से जेरियाट्रिक्स के क्षेत्र में, पिछले मार्च महीने में SSRN अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष वार्ड्स के उद्घाटन के बाद वहां के दैनिक कामकाज का जायजा लिया गया। इन एक्यूट केयर ऑफ एल्डरली वार्ड्स को खोलने का उद्देश्य हमारे बुजुर्गों को विशेष उपकरणों के साथ बेहतर देखभाल प्रदान करना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चिकित्सा कर्मियों को लगातार दी जाने वाली ट्रेनिंग पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। नीले अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून फिलहाल तैयार किया जा रहा है और मॉरिशस के नागरिकों को समुद्र के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ साथ मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों के समुद्री संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तरह ब्लू इकोनॉमी मंत्री ने ये घोषणा की। डॉक्टर अरविंद बुलेल आज 8 जून को मॉरिशस ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूट द्वारा लैस्टिट्यू फ्रांसे दे मॉरिस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस के उत्सव में भाग ले रहे थे।

0: बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी हैं, जो दो महीने पहले शुरू हुए युद्ध विराम के बाद से अब तक का सबसे गंभीर तनाव है। विदिमा सिबुरन।
1: इसराइल ने पश्चिमी और मध्य ईरान में हवाई हमले किए हैं। इससे पहले ईरान ने उत्तरी इसराइल पर मिसाइलें दागी थीं। दो महीने पहले युद्ध विराम लागू होने के बाद ये पहली बार है जब ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के क्षेत्र पर हमले किए हैं। तेहरान में नए धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इससे पहले इसराइल ने कहा था कि उसके दर्जनों लड़ाकू विमानों ने ईरानी रक्षा प्रणालियों पर हमले पूरे कर लिए हैं। ये हमले ईरान पर इसराइली हमलों के बाद हुए हैं, जिसमें तेहरान, तबरीज और इस्फहान में धमाकों की खबरें मिली हैं। ये तनाव तब और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया, जिसमें कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। इसराइली सेना ने कहा कि शहर के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्ला के ठिकानों पर किए गए वे हमले हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के जवाब में थे।
0: फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आने से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि 200 से अधिक अन्य लोग घायल हुए हैं। एक बार फिर से विधिमा सिबुरन का विवरण पेश है।
1: इस भूकंप के कारण इंडोनेशिया और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई और लोगों से देश के सुरक्षित स्थानों की ओर जाने या ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के लिए कहा गया। मिंडानाओ देश के सबसे दक्षिणी द्वीपों में से एक है और ये भूकंप इसके दक्षिणी छोर पर जनरल सांतोस से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आया। जनरल सांतोस 7,00,000 से अधिक आबादी वाला शहर है, जहां कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 130 अन्य लोग घायल हो गए। जनरल सांतोस में फिल्माए गए एक वीडियो में एक छोटी इमारत को ढहते हुए देखा गया और वहां के अधिकारियों ने बताया कि वे नुकसान और घायलों की रिपोर्ट का आकलन कर रहे हैं। वे एक ढहे हुए स्कूल में कुछ छात्रों के फंसे होने की खबरों की भी जांच कर रहे हैं। अन्य मौतें मलबे गिरने, एक मस्जिद को नुकसान पहुंचने और सारंगानी, दक्षिण कोटाबातो और दावो ऑक्सीडेंटल के दक्षिणी प्रांतों तथा बालूत द्वीप पर हुए भूस्खलन के कारण हुई।
0: दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में जो आग लगी थी, उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। उधर केरल के उत्तरी जिलों में भारी वर्षा से तबाही मची हुई है। 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन पर तथा कुछ अन्य खबरों पर पेश है ये रिपोर्ट।
1: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलिदिमिर जेलेंस्की द्वारा लंदन में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद रूस और यूक्रेन ने घातक हवाई हमले किए हैं। सोमवार तड़के यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी ज़ापोरिज़्या क्षेत्र में एक रूसी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास खर्च हो चुके परमाणु ईंधन के एक भंडारण केंद्र को जानबूझकर निशाना बनाया। इस हमले से ईंधन प्राप्ति इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम को न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन के अंदर चाकूबाजी की घटना में 6 लोग घायल हो गए। हमले के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को पुष्टि की कि मालवीय नगर के एक होटल में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जब एक और विदेशी नागरिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। केरल विशेषकर उत्तरी इलाकों में शनिवार को भारी बारिश के कारण हुए हादसों, जमीन धंसने और इमारतें गिरने से 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग द्वारा और गंभीर मौसम की चेतावनी के बाद प्रभावित इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। बर्लिन के हिंदू समुदाय ने श्री गणेश मंदिर के भव्य उद्घाटन के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। इस अवसर का जश्न मनाने के लिए भक्त प्रार्थनाओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ एकत्रित हुए। उम्मीद है कि ये मंदिर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो सामुदायिक संबंधों को मजबूत करेगा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा।
0: और अब पेश है मौसम संबंधी जानकारियां, जो इस प्रकार हैं। मस्कारिन्स के दक्षिण में एक काफ़ी ज़ोरदार आंटी साइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर मामूल हवा की लहर चल रही है। कमज़ोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए हैं, वे रह कर हमारे

अन्य मौसम को प्रभावित करते रहेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात और कल सुबह के दौरान आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश भी हो सकती है, मुख्य रूप से ऊंचाइयों पर। दोपहर बाद में मौसम सुहाना रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी एवं दक्षिणी लगून में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 26 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:37 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:40 पर सूर्योदय।

0: और इससे पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि एक पवित्र स्थान जो आध्यात्मिकता और ध्यान प्रार्थना का प्रतीक है, गंगा तालाब हर दिन हजारों आगंतुकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल ही में हुई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थल पर आने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रस्तावित उपायों की समीक्षा करने के लिए कला और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में आज इस स्थल का एक दौरा भी किया गया। इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अनाबेल फुलबे की रिपोर्ट पर पेश है विवरण आस्था गोविंद चितामन के साथ।
1: हर दिन गंगा तालाब हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मॉरीशस के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इस आध्यात्मिक तीर्थ स्थल की दिव्यता और धार्मिक महत्व को अनुभव करने यहाँ पर आते हैं। लगभग 300 मंदिरों और करीब 50 धार्मिक संगठनों से जुड़ा ये स्थल देश के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है, लेकिन हाल में यहाँ हुई कुछ घटनाओं ने इस पावन स्थल की मर्यादा, पर्यटकों के आचरण और धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान को लेकर चिंताओं को फिर से जन्म दिया है।
2: Maurice n'est un pays multiculturel, nous n'a beaucoup lieu de culte comme ça, on dit pas c'est ça grand bassin mais il partout dans le pays que nous pouvons un minimum de respect. Et aussi dit pas ce respect touriste bien respecté c'est pas mauriciens eux même qui bien respecté que ce soit vestimentaire, tu dis pas bien mon non-veg ici.
1: इस स्थिति को देखते हुए नेशनल हेरिटेज फंड ने आगंतुकों के लिए दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला तैयार की है, जिसका उद्देश्य दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाना और गंगा तालाब की पवित्रता को अक्षुण बनाए रखना है। इन प्रस्तावों को हाल ही में संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इनके जल्द लागू होने की संभावना है।
3: Sa place là, parmi les autres représentations, c'est qu'ils ont un trust. Et nous avons envie un trust qui est sérieux. Nous pouvons ensemble nous donner un coup de main, mais un trust là pour gérer par PMO.
1: ये प्रस्ताव शीघ्र ही मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा, ताकि ये पवित्र तीर्थ स्थल आगे भी अपनी परंपराओं, मूल्यों और श्रद्धा के वातावरण के साथ आगंतुकों का स्वागत करता रहे।
0: ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून फिलहाल तैयार किया जा रहा है और मॉरीशस के नागरिकों को समुद्र के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ साथ मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों के समुद्री संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी मंत्री ने ये घोषणा की। डॉक्टर अरविंद बुलेल आज 8 जून को मॉरीशस ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूट द्वारा लिंग्विस्टिक फ्रांसे मॉरीस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस के उत्सव में भाग ले रहे थे।
4: धरती का नीला फेफड़ा कहा जाने वाला महासागर हमें पोषित करता है, हमारी रक्षा करता है और हमारी जीवन का आधार है। 8 जून को EFM में एक फिल्म के प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों को समुद्री जंतुओं और व्यापक रूप से महासागर की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
5: Pour moi, c'est important comme si de protéger, venir avec des lois et des paramètres de sécurité pour protéger l'eau.
6: Imaginez-vous, vous offrez de la plage, de la mer, l'environnement tropical, mais sans les poissons. C'est difficile de vendre un produit comme ça, surtout si c'est à l'international.
7: Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas par rapport.

0: L'océan et les importances, la valeur de l'océan, surtout pour notre petite île.
1: Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y avait des problèmes dans l'océan et aussi qu'on va prendre des mesures et mettre des règles importantes pour préserver l'océan et nos poissons.
2: C'est nous là, la future génération, et la mer surtout va beaucoup nous aider. Ça crée beaucoup de travail.
3: विश्व महासागर दिवस के मौके पर मॉरिशस ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट ने समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समुद्री संसाधनों का एक मानचित्र तैयार करने की घोषणा की। एमओआई के निदेशक डॉक्टर डैनियल माही ने कहा, बहुत खोज करते हैं जो संरक्षण से संबंधित हैं, काफ़ी समय लगता है और संसाधन भी लगते हैं, खासकर फंड। EFM के निदेशक ने कहा, इस तरह की गतिविधियों से महासागर के महत्व को दर्शाते हैं। हमारे लगून में मछलियों की घटती संख्या को देखते हुए अधिकारियों का मानना है कि टिकाऊ समाधान खोजना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। ब्लू इकोनॉमी मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने कहा, 14 बिलियन रुपए की लागत के चूना का निर्यात करते हैं, यानी कि हमारे कुल निर्यात के 20% हम लगून से बाहर एक्वाकल्चर करने पर काम कर रहे हैं, जो रुचि रखता है औद्योगिक मछलीमार के लिए वो लाइसेंस लेकर आगे आ सकता है। गहरे समुद्र में मछलियां हैं। मंत्रालय इस रणनीतिक क्षेत्र के विकास को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पर भी काम कर रहा है। ये दिन जागरूकता और ठोस कार्रवाई के तहत मनाया गया।
4: और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेष रूप से जेरियाट्रिक के क्षेत्र में, पिछले मार्च महीने में SSRN अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष वार्ड्स के उद्घाटन के बाद हमारी एक टीम ने वहां एक दैनिक कामकाज का जायजा लिया। इन अक्यूट केयर ऑफ एल्डरली वार्ड्स को खोलने का उद्देश्य हमारे बुजुर्गों को विशेष उपकरणों के साथ बेहतर देखभाल प्रदान करना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चिकित्सा कर्मियों को लगातार दी जाने वाली ट्रेनिंग पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। रिया रामभोजन की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू।
3: डायबिटीज के इलाज के लिए भर्ती की गई 67 वर्षीय ये मरीज आज अपने घर लौट रही हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिन इस खास इकाई में बिताए।
5: सुबह नर्स, एफएमए, डॉक्टर, मेल, टू बियर जांची, इन बियर पामाकुर, देवी मनविनी बनान बियर गेट मां।
3: 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के इन मरीजों की देखभाल के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है, अधिक ध्यान और कभी कभी अधिक धैर्य की भी जरूरत। नर्स प्रिसिला चिनापियल ने कहा, ज्यादातर मरीज बिस्तर पर रहते हैं, उनकी देखभाल, उनसे बातचीत, हंसी मजाक भी करते हैं। वार्ड मैनेजर लेखना तेलंगर ने कहा, उन्हें स्नान कराते हैं, उन्हें आराम दिलाते हैं। इन मरीजों की देखभाल के लिए नर्सों की टीम के अलावा विभिन्न विशेषज्ञों की एक टीम भी है। इसमें जेरियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और फिजियोथेरापी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। दूसरों की सेवा, खासकर बुजुर्गों की देखभाल, एक ऐसा पेशा है जो लगातार विकसित हो रहा है। इसी कारण चिकित्सा कर्मियों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता है। हर सप्ताह इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर शिव सिगोबी ने कहा,
6: non seulement pour donner les soins médicaux mais pour faire ça avec beaucoup l'empathie, nous mettons beaucoup l'accent sur la communication.
3: सबसे पहले मानव पहलू हैं, स्टाफ प्रशिक्षित हैं, हम संवाद और करुणा भाव पर बल देते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरी टीम को प्रति सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल ज्ञान प्राप्त हो। बढ़ती वृद्ध जनसंख्या को देखते हुए जेरियाट्रिक सेवाएं पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। पॉम्पलेमस के SSRN अस्पताल और फ्लाक के साज अस्पताल के बाद जल्द ही देश के अन्य 3 इलाकाई अस्पतालों में भी इसी प्रकार के विशेष वार्ड स्थापित किए जाएंगे।
4: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों लुदोविक और नेतुषा को। कुछ ही समय में शोक समाचार।
7: You're News, NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
4: रॉयल रोड शो में ग्रनिये में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड की बीबी फरीदा भातू, बीबी फरीदा भातू पैदाशी नाम फादा जो फरीदा नाम से भी जानी जाती थी का अंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज रात सवा आठ बजे उनके बेटे जनाब रियाद भातू के मकान रॉयल रोड शो में ग्रनिये से उठाकर दफनाने के लिए कौशालो शो में ग्रनिये का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फनरल टुडे एट क्वार्टर पास्ट 8 PM। क्लेफो नंबर तीन वाकवा में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णा लक्ष्मणन जो मैन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर क्लेफो नंबर तीन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। बैनिकाले नंबर दो ग्लेनपॉक वाकवा में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमित्राबाई भाऊ पैदाशी नाम लक्ष्मो जो मानती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर बैनिकाले नंबर दो ग्लेनपॉक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे एट 9:30 AM। नंबर 60 कैल्डरन रोड रेड टनस्टोन ईस्ट लंदन इंग्लैंड में नंबर 60 कैल्डरन रोड रेड टनस्टोन ईस्ट लंदन इंग्लैंड में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र रुचाया जो रॉय नाम से भी जाने जाते थे और पहले टैगोर रोड फोंजिसक रहते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी उनका अंतिम संस्कार अगले बुधवार 10 जून को दिन के 1:30 बजे ईस्ट लंदन इंग्लैंड में ही किया जाएगा। शोकग्रस्त परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
7: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. RM2
8: Radio Musti.

0: बिल्कुल जी, सारी दुआएं पूरी हो जाती हैं जब दिल से मांग लिए जाते हैं। 6:38 हो चुके हैं, यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, यानी कि यू आर लिसनिंग टू गिनिशान रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच जी, वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो, दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स, जी हाँ, ऑन रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए।
1: RM2 Radio Musti
2: Hit music only.
3: Radio Musti feels a musti.

0: तो चलिए जी दोस्तों, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेश चतुर्थी से गुडबाय टू यू। आई रियली होप कि आपको दिल से अच्छा लगा। तो बस अपना ख्याल रखना, ठंड का मौसम है, सबका गला खराब होते ही जा रहा है, फीवर भी हो रहे हैं, सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे वार्म, स्टे हियर कनेक्टेड ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन फॉर सम गुड म्यूजिक। आने वाली है हमारी प्यारी सी जो हमारी आज है, हाँ जी सॉरी, हमारी प्यारी आरजे दिव्या आ गई है इन द स्टूडियो, यस, टू कंटिन्यू विद सम गुड रोमांटिक म्यूजिक। जी हाँ, रात के 9 बजे तक इन योर इवनिंग लाउंज। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, बाय बाय।
1: रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली,
1: फील्स अ मस्ती, रेडियो मस्ती।

0: वेल फ्रेंड्स, शाम के 7:07 हो चुके हैं. अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. और वैसे आजकल बहुत ही सीजनल फ्लू भी हो रहा है, तो इसके चलते डू टेक योर प्रिकॉशन. और चलिए, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, लेकिन हमको पता है कि तारीफ बिल्कुल मुमकिन है. स्पेशली जिनसे आप प्यार करते हैं, उनकी तारीफ तो ज़रूर बनती है. और जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी तारीफ़ में तो 2-4 लफ्ज़ वो ज़रूर बयां कर सकते हैं. ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है. स्पेशली प्यार में तो सब कुछ जायज़ है. चलिए, प्यार में अगर आप इस वक्त खोए हुए हैं, तो इतनी गारंटी ज़रूर देते हैं कि हमारे गीतों को सुनने के बाद आपको थोड़ा और प्यार हो जाएगा और ज़ोरों से आपका दिल थोड़ा और धड़क जाएगा. इट्स योर इवनिंग लाउंज, जहाँ पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक. वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन 5499-1294. एंड यस, एज़ यूजुअल लाइन खुली हुई है. अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 402-8235-4295 पर. आप ज़रूर हमें फ़ोन करें, आपसे हम बातें करेंगे और जो गाने आप सुनना चाहते हैं उसके हिसाब से आपके गाने को हम ज़रूर चलाएंगे. सो स्टे वाइट कनेक्टेड टिल 9 PM. इट्स योर इवनिंग लाउंज, जहां पर दिव्या का साथ है.
1: Evening lounge.
2: Evening lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

तेरी याद साथ है और आप जिंदगी में चाहे जहां भी रहे अपने तो हमेशा याद आ ही जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अब्रॉड से भी हमारा साथ देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। 7:21 हो चुके हैं। दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज। तो चलिए आपको हम विश करेंगे बन अपेची शुभ आहार यू हैविंग योर मील योर डिनर राइट नाउ। चलिए आपसे हम ज़रूर बात करना चाहेंगे ऑन 4 2 3 5 4 2 4 5 पर आप ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं। और कुछ कुछ हमारे यूजुअल कॉलर्स हैं जो हमेशा हमसे बात करते हैं, कुछ लोग ऑफेयर बात करते हैं, लेकिन टेलीवी के लिए आपके फ़ोन कॉल्स का हम ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं। साथ में आपके मैसेजेस डेडिकेशंस को भी हम वेलकम कर रहे हैं ऑन 5 4 9

0: 9 to 12, 9 4 एंड यहाँ पर आप कहते हैं नमस्ते जी, वेलकम इन माई किचन रेडियो मस्ती. हाँ जी, दैट्स रियली सो स्वीट. किचन तो हमारी फेवरेट जगह है जहाँ पर खाना बहुत ही प्यार से बनता है. वैसे कहते हैं ना, जब आप अपना पॉजिटिव वाइब्स खाने में डालते हैं तो इसका पूरा पूरा स्वाद आपके परिवार वालों को मिलता है. तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप म्यूज़िक, गुड म्यूज़िक का साथ देते रहेंगे और आपका खाना भी अच्छा ही बनेगा. और इस वक्त आप वेज बिरयानी बना रही हैं एंड डेडिकेटिंग द नेक्स्ट खाना फॉर योर फैमिली. आपके पति हैं लालदेव, बेटा है विकी, बहू कीर्ति, अवनी क्यूट वंश फ्रॉम सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा एंड आप कहते हैं गुड इवनिंग रेडियो मस्ती टीम. नेक्स्ट खाना गुजार फॉर अब्दुल एंड सैरा बानू और साथ में ऋषि विदेशी जी, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. और आप कहते हैं कि नेक्स्ट खाना गुजार टू सभी RM लिसनर्स, फ्रेंड्स एंड आपकी गर्लफ्रेंड के लिए जिनको मंडे इवनिंग बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड ट्यूजडे मॉर्निंग. सो चलिए ऋषि जी, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. एंड यहाँ पर किसी ने कहा नमस्ते दिव्या जी, आई एम टीना फ्रॉम शामुनी, इफ़ यू कुड प्लीज़ प्ले द सॉन्ग मिलने की तुम कोशिश फ्रॉम द फिल्म दिल का क्या कसूर टू शिवम तेजस्वरी एंड विमी. विमी है या विमला है, बस आपका मैसेज यहाँ पर इनकम्प्लीट है. अगर पॉसिबल हुआ तो आप फिर से अपने मैसेज भेज सकते हैं ऑन 5499 1294. व्हाट्सअप पर अगर आप भेजेंगे वहाँ पर आपका पूरा मैसेज कम्प्लीट आएगा. तो चलिए एक बार फिर से आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 4028235. कट्स ऑन दुई खतुमा थान सैंक पर.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

Such a meaningful, soulful and wonderful gana. 7:33 already, Divya ka saath new evening lounge. Jo meri dil se dil banati hai. Bas aapke naam ka pyar kisne od liya hai to unke naam pyara sa paigham zarur aapki taraf se hum paana chahenge on 5499-1294 chaliye aapke kuch messages ki aur hum zarur badhenge and yahan par aap kehte hain pranam divya ji I miss you in the morning show and retro rhythm kya baat hai thank you so much and next gana goes out for परी आरजे हंसनी और आपकी मामा मीला रामदिकल ऑफ मोताई ब्लॉश के लिए दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू एंड चलिए नितेश जी साथ देने के लिए थैंक यू सो मच हाय नमस्ते जी हाउ यू आई एम आशनी वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर माय लव निलेश ऑफ कुंगमा एंड चलिए साथ में आप उनसे कहना चाहती हैं कि आप उनको बहुत ही मिस कर रही हैं वॉन्ट दिस सॉन्ग टू रीच हिज हार्ट थ्रू यू कैन यू प्लीज़ प्ले द सॉन्ग नज़र से नज़र मिले इन द वॉइस ऑफ राहत फ़तेह अली खान चलिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपके इस इवनिंग को और भी खूबसूरत बनाने के लिए इस गाने के ज़रिए तो आशनी थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए एंड चलिए यहाँ पर एक ख़ास मैसेज है मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने कल सेलिब्रेट किया फादर्स डे एक्चुअली मॉरिशस में तो ये हमेशा से ही चलता आया है कि आप जब एक संडे को मदर्स डे सेलिब्रेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो संडे होता है वो होता है स्पेशली फादर्स डे के लिए तो हमारे डैड के लिए बहुत ही कम लोगों ने लिखा हुआ है लेकिन आप ज़रूर ये याद रखना कि ज़िंदगी में माएँ हमेशा ये जता लेते हैं कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं लेकिन बस पापा ही एक ऐसे शख्स हैं जो रेयरली एक्सप्रेस करते हैं कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं बट कहते हैं ना कि अ मदर कैरीज अ किड इन हर वोम फॉर 9 मंथ एंड अ फादर कैरीज द किड फॉर अ लाइफ टाइम हमारे पापा हमसे कुछ कहे ना कहे लेकिन बस आप उनकी आंखों में कभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी आंखों में आपके लिए कितना प्यार है कभी उनको भी जताना आना चाहिए तो रिक्वेस्टिंग ऑल द डैड्स अराउंड मॉरिशस एंड अराउंड द ग्लोब जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आपको जताना बिल्कुल चाहिए क्योंकि इससे ही प्यार बढ़ता है तो चलिए नेक्स्ट गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे स्पेशली फॉर नेहा जो इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड है हमारे साथ आप अपने डैड को डैड मानन को विश करना चाहते हैं हैप्पी फादर्स डे टू डैड मानन इन हेवन और आप अपने डैड को बहुत ही मिस कर रही हैं लेकिन कहते हैं ना कि आँखों से बहुत ही दूर लेकिन दिल के बहुत ही करीब आपने अपने डैड को खोया है तो क्या हुआ आप उनसे अभी तक ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्यार के ज़रिए और आई एम वेरी श्योर कि आपके पापा ने आपको बहुत सारी ऐसी खूबसूरत यादें दी होंगी जहाँ पर आपको मौका मिलता है उन यादों को फिर से जीने के लिए तो आप कहते हैं वी लॉस्ट द पर्सन हु लव्ड अस इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वेज हु वॉच्ड ओवर अस विदाउट नीडिंग क्रेडिट हु शोड लव थ्रू प्रोटेक्शन सैक्रिफाइस एंड प्रेजेंस

0: डेड, यूल ऑलवेज बी आवर हीरो. स्पेशल थॉट्स फ्रॉम वाइफ देविका. आपकी बेटियां हैं नेहा, दीपा, ग्रैंडसन श्रेयान और उनके दामाद हैं नितिन एंड शैलेश. की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार. वैसे हम जितना भी कुछ कहिए लेकिन ये बात तो पक्की हैं और ये बात सच है कि ज़िंदगी में जिन्होंने अपने पापा को खोया है उनको ही बस पता होगा कि ज़िंदगी में उन्होंने क्या खोया है. तो चलिए, टू ऑल द डैड्स अराउंड द वर्ल्ड, बस शायद आपके भी बच्चे आपसे कुछ ज़्यादा नहीं कह पाते हैं लेकिन इस बैरियर को तोड़ना आपका फ़र्ज बनता है. लर्न टू एक्सप्रेस योर लव फॉर योर किड्स. और बच्चे लोग आपको भी एक्सप्रेस करना आना चाहिए ताकि बस ये बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो. तो चलिए नेहा, ये अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर योर पापा मानंद एंड टू ऑल योर फैमिली जो शायद इस वक्त आपको सुन रहे हैं.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Masti.

वैसे कहा जाता है कि गाने के जरिए ही प्यार को एक्सप्रेस किया जाता है. शायद आपको कभी मौका नहीं मिला है अपने पापा को आई लव यू कहने के लिए, तो ये गाना इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल द डैड्स अराउंड द वर्ल्ड. वी लव

0: वेल फ्रेंड्स, 7:45 होने को हैं, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। और वैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग बस हमसे बहुत ही दूर चले जाते हैं, टू बी आवर गार्डियन एंजल टू प्रोटेक्ट अस। कभी कभी हम बहुत कुछ देख नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत कुछ महसूस भी कर लेते हैं, और ये एहसास पर आपको पूरा पूरा विश्वास करना है। चलिए, 7:45 हो चुके हैं, वी हैव समवन जो हमसे बात करना चाहते हैं, और वो है हमारी प्यारी उर्वशी जी। नमस्ते आपको। ओहो, क्या हो गया उर्वशी जी, इतनी खांसी है। आजकल सीजनल फ्लू चल रहा है, तो अपना पूरा पूरा ध्यान आप रखिएगा, और जितना हो सके आप अदरक वाली चाय पीजिएगा, ये आपकी इम्यूनिटी और आपकी खांसी को भी दूर भगा देगी। आप इमोशनल हो गई, वो तो मैं भी हो गई, और बहुत सारे लोग आई कैन रिलेट कि बस उनको बस अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाए, बट ऐसा होता है ना, इट्स लाइफ। वैसे कहते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहते हैं, लाइफ गोज ऑन बट इट्स नेवर द सेम। और चलिए उर्वशी जी, आप ओहो, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, लेकिन कोई बात नहीं, आपके बच्चे उनके प्यार को बहुत ही प्यार से रिप्लेस करेंगे। मुझे पता है कि इस प्यार को कभी रिप्लेस नहीं किया जाता है, बट आप उनकी यादों के जरिए बस अपनी जिंदगी को स्पेंड कर सकते हैं।
1: माता पिता प्यार देती
0: हूँ। हाँ जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उर्वशी जी, आज आप कौन सा गाना सुनेंगी?
1: भूपेंद्र, घरौंदा।
0: घरौंदा, ओहो, दैट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग। मैं नहीं पूछूंगी किसके लिए, क्योंकि ये गाना मेरे लिए और आपके लिए। तो थैंक यू सो मच उर्वशी जी हमारा साथ देने के लिए। आपसे हमेशा हम बात करते हैं ना, तो आपकी आवाज़ बहुत ही स्वीट है, और ऐसे ही आप हमें फ़ोन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच उर्वशी जी, टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए, ये थी हमारी प्यारी सी उर्वशी जी, एंड ये गाना चल पड़ा उनके नाम।
2: Evening Lounge.
3: RM2.
2: Radio Musti.

0: वेल वेल, आपके बिना भी हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसीलिए तो हमेशा हम बार बार तलाशते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत बहाने जहां पर हम आपसे मुलाकात भी करें और कुछ प्यार की बातें भी हो जाए और साथ में कुछ अच्छे अच्छे गाने भी आपको सुनाने का मौका मिल जाए। तो चलिए यहां पर एक बार फिर से दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज टिल 9 PM। तो चलिए यहां पर अगला गाना खासतौर से उन तमाम लोगों के लिए जो शायद इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ, और स्पेशली ये गाना हम उन लोगों के लिए डेडिकेट करेंगे जो नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे। यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब और आपको हम विश करेंगे दिल से बों कुहार, और हमेशा आपको हिम्मत देने के लिए हमारे गाने होंगे और हम भी होंगे यहाँ पर आप लोगों का साथ देने के लिए। तो चलिए बस उम्मीद करते हैं कि ये दिन कट जाए एंड ये वक्त भी ऐसे ही कट जाए बाय दिस गुड म्यूज़िक। और वैसे कहते हैं ना कि जहाँ पर गुड म्यूज़िक का साथ होता है वहाँ पर लॉजिक नहीं बल्कि मैजिक होता है। तो चलिए इस मैजिक को फिर से एक्सपीरियंस करते हैं टिल 9 PM।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

Well, friends, 8:26 हो चुके हैं. चलिए यहाँ पर अगला गाना गुजाउ स्पेशली फॉर लव महजबीन, जिनसे आप बहुत ही प्यार करते हैं. नाम तो आपने नहीं लिखा लेकिन महजबीन आपको बहुत ही याद किया जा रहा है. एंड आप कहते हैं हाय दिव्या, गुड इवनिंग, क्रिस्टी हियर फ्रॉम रिविया देख रहे. ऑल स्पेशल डेडिकेशन टू हबी विक्रम, आपके ट्विंस हैं कौशिक कौशल. एंड साथ में यहाँ पर आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में है, एक कनाडा में है और मॉम डैड को बहुत ही मिस किया जा रहा है. लव यू सो सो मच. तो चलिए उनके नाम प्यारा सा गाना हम ज़रूर डेडिकेट करेंगे. तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. टू ऑल दोज जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ये अगला गाना खास तौर से आप लोगों के नाम.

0: सब लोग कहते हैं कि प्यार करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन प्यार में आपको ये भी कभी नहीं भुलाना है कि प्यार में एक बाउंड्री होता है जिसको हमेशा आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बस रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चलिए, यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है, आई एम लविंग दिस लव सिलेक्शंस, ब्रिंगिंग लोड्स ऑफ लविंग मेमोरीज, आई एम फॉलिंग इन लव अगेन, थैंक यू। तो चलिए, रेणुका जी साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। बस नाम आपने तो नहीं लिखा, लेकिन आपका नाम ऊपर से हमने देख लिया और पता चल गया कि आपने ही हमें मैसेज भेजा है। सो रेणुका जी, थैंक यू सो मच हमें याद करने के लिए, एंड इट्स गुड टू नो दैट यू आर फॉलिंग इन लव अगेन, एंड यही तो हम करना चाहते हैं और यही हमारा इरादा होता है कि बस आपको प्यार की दुनिया तक ले जाए। और बस कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम प्यार की दुनिया में जब खो जाते हैं तो वापस हकीकत में आने का मन ही नहीं होता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्यार की दुनिया को बसाएं हकीकत में भी, ताकि आपको कभी सपनों की दुनिया में जाने की नौबत ही ना पड़े। ऐसा एक दुनिया भी आप बसर कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। इसीलिए हम कहते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और आप प्यार से सोचेंगे, प्यार से इसको बनाएंगे, आप इसको प्यार का घरौंदा का नाम देंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए, कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

RM2 Radio Masti. नाजायज मूवी से लिया गया खूबसूरत सा ये गाना अलका याग्निक की आवाज में। तुझे प्यार करते करते बस हम भी कभी ये सोचते हैं कि जितने भी सारे लोग शायद प्यार में डूबे हुए हैं, कभी आपने सोचा है कि प्यार क्या है? या फिर आपने ये सोचा है कि जब आप प्यार करते हैं तो आपकी दुनिया कैसे बदल जाती है? वेल, ये तो हमेशा हम कहते रहते हैं, अगर आपने किसी से प्यार किया है और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई है, इसका मतलब यही प्यार है। और कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से प्यार किया था और आप उन पलों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये कभी प्यार नहीं था। क्योंकि प्यार हमेशा आपके दिल में अच्छा एहसास दिलाता है। लविंग समवन इज़ नॉट ओनली अबाउट गेटिंग बटरफ्लाइज इन द हार्ट, इट्स अबाउट इमोशनल सिक्योरिटी, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट। अब प्यार के बारे में क्या कहें, प्यार तो बस प्यार ही होता है।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: वेल फ्रेंड्स, इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

लेट नाइट ग्रूव्स में आप सबका स्वागत. विशिंग यू ऑल अ लवली इवनिंग माय डियर लिसनर्स. नीतू आपके साथ रात्रि के 12 बजे तक. रोमांटिक सीजन चल रहा है क्योंकि अभी मौसम काफी बेमान है. आई मीन टू से सर्दी का मौसम, कभी बारिश कभी तेज हवाएं बह रही हैं और ऊपर से गानों की जो लहरें हैं आपके दिल को छुए जा रही हैं. सो व्हाटएवर यू माइट बी स्टे वेल ट्यून्ड.

चलिए बॉलीवुड एंड रोमांस का अनोखा रिश्ता आज का ये सफर इसी पर आधारित है। बॉलीवुड की पहचान सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि रोमांस से भी है। हिंदी सिनेमा ने प्यार को इतने गहरे अंदाज में पेश किया है कि हर पीढ़ी उससे जुड़ जाती है, चाहे बारिश में भीगते हुए दो दिल हो या फिर किसी पहाड़ी पर गुनगुनाते गीत। बॉलीवुड ने रोमांस को एक अलग ही रंग दिया। यही वजह है कि रोमांटिक फिल्मों और गानों का जादू कभी पुराना नहीं पड़ता। प्यार की भावना को जितनी खूबसूरती से बॉलीवुड ने दिखाया है शायद ही किसी और फिल्म इंडस्ट्री ने दिखाया हो।

बॉलीवुड के रोमांटिक गानों ने लाखों दिलों को अपनी तरफ खींचा है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी के खास लम्हों को किसी ना किसी बॉलीवुड गीत से जोड़ते हैं, है ना? पहली मुलाकात हो, पहला प्यार हो, जुदाई का दर्द, हर एहसास के लिए बॉलीवुड के पास एक गीत होता है। रोमांटिक सॉन्ग्स ने प्यार को शब्दों और सुरों के माध्यम से

लवली गाने लवली पीपल इन योर लेट नाइट ग्रूव्स में से जब भी किसी फिल्म में प्यार को खूबसूरती से दिखाना होता है तो हरे भरे ये पीले खेतों का सहारा लिया जाता है। खुले आसमान के नीचे प्यार का इजहार करना और नेचर के बीच गीत गाना बॉलीवुड की रोमांटिक विरासत का हिस्सा है। एक खास फैक्ट ये भी है कि बॉलीवुड में प्रेम कहानियों से ज्यादा उनके गाने याद रखे जाते हैं।

कभी-कभी एक रोमांटिक गाना पूरी फिल्म से भी ज्यादा मशहूर हो जाता है। पहला नशा या फिर तुझे देखा तो ये जाना सनम तुम ही हो, कोरा कागज जैसे अनगिनत गाने आज भी प्यार करने वालों की पसंद बने हुए हैं। ये जो

अभी बोला ना, अभी बारिश का समय है, बारिश का सीजन है, तो बॉलीवुड में बारिश और रोमांस का रिश्ता बहुत गहरा है। कई यादगार रोमांटिक गाने बारिश में फिल्माए गए हैं। पानी की बूंदे, ठंडी ठंडी हवा एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो दर्शकों के दिल को छू लेता है। That's why बॉलीवुड की रोमांटिक कहानियों में बारिश का अपना ही अलग महत्व है।

थैंक यू सो मच नीतू के हम सफर बनने के लिए टिल मिडनाइट। वैसे बॉलीवुड ने हमें सिखाया है कि प्यार सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि आंखों से भी बयां होता है। कई रोमांटिक सीन्स में सिर्फ नजरों का मिलना ही पूरी कहानी कह देता है। इसी वजह से बॉलीवुड के रोमांस में आंखों की भाषा का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है।

कि रोमांटिक फिल्मों में पहाड़ों का इस्तेमाल, माउंटेन्स का इस्तेमाल बहुत किया गया है। कश्मीर, स्विट्जरलैंड, हिमाचल, इवन मॉरिशस के खूबसूरत नज़ारे रोमांस को और भी हसीन बना देते हैं। बर्फ से ढकी वादियों में फिल्माए गए गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। ये बॉलीवुड का एक रोमांटिक फैक्ट है कि प्रकृति और प्यार को हमेशा एक साथ दिखाया गया है।

फिल्म इंडस्ट्री ने सिखाया है कि प्यार हमेशा लफ्जों से नहीं होता, कभी कभी सिर्फ नजरें ही दिल की बात कह देती हैं। कई फिल्मों में हीरो और हीरोइन के बीच बिना कुछ कहे ही प्यार का एहसास दिखाया गया है। ये नजरों का जादू बॉलीवुड रोमांस का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है।

What a lovely गाना है ना, बस यादों में खोए जा रहे हैं। कई बॉलीवुड फिल्मों में ट्रेन प्यार की कहानी का अहम हिस्सा बनी है। हम दोनों दो प्रेमी, या फिर और भी गाने हैं, चल छैया छैया, है ना। कभी ट्रेन में मुलाकात होती है, कभी जुदाई और कभी मिलन। चलती ट्रेन के साथ दौड़ते हुए प्यार का इजहार करना बॉलीवुड का एक अमर रोमांटिक सीन बन चुका है।

ट्रेन हो पहाड़ हो पेड़ हो लेकिन पुरानी बॉलीवुड मूवीज में प्रेम पत्र यानी लव लेटर्स प्यार का सबसे बड़ा जरिया होता था कबूतर जा जा जा प्रेम पत्र आया है जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स हीरो अपनी भावनाओं को कागज पर लिखकर हीरोइन तक पहुंचाता था आज के दौर में तो मोबाइल और सोशल मीडिया ने उसकी जगह ले ली है लेकिन बॉलीवुड के पुराने लव लेटर्स वाले सीन्स आज भी रोमांटिक लगते हैं और एक अलग ही नॉस्टैल्जिया पैदा करते हैं

0: सौ बात की एक बात, बॉलीवुड बेस्ट है ना? उनके रोमांटिक डायलॉग्स ने कई प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई है। कुछ डायलॉग्स तो इतने मशहूर हुए कि लोग उन्हें अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल करने लगे। ये डायलॉग्स सिर्फ शब्द नहीं बल्कि प्यार की गहराई और जज्बात का प्रतीक बन गए। वैसे इन रोमांटिक गानों में चांद और सितारों का जिक्र बहुत आम है। प्रेमियों ने अपने महबूब की तुलना चांद से की और सितारों को अपनी मोहब्बत का गवाह बनाया। इससे रोमांस और भी भावनात्मक, काव्यात्मक और खूबसूरत लगता है।
1: घर

पहला प्यार और बॉलीवुड, आपकी भी कहानी कुछ ऐसी ही हो सकती है, राइट? वैसे बॉलीवुड की अधिकतर रोमांटिक कहानियाँ पहले प्यार के आसपास घूमती हैं। फिल्मों ने पहले प्यार की मासूमियत, उसकी खुशी और उसके दर्द को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। शायद इसीलिए लोग अपने पहले प्यार को याद करते वक्त बॉलीवुड के गानों और फिल्मों को याद ही करते हैं। पहले प्यार का इजहार तो हम कर चुके हैं, लेकिन दिल तोड़ने वाले गाने भी रोमांटिक होते हैं। ये भी एक अनोखा फैक्ट है कि यहाँ जुदाई के गाने भी रोमांस का हिस्सा माने जाते हैं। जुदाई जुदाई कभी आई ना जुदाई, या फिर हीरो वाला गाना लंबी जुदाई, ओह माय गॉड, दिल को छू लेने वाले। जब प्यार अधूरा रह जाता है तब भी उसकी यादें गीतों के जरिए अमर हो जाती हैं। इसलिए दर्द भरे गाने भी लोगों के दिलों में खास जगह बना लेते।

बात हो जाती है, प्यार हो जाता है, जुदाई हो जाती है, हैप्पी एंडिंग का जज्बा भी तो होना चाहिए। बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों का एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि अधिकतर कहानियाँ हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होती है। दर्शक जो होते हैं प्यार को जीतते हुए देखना पसंद करते हैं, इसीलिए बॉलीवुड ने हमेशा उम्मीद और मोहब्बत की जीत का संदेश दिया है।

थैंक यू सो मच। इस समय आप लेट नाइट ग्रूव्स के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में हमारा ये सफर खत्म भी हो जाएगा, पर जब तक साथ निभा रहे हैं तब तक ये अगला गाना आप सबके नाम। वैसे कई बॉलीवुड फिल्मों ने दिखाया है कि सच्चा प्यार अक्सर दोस्ती से शुरू होता है। प्यार क्या है अंजलि, इन कुछ कुछ होता है प्यार दोस्ती होती है। दोस्ती और मोहब्बत के बीच की नाजुक रेखा को बॉलीवुड ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है, इसलिए कई यादगार प्रेम कहानियों की बुनियाद दोस्ती पर रखी गई है। अगर बॉलीवुड से रोमांस को अलग कर दिया जाए ना, तो उसकी पहचान अधूरी लगने लगेगी। मोहब्बत, जज्बात, गीत, इंतजार, मुलाकात, यादें, ये सब मिलकर बॉलीवुड को दिलों के करीब बना देते हैं। इसलिए रोमांस बॉलीवुड की रूह है और शायद हमेशा रहेगा। समय बदलता गया, सितारे बदलते गए, लेकिन बॉलीवुड रोमांस का जादू कभी कम नहीं होगा। हर दौर में प्यार को नए अंदाज में पेश किया गया, लेकिन उसकी मिठास वही रही। इसलिए बॉलीवुड के रोमांटिक गाने, डायलॉग्स और कहानियाँ आज भी लोगों के दिलों को धड़काने पर मजबूर कर देते हैं। मोहब्बत का ये सफर बॉलीवुड के साथ सदैव अमर रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.